मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 55 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र पूजा सिंह। आप सभी को हमारा नमस्कार।

प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा।

समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

0: ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का शुभारंभ समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना की अगली प्रस्तुति में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वरों में ये मधुर भजन।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन पशु पक्षी संरक्षण। लीजिए सुनिए तुलिका शर्मा का चिंतन पशु पक्षी संरक्षण।
1: हमारी लापरवाही बहुत से जीव जंतुओं के संकट का कारण बना हुआ है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लोग जानते हैं कि यहाँ पास में घाटी गांव में सोन चिरैया अभयारण्य बना हुआ है। सोन चिरैया जो इस क्षेत्र की शान थी, लोग प्रेम से अपने घर के छोटे बच्चों को, खास तौर पर लड़कियों को सोन चिरैया कहकर बुलाते थे। यही सोन चिरैया इतने बड़े संकट से जूझ रही है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यदि आंकड़ों की माने तो पूरी दुनिया में इस समय सिर्फ 150 सोन चिरैया का अस्तित्व बचा है और इनमें से अधिकांश राजस्थान में हैं। राजस्थान के जनजातीय कबीले इनकी रक्षा प्राण से करते हैं। सिर्फ अभयारण्य बनाकर वहाँ पशु पक्षियों के स्वतंत्र विचरण को प्राथमिकता देना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अभयारण्य के आसपास जो गांव हैं, जो शहर हैं, वहाँ भी बहुत से प्रयास करने होंगे लोगों को जागरूक करने के कि ये पशु पक्षी हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि इनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा हम हैं। सोन चिरैया, जिसे राजस्थान में गोडावण कहते हैं, इस समय स्थिति ये है कि प्रोजेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इन पक्षियों को खाने के लिए शिकार किया जाता है। ये पक्षी चूंकि ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं और घास के मैदान कम होते जा रहे हैं, तो इन्हें प्रजनन के लिए भी स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ये तो पक्षी हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि किसानों के मित्र ही हैं। लेकिन बाघ और तेंदुए जैसे जानवर, जो शिकारी जानवर हैं, इनसे मनुष्य खौफ की वजह से भी दूर रहना चाहता है। यकीन जानिए श्रोता साथियों, ये भी हमसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इनके आवास पर हम धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं, तो ये इनकी मजबूरी है कि ये हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं। मुंबई ऐसा शहर है जिसके परिसर में राष्ट्रीय उपवन है। इस हरियाली से जहां आम आदमी को सुकून मिलता है, वहीं भू माफिया इसे मुद्दे की तरह उछालते हैं। अक्सर इस जंगल में जानबूझकर आग लगाई जाती है कि इसका वन क्षेत्र घट सके, जिससे आगे इसमें एक आईटी पार्क बनाया जा सके। सोचकर देखिएगा, क्या हमारे लिए आईटी पार्क आवश्यक है या धरती के ये फेफड़े बचे रहें, ये आवश्यक है। मनुष्य के लिए प्रकृति की हर देन आज संसाधन बन गई है, रिसोर्स बन गई है। हम ये सोचते हैं कि इसका फायदा उठाना हमारा हक है, लेकिन इस हक के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हमारे हो जाते हैं, जिनको यदि हमने पूरा नहीं किया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। श्रोताओं, महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति सदियों से तेंदुओं के साथ रहती है। उनकी रक्षा करते हैं उनके वन देवता, जिन्हें

0: वो वाघोबा कहते हैं, ऐसे भगवान जिन्हें बाघ या तेंदुए के रूप में दर्शाया जाता है। कभी कभार उनकी भेड़ बकरियों को तेंदुआ उठा भी लेता है। ऐसा घटित होने पर वो उस जानवर को पकड़ने या मारने की नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि उन्हें भी अपने पेट पालने का और जीने का हक है। हमने गोडावण की बात की थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की थी, राजस्थान की बिश्नोई जनजाति उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी तरह दूसरे अन्य आदिवासियों के रहन सहन, सोच और आस्था की भी हम सराहना करते हैं। कर्नाटक के हलक्की जनजाति की तुलसी गौड़ा का उदाहरण हमारे सामने है। 12 साल की उम्र से वो वन विभाग की मदद कर रही हैं। इन्हें आज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। 30,000 पेड़ उन्होंने लगवाए हैं या फिर ऐसे संरक्षित पौधों की प्रजाति की रक्षा की है। पेड़ों के प्रति इस अगाध स्नेह को देखते हुए और उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। विकास, धन और पर्यावरण के महायुद्ध में तुलसी गौड़ा एक सैनिक से कम नहीं है। क्लाइमेट चेंज पर हम चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन ये सारी बहसें बड़े बड़े मंचों पर वातानुकूलित कमरों में बैठकर की जाती हैं। बंजर, वीरान और सुनसान धरती पर जो काम करते हैं उन सभी सेना नायकों को हमारा सैल्यूट है। आप अपने स्तर पर प्रयास करें पर्यावरण को संरक्षित करने का। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे।
1: अभी आप सुन रहे थे तूलिका शर्मा का चिंतन, पशु पक्षी संरक्षण, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए तुलसीदास कृत श्री।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमयी पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। कृषि चर्चा में आज सुनिए सामयिक चर्चा, पशुओं में गलघोटू रोग कारण और बचाव। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव, मक्खी मच्छरों की अधिकता से वायु और जल जनित रोग बढ़ जाते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं की पाचन शक्ति में मंदता आ जाती है, जिसके कारण पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे पशुओं में तरह तरह के रोग हो जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लंगड़ी गिल्टी या जहरी बुखार और इन सबसे खतरनाक बीमारी होती है गलघोंटू। यह बीमारी गाय भैंस बकरी जुवाली करने वाले प्राय सभी पशुओं में हो जाती है। यह एक संक्रामक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। यह रोग अधिकतर युवा कम उम्र के पशु में प्राय अधिक प्रभावी रहता है। गलघोंटू रोग एक प्रकार के जीवाणुओं द्वारा फैलता है। ये जीवाणु पशु के शरीर के भीतर रहकर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, लेकिन शरीर के बाहर बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह रोग दूषित चारागाह में चरने या दूषित चारा पानी ग्रहण करने अथवा रोगी पशु स्वस्थ पशु के संपर्क में आने से स्वस्थ पशु बीमार हो जाते हैं। किन्नी मक्खियां भी रोग को फैलाने में सहयोग प्रदान करती हैं। इस रोग के लक्षण पशु में अचानक प्रकट होने लगते हैं। पशु का तापक्रम बढ़कर 106 से 160 डिग्री फारेनहाइट तक हो जाता है। पशु सुस्त होकर चारा पानी छोड़ देते हैं। पशु कमजोर हो जाते हैं। पशु के गले और निचले जबड़े में कष्टदायी सूजन आ जाती है, जो दबाने पर दबती नहीं है। यह सूजन धीरे धीरे बढ़ती है। जीभ में भी सूजन आ जाती है। पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु घुर्र घुर्र की आवाज निकालते हैं। पशु के मुंह और नाक से लाल अथवा सफेद रंग का स्राव टपकता है। जीभ सूख कर बाहर निकल आती है। श्लेष्मिक झिल्ली गहरे लाल रंग की और खून चमकने लगता है। नथुने फूल जाते हैं। अंत में पशु जमीन पर गिरकर और तेज घर्राटे की आवाज के साथ बहुत लार गिराते हैं। कभी कभी पशु में बिना लक्षण प्रकट हुए भी पशु की 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। यह रोग प्राय एक साथ फैलता है और लगभग 10 दिन में एक स्थान पर प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस रोग का विशेष इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि जब पशु पर रोग का प्रभाव होने लगता है तो दवा प्रभावहीन हो जाती है। इस रोग से पशु के बचाव के लिए पशुशाला की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद कीटनाशक दवा और चूने का घोल बनाकर पशुशाला की पुताई करवानी चाहिए, जिससे मक्खी और मच्छर न पनपने पाएं, क्योंकि मक्खी और मच्छर भी रोग को फैलाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

0: गौशाला ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर पानी एकत्रित न होता हो। बरसात के पानी के निकास का समुचित प्रबंध करना चाहिए। पशुओं को सूखी साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। बासी कटे हुए चारे में फंगस लग जाते हैं, इसलिए पशुशाला हवादार होनी चाहिए। फंगस लगा हुआ चारा पशुओं को न खिलाएं। पशुओं के चारा दाना पानी की स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखें। ओस और बरसात में भीगा हुआ चारा न खिलाएं। हरे चारे की कुट्टी करके भूसा में मिलाकर खिलाएं। जहां तक संभव हो सके पशुओं को चारागाह में चलने से रोकना चाहिए। बांध कर चारा खिलाएं। हरा चारा खिलाने के तुरंत बाद पानी न पिलाएं। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। दूध निकालने के बाद एंटीसेप्टिक घोल से हाथ साफ कर लें। जैसे ही पशु में रोग के लक्षण दिखाई दें तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और रोग की रोकथाम का प्रबंध करना चाहिए। साथ ही प्रतिवर्ष बरसात के पूर्व रोग प्रतिरोधात्मक टीकाकरण करवाना चाहिए। यही सरल और सस्ता उपाय है। टीकाकरण का लाभ लेकर ही पशुपालक भाई अपने पशुधन की जानलेवा बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
1: कृषि चर्चा में अभी आपने सुना सामयिक चर्चा, पशुओं में गलघोंटू रोग कारण और बचाव। चर्चा कर रहे थे सोहन सिंह। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समुद्घोषितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधि नियमानां संवाद विधेहे बहुपक्षीय सहाय्य भावनाधारेण सुरक्षित शांतिपूर्ण शाश्वत रूपकस्य अंतरिक्ष मंडलस्य पूर्णं सुदृढं च समर्थनं संधारयति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोक कल्याणाय विनियुक्तानि स्युः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतानि वक्तव्यानि फ्रांस देशस्य पैरिस नगरे समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनावसरे आभासीय माध्यमेन प्रकाशितानि।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अंतरिक्ष कक्षासु संवृद्धि संघर्ष स्थाने सहयोग भावना अल्पकालिक लाभ स्थाने शाश्वतता बहिष्करण स्थाने च समावेशिता प्राथमिक रूपेण स्यात् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनस्य भूमिकां प्रतिपादयन् श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् स्वीय कार्यदक्षता कारणेन स्वीय ऐतिहासिक अभियानैश्च एतया संस्थया वैश्विक प्रशंसा समर्जिता। अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं श्वः प्रभृति नवदेहल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारप्स्यते। सम्मेलनम् आलक्ष्य भव्यायोजनस्य समग्र सज्जाः सम्प्रति अन्तिमे चरणे प्रविष्टाः। द्विदिवसीये शिखर सम्मेलने ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया इंडोनेशिया भारतम् ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात इत्येतं समेत्य एकादश प्रमुखाः विकासशील अर्थव्यवस्थाः मञ्चं धारयिष्यन्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां समायोक्ष्यमाणस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः नवाचार सहकार सतत विकासाय च निर्माणमिति। शिखर सम्मेलने रूस देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ चीन देशीयः राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा इत्यसौ मिश्र देशीयः राष्ट्रपतिः अब्दिल फतह अल सीसी इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिः प्रब्रुवो सुबियांतो ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेकिश्कियन इत्यसौ अबुधाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान इत्यसौ अथ इथियोपियायाः प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इत्येतं समेत्य वैश्विक नेतारः सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् आलक्ष्य दिल्ली यातायात आरक्षीबलेन संसूचितं यत् अद्य मध्याह्ने द्विवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यन्तं प्रमुखमार्गेषु यातायाते परिवर्तनं नियन्त्रिता च व्यवस्थिता प्रभवेत। आरक्षिबलानुसारेण आपत्कालिकाः आवश्यकाश्च सेवाः प्राथम्यं भजेरन्। सममेव दिल्ली मेट्रो यान विभागेनापि आवश्यकाः सूचनाः प्रसारिताः। अन्ते च क्रीडावार्तासु महिला क्रिकेट एशिया चषक स्पर्धाया

0: उपान्त्य चक्रे गतरात्रो भारत बांग्लादेश दलयोः मध्ये समायोजितवे द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेश दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराभूय एशिया चषक स्पर्धायाः निर्णायके चक्रे स्थानं संप्राप्तम्। दुबई नगरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रांगणे समायोजिते एतस्मिन् द्वन्द्वे भारतेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता स्पर्धा विजिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचब से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकेंगे।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से कुछ ही क्षणों में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता साथी ले सकेंगे 7:30 से। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे 8:00 और 8:15 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए मेहदी हसन की गाई गजलें। सुबह 9:00 सुनिए सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिमांशु विश्वरूप का वायलिन पर बजाया राग विलास खानी तोड़ी। तबला संगति निसार हुसैन की होगी। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन सकेंगे 10:05 पर। फ़ोन करें गीत सुने ये कार्यक्रम 11:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले किया जाएगा। साथ ही फिल्म संगीत का आनंद श्रोता साथी आज ले सकेंगे 2:12, 2:02 और 2:30 पर।

शाम 5:02 पर हमारी सायंकालीन सभा में युवा श्रोता सुन सकेंगे उनका कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले किया जाएगा और ये छतरपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता साथी ले सकेंगे शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर

7:20 पर आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन सकेंगे मोहन सिंह कुशवाहा का स्वच्छता गीत। 7:30 से सुनना ना भूलें। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच द्वितीय सेमीफाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। श्रोताओं, ये थी हमारे सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:10 होने को है। अब से कुछ ही क्षणों में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली तैयार। भारत मंडपम में कल से होगा दो दिवसीय आयोजन। इंदौर में आज से दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में 17 सितंबर से दो बड़े जनसेवा अभियान। 50 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मिलेगी मुफ्त रजिस्ट्री। और तीन दिन के ब्रेक के बाद प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा, जिसे लेकर राजधानी में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दो दिन के सम्मेलन में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचेंगे। संयुक्त राष्ट्र और WHO समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए आज से इंदौर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समिट का शुभारंभ करेंगे। इसमें निजी बस ऑपरेटर, परिवहन विशेषज्ञ, IT कंपनियां, उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और PPP मॉडल के जरिए बस सेवाओं को बेहतर बनाने पर रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ प्रस्तावित सी बिल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1966 का मौजूदा बीज कानून अब बदलते समय और नई कृषि चुनौतियों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। सरकार को किसानों और संगठनों से करीब 18,000 सुझाव मिले हैं और सभी सुझाव पर विचार के बाद ही कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए कानून में नकली और घटिया बीज बेचने वालों पर ज्यादा प्रभावी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है।
1: विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों की तरफ से ये सुझाव और मांग आई थी कि सीड एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट 1966 में बने थे, तब से लेके अब तक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ है और ज़रूरत है कि नया सीड एक्ट आए और पेस्टिसाइड एक्ट भी नया आए, क्योंकि एक बड़ी समस्या घटिया बीज, घटिया पेस्टिसाइड है। उन पर संपूर्णता से और गहराई से विचार करके हमारे किसानों के हित में, कृषि के हित में, फिर एक्ट के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में 17 सितंबर से दो बड़े जनसेवा अभियान शुरू होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कलेक्टरों को दोनों अभियानों को उत्सव के रूप में मनाने और तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। स्वामित्व अभियान के तहत 50 लाख से ज्यादा ग्रामीणों की संपत्तियों के निशुल्क रजिस्ट्री कर उन्हें दस्तावेज दिए जाएंगे। वहीं सेवा से संकल्प अभियान के पहले दिन शाम 7 बजे प्रदेश भर में 58 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। उज्जैन के महाकाल लोक में अकेले 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाने की तैयारी है। राज्य सरकार का कहना है कि एक महीने तक चलने वाले अभियान में जन भागीदारी से अलग अलग जन सेवा के काम किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया श्रीलंका यात्रा को दोनों देशों की रक्षा और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच श्रीलंकाई वायुसेना की L-70 एयर डिफेंस गनों के आधुनिकीकरण, NCC और नेशनल डिफेंस कॉलेज के बीच सहयोग समेत कई समझौतों पर सहमति बनी। इस यात्रा को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का कहना है,
2: श्रीलंका और भारत के जो रिश्ते हैं बहुत बहुत पुराने हैं, 2500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और यही कारण है कि श्रीलंका के साथ एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते और जिस प्रकार से श्रीलंका में भी

0: उड़ाव चढ़ाव होता रहता है, तो उसमें जिस प्रकार से भारत ने उनकी मदद की, वो भी इस बात के उनको एहसास है कि भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत ने उनको जबरदस्त सहायता की। और यही नहीं कि इकोनॉमी के लिए, जब इवन जब साइक्लोन आया उधर भी की। तो ये ऐसे संदर्भ में जब हम देखते हैं कि अपने रक्षा मंत्री जी जब गए तो उन्होंने कुछ डिफेंस एमओयू दस्तखत किए, और वो बहुत जरूरी है। और जो कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी हमने अपने L-70 को दी, वही उनको देने की कोशिश की है।
1: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की खनिज संपदा प्रदेश के विकास की बड़ी ताकत है। इसका इस्तेमाल पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से किया जाना चाहिए। उन्होंने सिंगरौली को माइनिंग का मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां DMF की राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और पर्यावरण जैसे कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। सागर के बंडा में अवैध शराब मामले से जुड़े आरोपियों के 5 अतिक्रमणों पर कल बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने मनीष लोधी के 3, चंद्रभान राजपूत और आशीष साहू के 1-1 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। भोपाल के 53 वर्षीय विकास चौधरी अपने अंगदान से 4 लोगों को नई जिंदगी देंगे। 6 दिन पहले ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 सितंबर को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया। इसके बाद परिजनों ने दुख की घड़ी में अंगदान का फैसला किया। विकास का हृदय चेन्नई, लीवर इंदौर और दोनों किडनी भोपाल के मरीजों को दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम भोपाल के कोलार स्थित एक निजी प्लाजा में फिल्म हनुमान अंश देखी और इसकी तारीफ की। फिल्म नीप करौली बाबा के जीवन, भगवान हनुमान की भक्ति और सेवा की भावना पर आधारित है। शहडोल जिले के छोटे से गांव विचारपुर की 6 लड़कियों का चयन राष्ट्रीय U16 फुटबॉल कैंप के लिए हुआ है। मऊ में IFF इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में शहडोल की टीम ने ग्वालियर और महू को 10-10 से हराया और फाइनल में इंदौर से 1-0 से हार कर उप विजेता रही। और अब बात मौसम की। 3 दिन के ब्रेक के बाद प्रदेश में मॉनसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा भी शामिल हैं। 12 सितंबर से इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग में भी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर की ग्राम पंचायत मुगावली के ग्राम खुरजाई में आज शिविर का आयोजन किया गया है। मंदसौर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और डायट में मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपदा मित्र योजना के तहत आगरमालवा जिला आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा हेतु जिले में नामांकित 125 आपदा मित्रों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कल से शुरू हुआ। सतना जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और जन समुदायों के पुनर्बहाली के कार्य किए जा रहे हैं। मुरैना में परिवहन विभाग द्वारा नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। भोपाल में सरकारी जमीन पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 करोड़ रुपए बाजार मूल्य वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। शिवपुर में महिला बाल विकास चंबल संभाग मुरैना की संयुक्त संचालक रेखा सिंघल ने आंगनवाड़ी केंद्र ढेंगदा का निरीक्षण किया। मंडला में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासनिक समिति की बैठक आयोजित हुई। शिवपुरी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत आगामी शिविर आज तहसील कोलारस में नगर परिषद के सामने कोलारस में आयोजित किया जाएगा। विदिशा में सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की है।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 28 सितंबर 1931 को डेली हेरल्ड में प्रकाशित बापू के आलेख के संपादित और अनुवादित अंश। मेरे पहनावे की, जिसे अखबारों में लंगोटी कहा गया है, आलोचना की जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, मुझसे पूछा जाता है कि मैं इसे क्यों पहनता हूँ। जान पड़ता है कुछ लोगों को मेरा ये पहनावा बुरा भी लगता है। जब अंग्रेज लोग भारत जाते हैं तब क्या वे यूरोपीय पोशाक को छोड़कर भारतीय पोशाक पहनने लगते हैं, जो वहाँ की आबोहवा के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है? नहीं, वे ऐसा नहीं करते। और यही उन लोगों के प्रश्न का उत्तर है जो मुझसे पूछते हैं कि यहाँ इंग्लैंड में मैं ये भारतीय पोशाक, जिसे पहनने का मैं आदी हूँ, क्यों पहनता हूँ। यदि मैं यहाँ एक अंग्रेज़ नागरिक की तरह रहने और काम करने के लिए आऊँ, तब तो मुझे इस देश के रीति रिवाजों के अनुसार चलना ही चाहिए और अंग्रेज़ों वाली पोशाक पहननी चाहिए। लेकिन मैं तो यहाँ एक बड़ा और विशेष उद्देश्य लेकर आया हूँ, और मेरी लंगोटी, अगर आप इसे लंगोटी ही कहना पसंद करें, तो मेरे मालिकों की, भारत की जनता की पोशाक है। मुझे तो एक पवित्र थाती सौंपी गई है, मुझे एक विशेष काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए मैं तो वही पोशाक पहनूंगा जो मेरे उद्देश्य की प्रतीक है। मेरा जो तरह तरह का वर्णन किया जाता है वो मुझे दिलचस्प लगता है, कभी कभी तो वो मज़ेदार भी लगता है। लेकिन मैं तो केवल अपने देश भाइयों का प्रतिनिधि हूँ और उन्होंने मुझे जो काम सौंपा है उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं महिलाओं को पूर्ण रूप से पुरुष के समान दर्जा दिए जाने में विश्वास रखता हूँ, और मैं जिस भारत का निर्माण करना चाहता हूँ उसमें उन्हें वो दर्जा प्राप्त होगा। मेरे साथ जो इतनी सारी महिला कार्यकर्तियाँ काम कर रही हैं, उसका कारण मेरे ख्याल से मेरा ब्रह्मचर्य और महिलाओं के प्रति मेरी सहज सुहानुभूति की भावना है। आपने शायद ऐसा सुना होगा कि मेरे देश में महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं। ऐसा सिर्फ देखने में ही है, वास्तव में उनका प्रभाव सदा से बहुत प्रबल रहा है। सदियों से महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती आई हैं। अगर वे काम करना बंद कर दें तो बहुत से पुरुष भूखों मरने लगेंगे। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 28 सितंबर 1931 को डेली हेरल्ड में प्रकाशित बापू के आलेख के संपादित और अनुवादित अंश। गांधी चर्चा का समापन करते हैं बापू के इस प्रिय भजन से।

प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त पूजा सिंह। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म यस बॉस से। गीत जावेद अख्तर का है और संगीत जतिन ललित का, आवाज़ें अभिजीत और अलका याज्ञिक की।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
4: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
3: क्या, कैसे?
4: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
3: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
4: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।

श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए फिल्म अंजाम का ये गीत, जिसे गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने।

और दोस्तों लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से देव कोहली का गीत है और जतिन ललित का संगीत, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याज्ञिक की।

कभी हाँ कभी ना से अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू का गाया ये गीत। आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और अब लीजिए सुनिए फिल्म बाजीगर का ये गीत जिसे गाया है आशा भोसले और विनोद राठौड़ ने।

0: आशा भोसले और विनोद राठौर के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजीगर का ये गीत। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज शाम 7:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा महिला T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच द्वितीय सेमीफाइनल। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। आठ बजने को है, कुछ ही क्षणों में समाचार प्रभात का अनुप्रसारण किया जाएगा।
1: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज।

0: और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपद अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ APJ अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में

स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
0: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष सुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
6: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि

0: समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs.

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेहदी हसन के गाए गीत और गज़लें। आइए सबसे पहले सुनते हैं ये गज़ल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मेहदी हसन की गाई गजलें। आइए सुनते हैं ये अगली गजल।

0: दोहा है इसके अंदर, हिंदी दोहा। राजकुमारी को नौकरानी देख के हैरत से कह रही है कि ये क्या हाल बनाया है राजकुमारी ने।
1: मंदिर बा सुंदर खड़ी,
0: ये मंदिर, मन मंदिर,

आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मेहदी हसन की गाई गीत और गज़लें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिवसीय सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के अलग अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के श्रीलंका दौरे के दौरान कल दोनों देशों के बीच श्रीलंकाई वायुसेना के L-70 एयर डिफेंस गनों के आधुनिकीकरण, NCC और नेशनल डिफेंस कॉलेज के बीच सहयोग समेत कई समझौतों पर सहमति बनी। प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए आज से इंदौर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समिट का शुभारंभ करेंगे। इसमें निजी बस ऑपरेटर, परिवहन विशेषज्ञ, IT कंपनियां और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ प्रस्तावित सीट बिल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार को किसान संगठनों से करीब 18,000 सुझाव मिले हैं और सभी सुझाव पर विचार के बाद ही कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और महू में IFF इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में शहडोल जिले के गांव बिचारपुर की 6 लड़कियों को राष्ट्रीय अंडर 16 फुटबॉल कैंप के लिए चुना गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

मॉर्निंग श्रोताओं, आप सभी को पूजा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपने आपके अपने चहेते कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी होंगे स्वस्थ, मस्त और सुबह के कामों में व्यस्त। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और लेकिन उससे पहले दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक अलग ही बवंडर छाया हुआ है। इंस्टाग्राम खोलते ही जैसे 80s और 90s का बॉलीवुड दौर वापस लौट आया है। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी यही हाल है। हर दूसरा इंसान अपनी AI वाली फ़ोटो शेयर कर रहा है, कोई दिव्या भारती जैसी मासूमियत और घुंघराले बालों में नज़र आ रहा है, तो कोई शाहरुख खान वाला वो दीवाना फिल्म का 90s का ऑरा रिक्रिएट कर रहा है। लड़कों की प्रोफाइल पर मिथुन चक्रवर्ती कार डिस्को डांसर वाला लुक छाया हुआ है, तो वहीं लड़कियां अमृता सिंह की तरह बोल्ड एंड बिंदास नज़र आ रही हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब कुछ सच में कर रहे हैं लोग? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ AI पर। ये सारा खेल AI ने रचा है। आपको बस आराम से लेटे लेटे अपना एक नॉर्मल सा फ़ोटो डालना है AI पर और उसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। बाकी का काम AI अपने आप कर देगा। ना कपड़े बदलने की झंझट, ना हेयर स्टाइल बनाने की झिकझिक, और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको भी मिल जाएगा अपना 80s और 90s वाला लुक। वैसे सोचने वाली बात है ना दोस्तों, ज़माना कितना भी हाईटेक हो जाए, AI जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन हमारे दिल को सुकून आज भी वही 80s और 90s वाली पुरानी यादों में ही मिलता है। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपनी कोई ऐसी AI रेट्रो फोटो बनाई है? आशा करती हूँ आपने बनाई होगी, क्योंकि आखिर मज़े लेने में प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी चीज़ को करके हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है तो इसमें हर्ज ही क्या है?

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, मेरे यानी पूजा के साथ। दोस्तों, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके जिक्र के बिना दुनिया अधूरी होती है। ऐसा ही एक नाम है विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों, आज आचार्य विनोबा भावे की जयंती है। वे न केवल आध्यात्मिक चिंतक थे बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। विनोबा भावे ने खादी ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वच्छता व ग्राम सेवा जैसे गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूदान आंदोलन था। मई 1960 में चंबल क्षेत्र के कुछ कुख्यात डाकुओं ने भी उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अठारह अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में कुछ भूमिहीन लोगों ने विनोबा भावे के सामने भूमि की आवश्यकता की बात

रखी और उन्होंने इसके लिए कुछ करने का आश्वासन दिया। इसके बाद एक स्थानीय जमींदार से ने लगभग 100 एकड़ भूमि ऐसे भूमिहीन लोगों के लिए दान करने की घोषणा की। इस तरह ये घटना भूदान आंदोलन की शुरुआत बनी। दोस्तों, विनोबा भावे का विचार था कि जमीन के बड़े मालिक स्वेच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीन लोगों को दे, वे भूमि सुधार को हिंसा या जबरदस्ती की बजाय प्रेम, नैतिकता और स्वैच्छिक त्याग के माध्यम से करना चाहते थे। विनोबा लगभग 13 वर्षों तक पैदल गांवों में घूमते रहे। उन्होंने भूमिधरों से भूमिहीनों के लिए भूमि दान करने की अपील की और ग्रामदान की अवधारणा भी प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य भूमि और संसाधनों को सामुदायिक भावना से देखने की दिशा में बढ़ना था। इतना ही नहीं दोस्तों, वे महात्मा गांधी के प्रमुख आध्यात्मिक शिष्यों में से एक थे और भूदान व ग्रामदान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अहिंसा व बिना सरकारी दबाव के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक अनोखा प्रयोग किया। विनोबा के अहिंसक प्रभाव का एक उल्लेखनीय उदाहरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, चंबल के डाकुओं का आत्मसमर्पण था। 1940 में महात्मा गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही चुना था। दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति को आकाशवाणी ग्वालियर याद करता है, उन्हें नमन करता है और हमारी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दोस्तों, इसके साथ ही जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, रेट्रो युग का कमबैक हो चुका है। तो रेट्रो युग में सिर्फ फ़ोटोज़ के बारे में नहीं बल्कि गैजेट्स का भी कमबैक हुआ है। टेक्नोलॉजी हर दिन पहले से ज़्यादा स्मार्ट और तेज़ हो रही है, लेकिन युवाओं की पसंद अब एक दिलचस्प मोड़ ले रही है। जिस टेक्नोलॉजी को कभी पुराना और आउटडेटेड समझकर किनारे कर दिया गया था, अब वही जेन ज़ी के लिए दोबारा कूल बन रहा है। दोस्तों, ईयरबड और वायरलेस हेडफोन के बीच वायर वाले ईयरफोन हाई एंड स्मार्टफोन के बीच छोटे पॉइंट टू पॉइंट शूट के कैमरे और स्मार्ट वॉच के दौर में साधारण डिजिटल या एनालॉग घड़ी युवाओं के स्टाइल का हिस्सा बन रही है और इसका असर दोस्तों बाज़ार में भी दिख रहा है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े बाज़ार में अब ऐसे ग्राहक नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ लेटेस्ट फीचर वाला डिवाइस नहीं बल्कि पुराने दौर का लुक और अनुभव देने वाले गैजेट तलाश रहे हैं। दोस्तों, पुराने दौर की रेट्रो दौर की बात ही कुछ और है। प्योर नॉस्टैल्जिया। तो चाहे मिलेनियल्स हो या फिर जेन ज़ीज, आज का दौर तो यही कर रहा है, ट्रेंड में यही है कि रेट्रो लुक को अपना लिया जाए।

दोस्तों, पता है आज सुबह सुबह जब मैं चाय पी रही थी तो चाय पीते पीते ही बस मन में ऐसे ही ख्याल आया कि अरे, वो मेरी दूर की बुआ जो थी, उन्होंने मुझे पिछले साल राखी पे जो गिफ्ट दिया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। काश मैंने उनसे उसी समय बोल दिया होता। और ये सोचते सोचते मैं बहुत देर तक सोचती रह गई और मुझे काम के लिए लेट भी हो रहा था। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी बात को कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। हम इंसान भी बड़े कमाल के क्रिएचर हैं ना। आधा समय तो हम इस बात में बिता देते हैं कि ऐसा हुआ होता तो क्या होता, और बाकी आधा समय ये सोचने में निकल जाता है कि अगर वैसा नहीं हुआ होता तो क्या होता। इसी को तो कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी विचारों का वो ताना बाना जिसमें हम खुद ही अपनी सोच का जाल बुनते हैं और फिर उसी में उलझ कर रह जाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि रात को हम सोने गए और दिमाग में पुरानी बातें चलने लगती हैं। किसी ने कुछ कह दिया था तो उसके 10 अलग अलग मतलब निकालने लगेंगे, या फिर कल आने वाले काम को लेकर दिमाग में अपने आप ही दुनिया भर की नेगेटिव फिल्में बनने लगती।

और आजकल तो एक नई ही चीज़ चलने लगी है, डिजिटल ओवरथिंकिंग। भाई अगर स्टेटस लगाया है किसी ने किसी के लिए, तो उसके लिए पता नहीं, जिसने जिसके लिए लगाया है उससे उसने तो स्टेटस देखा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन बाकी सभी लोग उस स्टेटस को अपने ऊपर लेकर और बहुत कुछ सोचने लगते हैं और फिर मन में बातें बनने लगती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी बात के बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना बंद कर देता है और केवल समस्याओं को ही मल्टीप्लाई करने लगता है। यानी प्रॉब्लम असल ज़िंदगी में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपनी सोच में बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि दिमाग के ओवर स्पीडिंग इंजन पर ब्रेक कैसे लगाया जाए। जब भी लगे कि विचार आपके वश से बाहर हो रहे हैं, तो दोस्तों ये तीन छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करती हूँ, हो सकता है कि आपके भी काम आए। पहली ये द 5 सेकेंड रूल। जैसे ही लगे कि दिमाग एक ही बात को बार बार घुमा रहा है या उसी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, तो एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग को तुरंत किसी फिज़िकल काम में लगा दीजिए। कुछ नहीं तो कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखने लगे, ठंडा पानी पी लिया एक गिलास, या फिर ना वॉक करना शुरू कर दीजिए। बॉडी का मूवमेंट दिमाग का पैटर्न तोड़ ही देता है। और दूसरा पॉइंट है लिख लीजिए। अगर आपके पास समय है तो जो बात आपको परेशान कर रही है और उसके बारे में आप और 10 बातें सोच रहे हैं, उसे किसी डायरी या पेज पर लिख लीजिए। जब विचार दिमाग से निकलकर पन्ने पर आ जाते हैं तो उसका डर आधा रह जाता है। और फिर उसे फाड़ना मत भूलिएगा लेकिन, क्योंकि वरना इसे आप जब भी पढ़ेंगे तो पता चला आप फिर से उसी ओवरथिंकिंग के लूप होल में घूमने लगे, इसलिए उसे फाड़ना ज़रूरी है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि क्या जिस बात के बारे में आज हम इतना सोच रहे हैं वो बात अगले आने वाले 2 सालों में 5 सालों में कोई मायने भी रखेगी। ज़रा सोचिए कि आज हम इतना टाइम इसमें अपना बर्बाद कर रहे हैं, उनमें से 90% बातें तो आगे चलकर कोई मायने ही नहीं रखेंगी, तो फिर इसके बारे में इतना क्यों सोचना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, तो इसे उन चीज़ों की चिंता में मत गवाइए जो अभी हुई ही नहीं है। बीते हुए कल से सीखिए, आने वाले कल की तैयारी कीजिए, लेकिन जिए केवल आज के इस खूबसूरत पल में। तो चलिए अपनी सोच का वज़न करते हैं थोड़ा सा हल्का, और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं सुनवाने वाले हूँ आपको आज का अगला धमाकेदार गीत।

तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप भी ओवर थिंकिंग के इस जाल में नहीं उलझेंगे और दूसरों की उलझने भी सुलझा सकेंगे अपनी प्यारी सी मुस्कान से। तो आपकी ये प्यारी सी मुस्कान यूं ही बने रहे, इसके लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप आज का रेट्रो थीम कैसा लगा। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आज भी आज तक जिन लोगों ने कल तक फ़ोटो नहीं डाली थी अपनी रेट्रो लुक वाली, वो आज ज़रूर पोस्ट करेंगे। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इसी के साथ मुझे यानी पूजा को दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग ग्वालियर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए हिमांशु विश्वरूप का वायलिन पर बजाया राग बिलास खानी तोड़ी। तबला संगति निसार हुसैन की है।

0: का भोपाल केंद्र है।
1: हिमांशु विश्वरूप का वायलिन पर बजाया राग विलास खानी तोड़ी, तबला संगति निसार हुसैन की थी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण किया जाएगा।
2: आलेख विवेक दांगी, वाचन स्वर दीपा सिंह। निवाड़ी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मानसून की। इस बार अच्छी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिले की प्रमुख नदियां और तालाब लबालब हैं। वहीं गांव में बने बलराम तालाब और चेक डैम भी पानी से भरे हैं। इससे भूजल स्तर बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में किसानों और ग्रामीणों को इसका फायदा मिल सकता है। अब बात ग्रामीणों के लिए एक और अहम फैसले की। निवाड़ी में राजस्व विभाग की बैठक में ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक दिलाने पर जोर दिया गया। 17 सितम्बर से अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन योजना शुरू होगी। खास बात यह है कि पंजीयन पर लगने वाले स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस सरकार खुद उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निवाड़ी के बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही गांव में पशुपालन, पर्यटन और रोजगार के दूसरे साधनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। ग्राम चुरारा में की गई कार्रवाई में 10 लीटर हाथ पट्टी शराब जब्त की गई, जबकि 5,500 किलो महुआ लहान मौके पर ही नष्ट किया गया। विभाग का ये अभियान जिले में लगातार जारी है। और अब बात निवाड़ी की उस पहचान की जो देश दुनिया के लोगों को यहाँ खींच लाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ओरछा पहुंचकर भगवान श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके

0: बाद उन्होंने निर्माणाधीन रामराजा लोक और शहर के दूसरे पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का भी निरीक्षण किया। निवाड़ी में सपना सेन ने जिला आपूर्ति अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राशन व्यवस्था को बेहतर बनाना और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर निकाली जा रही कलश वंदन समरसता यात्रा का गाँव गाँव में स्वागत हो रहा है। दुमदुमा से लेकर चिकटा, गुलेंदा, गैलवारा, सियाखास, सुरका और पहाड़ी बक्सी तक ग्रामीणों ने कलश का पूजन किया। भजन और जयकारों के बीच लोगों ने एकता और भाईचारे का संकल्प लिया। दूध में मिलावट रोकने के लिए निवाड़ी में अब मौके पर ही जांच की जा रही है। कशियाओं के दुग्ध अवशीतन केंद्र पर रैपिड मिल्क टेस्ट किट से किसानों को दूध की जांच का तरीका बताया गया। सुक्रोज, नमक, यूरिया और ग्लूकोज जैसी मिलावट की जांच में सभी सैंपल सही मिले। अब इसी किट से दूध की शुद्धता की जांच तेजी से की जाएगी। वहीं समय सीमा बैठक में कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों को जनहित के लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। किसानों से जुड़े राजस्व प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई के मामलों पर समय पर कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही जर्जर स्कूल भवनों की पहचान और बारिश के दौरान जलभराव वाले इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। निवाड़ी की सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसाटी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। बच्चों ने श्रीकृष्ण लीला और मटकी फोड़ की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव मुख्य अतिथि रहे। प्राचार्य अरुण कुमार चतुर्वेदी ने बच्चों को श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े संदेश भी बताए। निवाड़ी सब जेल का न्यायिक अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। सुरक्षा, साफ सफाई, बंदियों के भोजन की व्यवस्था संतोषजनक मिली। अधिकारियों ने बंदियों से इलाज, भोजन और परिजनों से मुलाकात जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्हें इनके कानूनी अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता की भी जानकारी दी गई। निवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। ओरछा तहसीलदार जगदीश रंधावा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने जमुनिया भाटा गांव में 16 एकड़ शासकीय जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। कब्जे वाली जमीन पर बनाए गए एक पक्के मकान को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। और अब टीकमगढ़ से जुड़ी शिक्षा की खबर। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खाली सीटों पर सीएलसी के जरिए प्रवेश का एक और मौका है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तारीख 14 सितम्बर है। इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय से भी जानकारी ले सकते हैं। और आखिर में निवाड़ी से जल संरक्षण की अच्छी तस्वीर। परमार समाजसेवी संस्था ने कुलुआ, मथुरापुरा और पठारी तालाबों का जीर्णोद्धार कर उनकी जल क्षमता बढ़ाई। बारिश के बाद तीनों तालाब लबालब हैं। तालाबों में भरपूर पानी देखकर किसानों और ग्रामीणों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी निवाड़ी जिले की चिट्ठी। आलेख विवेक दांगी का था, वाचन था दीपा सिंह का।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। श्रोता साथी, सुने अपना प्रिय कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। व्हाट्सएप फरमाइश की शुरुआत फिल्म तेजाब के इस गीत के साथ, जिसे गाया है अलका याज्ञिक ने। सुनने की फरमाइश हमें भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने।

संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतरेंगी से भागवत वर्मा। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी। लछनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल,

ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, विशाल,

महाराष्ट्र बुलंदशहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप और केशव पटेल। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

फिल्म सैलाब के इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन प्यारे श्रोताओं ने। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी। गांव कैरो, ज़िला तरन तारण, पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी।

रजनी आकाशदीप अनहद और गुरशबद। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद गैफ अंसारी। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुंभार। बटिंडा रोड मरडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लक्की, तानिया नारंग। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है साजन। इस गीत को गाया है अलका याज्ञिक ने। सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारे ये श्रोता। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। धनोरा विटाली तहसील नादुरा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। गांधी चौक रोपड़ बिहार पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क। महेश्वरी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न ढाणे, वकील वाल्मीक ढाणे, नीनाजी ढाणे और स्वप्निल ढाणे। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका एंड वानी। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। लीजिए इन सभी की फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। और लीजिए अब लेते हैं ये अगली फरमाइश। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू और गुड्डू जाजोरिया। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक भाटिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, दिशानी और निमित आहूजा। संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव।

ओजस्वी यादव, छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा और शांति देवी, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूड़त, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और रिहान अंसारी, लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाशवीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी, खंडवा से राकेश, पिंकी और दुर्गा, जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, कोरिया से डोनट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया जालंधर से अशोक जाटव। लीजिए इन सभी की फरमाइश पर सुनिए फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश सुनिए। फिल्म का नाम है मोहब्बत। इस गीत को गाया है अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने, हरदोई लखनऊ उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार। हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिक्षा, प्रतीक्षा और मैक्स। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन, नथरीन हुसैन, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। लीजिए सुनिए इन सभी की फरमाइश पर ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन श्रोताओं ने, दिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान और अन्नू खान। कोटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा। मोगा पंजाब से जगदीश सिंह मठाड़ू और वीरपाल कौर मठाड़ू। मुक्काम पोस्ट कोलगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। पांडरकवरा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धरश्री बुरांडे। और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका यागी के स्वरों में फिल्म बेटा का ये गीत, जिस गीत को सुनने की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियन जैन सरधना मेरठ से, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास।

आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, मेघा राशि, माधुरी किरण और अनुराग मोहन। तिलोरी अमरावती से सुनैना पवन भोंडे और तनुज पवन भोंडे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज आपने सुना हरविंदर शर्मा का सितार वादन, राग था मियां की तोड़ी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम ब्रिक्स व्यापार मंच आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। एक दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक, उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से अलग देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट का शुभारंभ करेंगे। इसमें बस ऑपरेटर, नीति निर्माता, विशेषज्ञ के साथ ही देश भर के राज्य परिवहन उपक्रमों, आईटी कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे और परिवहन व्यवस्था के लिए सुझाव साझा करेंगे। संयुक्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जून 2026 परीक्षा के परिणाम और रैंक घोषित कर दिए गए हैं, जो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रदेश में मॉनसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल से इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग में भी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। और दक्षिण कोरिया के चांगवोन में विश्व पैरा निशानेबाजी के चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए 4 पदक जीते हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतिका वर्मा। चाह रखने वाले मंजिलों को तखते नहीं बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत वो खुद लिखा करते हैं। और देखते हैं आज फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में किन किन के फोन लगते हैं। शुरू करते हैं सिलसिला हमारे पहले कॉलर से। हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का ये प्रसारण है, कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने। आप पहले फोन कॉलर हैं, बताएं अपना परिचय।
4: आवाज आ रही है ना अच्छी? हाँ, श्रीकांत जाखड़े बोल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र से।
3: श्रीकांत जी, आपने आज फोन किया है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
4: हाँ जी, मुझे मन्नाड़े साथियों की आवाज में सीमा का गाना सुनना है, पुराना गाना। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास है हम, ये वाला गाना।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी पसंद है आपकी। जी,
4: अवेलेबल है ना गाना आपके पास?
3: जी बिल्कुल है ये गीत।
4: नहीं मतलब नहीं तो कोई ऑप्शन में कोई और बोल दूं क्या दूसरा?
3: नहीं, हमारी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, कभी कभी हमसे ही त्रुटि हो जाती है, ये भी मान के चलिए आप। अच्छे अच्छे गीत आपको, लगभग सभी प्रकार के गीत आपको मिल जाएंगे, है ना? तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई गीत ना हो हमारे पास। जी, तो श्रीकांत जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: पुणे। पुणे से।
3: पुणे से बोल रहे हैं आप। हमारा प्रसारण किसके माध्यम से सुनते हैं आप?
4: नहीं, हमारे मित्र इंदौर के रहने वाले हैं हम, और हम ब्लाइंड हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: हमारे मित्र जो है वो फोन से हमको गाना सुनवाते हैं। अब जैसे कल हमको सुनने को मिलेगा ना 11 से 12?
3: बिल्कुल मिलेगा, निश्चिंत रहिए।
4: वो हमको सुनवाएंगे, मित्र है हमारे ब्लाइंड है और हम भी ब्लाइंड है खुद।
3: जी जी।
4: बड़ा वाला फोन तो नहीं है हमारे पास
3: जी,
4: ये अपना सादे फोन से ही हम फोन लगाते हैं।
3: बहुत अच्छी बात है श्रीकांत जी। और को यदि संगीत में रुचि है तो आप रेडियो जरूर सुना की

0: जी, क्योंकि इसमें शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, सभी प्रकार के संगीत आपको सुनाई देंगे। फिल्म संगीत तो होता ही है।
1: आप कौन बोल रहे मैडम?
0: मैं नीतिका वर्मा हूँ। जी जाकड़े जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया, और आपकी पसंद का ये गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं।

0: हेलो
1: जी परिचय दे दीजिए आपका।
0: जी, मैं अरविंद अग्रवाल जी, श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
1: जी कैसे हैं अरविंद अग्रवाल जी?
0: एकदम बढ़िया है, आप कैसी हैं मैम?
1: जी हम भी बहुत अच्छे हैं।
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: मैं नीतिका वर्मा, महोबा में कौन सा गीत भेज दें आपके लिए?
0: मन फिल्म को क्या हा है, तुमको चाहेंगे फिर भी उमस लग रही।
1: हाँ देखिए अब तीज आ रही है, तीज पे तो बरसात होती है, गणेशों में भी पानी बरसता ही है, तो बारिश अभी विदा तो हुई नहीं है। चित्रकूट जाते हैं?
0: जी, पैदल जाते हैं, 150 किलोमीटर है यहाँ से,
1: अच्छा
0: लाखों लोग पहुंच जाते हैं वहाँ, एरिया सभी 50-100 किलोमीटर सब गेर के गांव के।
1: काहे का मंदिर है वहां पर, किन का?
0: बजरंग बली का,
1: बजरंग बली जी का।
0: कामता नाथ स्वामी है वहाँ।
1: अच्छा तो श्री बजरंग जी जी के दर्शन करके आप लोग लौटते हैं फिर?
0: जी, वहाँ 13 साल भगवान ने बिताए हैं वनवास के।
1: पूरी भारत भूमि जो है वो दर्शनीय है।
0: जी
1: चलिए आप सेवा कीजिए और
0: जी
1: आपकी पसंद का ये गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी
0: जी। नमस्ते
1: दीदी, दुले सिंह यादव बोल रहा हूँ, ग्राम बापचिया जिला आगर मालवा से।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया है दीदी, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपने फोन किया है, अपनी पसंद का गीत बताएं पहले तो।
1: दीदी गाना सुनवा दो, दीदार यार फिल्म में है वो, सरक दी जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। परिवार वालों का नाम लेना चाहता हूँ दीदी।
0: जी बताएं।
1: दीदी मोतीलाल जी यादव और हार्दिक यादव, भविष्य यादव, रामेश्वर यादव और दिलीप यादव।
0: चलिए, आज आपने इतने लोगों की फरमाइश बताई है, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल दीदी, करना दीदी, धन्यवाद आपका।

0: हाँ नमस्ते मैम, मेरा नाम है रतन लाल सुथार, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा गांव का नाम तो है कारूंगा और तहसील है छोटी सावड़ी और जिला है प्रतापगढ़।
1: जी
0: मैं वहाँ से बोल रहा हूँ।
1: जी राजस्थान में पानी थम गया कि गिरता है वहाँ पे पानी अभी?
0: पानी की भारी किल्लत है यहाँ पे अभी,
1: अच्छा पानी नहीं बरसा।
0: बहुत जबरदस्त किल्लत है। ऐसे मतलब गर्मी में चल नहीं सकते, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, लोगों की फसलें सूखने की कगार पे लग गई है।
1: ओ पानी कम बरसा यानी?
0: जो बहुत कम बरसा था,
1: जी जी जी
0: हमारा हमारा पास वाला दोनों जिला पीछे बारिश में, चित्तौड़ और प्रतापगढ़।
1: चलिए भादो माह के कुछ दिन बचे हैं, ईश्वर की कृपा राजस्थान पर बरसे और वहाँ पे पानी जरूर बरसे, हम तो यही कामना करते हैं। बहरहाल आज आपने फ़ोन किया है, फ़ोन करें गीत सुने में, आपकी पसंद का गीत कौन सा है बताएं।
0: मेरी पसंद का गीत सुनूंगा अब गणेश चतुर्थी आने वाली, जो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मैं सुनूंगा गाना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया, कहीं से झगड़ा कहीं से दंगा, नाच रहा न रो कर नंगा,

0: हाँ जी नमस्कार मैडम, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
1: बताएं जी लोकेंद्र जी, कौन सा गीत भेज दें उज्जैन में आपके लिए?
0: मैडम जी ये अभी गणेश जी स्थापना होने वाली है 14 सितंबर से, तो गणेश जी का ही गीत सुनना चाहूंगा मैं। फिल्म का नाम है अग्निपथ
1: जी,
0: और इसमें गीत है श्री देव गणेशा, गणेश ऐसा गाना है ना मैडम
1: जी जी,
0: भी है चिंतामन गणेश जी का मंदिर है
1: जी जी,
0: वो बहुत पुराना मंदिर है यहाँ का उज्जैन का वो
1: जी,
0: जैसे सारी चिंताएं दूर हो जाती है उनके प्रभु के दर्शन करने से।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, दर्शनीय शहर है आपका।
0: हाँ ये तो एक पर्यटन स्थल भी है उज्जैन,
1: हाँ।
0: और महाकालेश्वर जी का भी ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से अभी जैसे महाकालेश्वर जी की सोमवार के दिन जो शाही सवारी निकली थी
1: जी,
0: हाँ बहुत अच्छा आनंद आया था, बहुत दूर दूर से यात्री आए थे, करीब 5-6 लाख यात्री उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए थे वो शाही सवारी के।
1: जी जी, आकाशवाणी ने इसका सीधा प्रसारण भी किया था।
0: हाँ मैडम बिल्कुल सुन,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके लोकेंद्र वर्मा जी, और हमारे रेडियो के साथ यूं ही बना रहा कीजिए, और आपकी पसंद का ये गीत।

0: हाँ मैडम जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हाँ कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से ध्रुवाराम साहू बोल रहा हूँ
1: जी। बालाघाट में कैसा क्या मौसम है कुछ बताएं बालाघाट के बारे में।
0: मौसम तो मैडम जी आज धूप तपा हुआ है, हल्का बादल वाला धूप है।
1: हम्म।
0: और कभी कभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो जाती है, हल्के झोंके वाली।
1: हम्म।
0: बाकी ज्यादा बारिश का आसार नहीं है।
1: अच्छा बालाघाट में अच्छी फसल हो गई, वहाँ पे तो चावल बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का।
0: हाँ मैडम जी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है तो धान का कटवा जैसे यहाँ भी है, अच्छा फसल है। लेकिन इस साल जो कीट व्याधि जो प्रकोप है वो ज्यादा देखने मिलता है मैडम जी।
1: अच्छा।
0: हाँ क्या है तना छेदक और जो माहू वगैरह का है ना,
1: हम्म।
0: हाँ ये ज्यादा देखने मिल रहा है।
1: हाँ तो वहाँ के किसानों को चाहिए कि वो कृषि सामिकी आती है और जो भी सामिक चर्चाएं होती हैं हमारे कृषि के कार्यक्रम में ग्राम सभा में जो कि शाम 7:21 से आता है उसको जरूर
0: नहीं
1: सुने।
0: सुनते हैं मैडम जी, सुनते हैं
1: जी
0: और आपके जो कार्यक्रम हुए ग्राम सभा उसमें भाग लेते भी रहते हैं।
1: जी जी जी उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और जानकारियां मिलेंगी तो उनकी खेती जो है वो उसमें कुछ गुणवत्ता में कमी अगर रह गई है तो वो अच्छी हो जाएगी, है ना
0: जी मैडम जी बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल। क्या समय रहते हुए हमको इसका समाधान बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना रोग और दुश्मनों का भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी जो फसल है
1: हाँ।
0: उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है मैडम जी।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ध्रुवा राम साहू जी आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज।
0: हाँ तो क्या है अभी गणेश चतुर्थी भी आने वाला है,
1: जी

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है ये।
1: मैं मुन्ना सोनी
0: जी,
1: गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम मैं बढ़िया हूँ। मैडम आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। रेडियो आप किस माध्यम से सुनते हैं?
1: जी
0: ट्रांजिस्टर है आपके पास?
1: छोटा वाला मोबाइल है मैडम, इसी के माध्यम से सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। दमोह में क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: दमोह में तो मौसम अभी बहुत गर्मी पड़ रही है मैडम, पानी भी खुल गया है और बहुत तेज धूप जो है निकल रही है अभी।
0: तो इन दिनों त्योहारों का माहौल बना हुआ है?
1: की भी तैयारी जो है शहर में लगी हुई है, मूर्तियां बन रही हैं गणेश जी की जो है।
0: चलिए, आज फोन किया है, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैडम फिल्म का नाम है शोर
0: जी,
1: तो गाने के बोल हैं, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है।

0: किससे बात कर रहे हैं हम?
1: मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ, मैंने अनूपपुर से।
0: आज फोन किया है आपने?
1: जी मैम।
0: अपनी पसंद पहले बता दीजिए।
1: मैम आज सुना दीजिए आप दिल है कि मानता नहीं का टाइटल सॉन्ग है, कुमार सानू जी की आवाज।
0: जी बताएं, आपके अनूपपुर के बारे में कुछ बताएं, बताएं।
1: जी जी बिल्कुल, अनूपपुर जिला मैम, मैं आपके छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे जिला है।
0: जी
1: जी, और ये अपना कोयलांचल क्षेत्र है और माँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर, यहाँ से अमरकंटक आप आ रहे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ऊपर है।
0: फिर वहाँ पे मौसम कैसा है?
1: अभी तो मैम बारिश थमी है, कम से कम 4-5 दिन से नहीं, बहुत बारिश होती रही है, अभी धूप खिली हुई है अपने अनूपपुर जिले में।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अमरकंटक वहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है?
1: जी मैम 50 किलोमीटर दूर है अमरकंटक।
0: जी चलिए बहुत अच्छी बात है। और कौन सी नदियाँ हैं वहाँ पर?
1: यहाँ पे मैम वही है केवाई सोन नदी।
0: हाँ
1: जी सेवा के वही है, और सोन नदी है जो माँ यहाँ इधर जाके आपके गंगा नदी में जाके मिलती है। छोटे मोटे बहुत सारे नदी है जो जाके सोन नदी में, सोन नदी जाके गंगा जी में मिलती है मैम।
0: अच्छा अच्छा, ये सहायक नदियां हैं।
1: जी,
0: बहुत अच्छी जानकारी आज आपने कार्यक्रम में दी, बहुत धन्यवाद आपका।

0: जी मैं जगह सिंह चढ़ार ग्राम पिपलिया बराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहे मैडम जी।
1: रायसेन के बारे में कुछ बताएं आप
0: जी। बरसात हो रही है बहुत ज्यादा।
1: अच्छा,
0: और सब बढ़िया है।
1: बढ़िया है। देखिए, हमारे अभी इससे पहले बहुत से श्रोता बता रहे थे कि वहाँ पानी नहीं बरस रहा, राजस्थान में तो उनकी फसल भी खराब होने वाली है, बता रहे थे हमारे एक श्रोता। तो रायसेन
0: हमारे
1: में
0: यहाँ भी सोयाबीन हो खराब, बाकी तो ठीक ठाक है, बस फसलें हैं, बाकी सोयाबीन होगा खराब।
1: फसल सबकी अच्छी हो, अच्छी लहलाते खेत हो, यही उम्मीद करते हैं। और आज आपकी पसंद का गीत बता दीजिए
0: जी वो सुना दो, आज का अर्जुन फिल्म का सुना दो, गोरी हैं कलाइयां।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: जी, नमस्ते जी।
0: जी, आपका शुभ परिचय दे दीजिए।
1: मोहम्मद हारून गुल्ला, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश जी।
0: हारून जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: और आप कैसे हो?
0: हम बहुत अच्छे हैं। हारून साहब, आज आपने फोन किया है, तो आज कौन सा गीत आपकी पसंद का है?
1: फिल्म का नाम है अनोखा अंदाज,
0: जी
1: उसमें से आप कुछ भी चला देना, सभी अच्छे हैं।
0: जी विदिशा में क्या कुछ करते हैं आप?
1: बस खेती बाड़ी करते हैं,
0: जी
1: मक्का आ गया, भुट्टे खा लीजिए आप।
0: बिल्कुल, तो मक्का लगाया है इस बार खेत में?

0: मक्का बोया है और सोयाबीन बोया है।
1: सोयाबीन भी, फसल अच्छी हुई है आपकी?
0: जी हाँ, फसल उम्दा है।
1: चलिए बहुत बहुत बधाई, आपकी फसल अच्छी हुई है। भुट्टे खाइए, आनंद लीजिए और हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया मोहम्मद हारून जी।

0: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं गंज वासुदा से। हमें तुम बिन फिल्म का गाना सुनवा देना कोई सा भी।
1: टाइटल ट्रैक सुना दें?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल दीदी।
1: आपके लिए आप कार्यक्रम के आखिरी श्रोता हैं।

0: दियों से अगर अंधेरा दूर हो जाता तो चांद की किसी को खबर ना होती। अगर जिंदगी अकेली ही काटी जा सकती तो रिश्ते नाम की कोई चीज ना होती। तो रिश्ते संजो के रखिए, यदि आपसे कोई रूठा है तो उसे मना लीजिए। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला ब्रिक्स व्यापार मंच आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक, उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से अलग कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट की शुरुआत करेंगे। बैठक में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए बस ऑपरेटर, नीति निर्माता, विशेषज्ञ सहित देश भर के राज्य परिवहन उपक्रमों, IT कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए प्रेरणादायक भाषण को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि यह भाषण भारत की सभ्यतागत विचारधारा को दिखाता है। स्वामी विवेकानंद के प्रेरक शब्द आज भी विश्वभर में गूंज रहे हैं। और प्रदेश में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं आदर्श नगर मटोल से राज शर्मा, मीना, योगेश मेंटी, सौरभ, शाइनी शर्मा और निवास शर्मा। बुरहानपुर से मुशर्रफ खान, जरीन, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर भैया, रीना, रोजूबाई, सनी बाबू और इनकी परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है सन ऑफ सरदार फिल्म का नगमा। मिका सिंह की आवाज़ है, समीर अंजान के बोल हैं और हिमेश रेशमिया की तर्ज। तो आइए सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये नगमा।

अमरपुर छत्तीसगढ़ से दिशा, रूही और लकी श्रीवास्तव। शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू मियाँ, सजदा रानी और हिना कौसर। आप सभी ने सुनना चाहा है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की युगल सुरों में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म का नगमा। तो आइए सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सभी ने सुनना चाहा है चित्चोर फिल्म का नगमा यशुदास की आवाज़ में। गीत और संगीत जो है वो है रविंद्र जैन का। तो आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज़ में चित्चोर फिल्म का आपकी फरमाइश पर ये नगमा।

स्वीकार किया मैंने फिल्म का नगमा। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, निदा फाजले की बोल हैं और उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है। और इसको सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। ये हमें ख़त लिखा है दिल्ली शहर मैरी गेट से, गौरी नगर इंदौर से लिखा हुआ है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

0: छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। महाराष्ट्र से ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस गिरी, प्रणीता, शैलेश, सोनम और धनुष। आप सभी ने सुनना चाहा है मुस्कान फिल्म का नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जमुनिया का 24वां भाग।
1: जमुनिया की कहने सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करने गुनो मेरे भैया,

0: जमुनिया, अपने आरंभिक दुख और तिरस्कार के बावजूद पढ़ लिख कर जीवन संघर्ष में उतरती है। गांव वालों की मर्जी से वो ग्राम सरपंच भी चुनी जाती है और बहुत कम समय में सरकार की दी योजनाएं लागू करके गांव में सारी आधारभूत संरचनाएं खड़ा करती है। शीघ्र ही गांव में एक अजब सा उत्साह और जोश भर देती है। जहां कभी गांव तक आने के लिए पगडंडी भी ढंग से नहीं थी, वहां गांव तक सड़क आई, बस आई, गांव में बिजली आई, गली गली खंभे बिछाए गए, स्कूल बना, अस्पताल खुला, पोस्ट ऑफिस और बैंक भी गांव आए। और उधर जमुनिया के बच्चे गोलू और चिरैया पढ़ लिख कर कलेक्टर और डॉक्टर बने, जिन्हें गांव के गुरुजी ने तेजस और रूपस नाम दिया। और एक दिन ये दोनों बच्चे गांव लौटने वाले हैं और जमुनिया उनकी प्रतीक्षा में बैठी है सुबह से ही। शाम होने तक तेजस और रूपस नहीं आते। चिंतित जमुनिया बच्चों के मंगल के लिए व्रत रखती है और अचानक बेहोश हो जाती है। जयंत उसे ORS घोल पिलाता है और झुल्लन दादा के साथ शहर के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसको देखकर सबको संतुष्ट करता है और कहता है कि कोई खास परेशान होने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा पानी की कमी हो गई थी और जयंत ने उसे ORS देकर बहुत समझदारी का काम किया है। रात भर के इलाज के बाद जमुनिया को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अस्पताल से निकलकर जयंत, झुल्लन और जमुनिया चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीते हैं। अब आगे।
1: बड़ी हंसी आ रही है हा? हम लोगों को परेशान करके तुम्हें बहुत मजा आया।
2: हाँ बेटा, अरे ये तो सही है। एक बार तो मैं बहुत ही डर गया था, पर ऊपर वाले की दया रही तो सब ठीक ठाक रहा। हाँ
3: पर इतना तो साफ हो गया कि आप लोग जमुनिया से बहुत प्यार करते हैं।
1: बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात जानने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? हम लोगों से वैसे ही पूछ लेती तो हम वैसे ही बता देते कि हम तुमको कितना चाहते हैं।
3: अच्छा पापा।
2: हाँ बेटा।
3: आप सबसे माफी मांगती हूँ, आगे ऐसा नहीं होगा। चलो अब बस स्टैंड चलते हैं। कहीं बस चली गई

0: फिर शाम हो जाएगी।
1: हाँ हाँ चलो बेटा, चलो चलो चलो चलो जैन, चलो बेटा।
2: हाँ बाबा चलिए। हाँ,
1: चलो उसामा।
3: हाँ
1: हाँ अरे लो भाई, अब बस भी मिल गई और जगह भी मिल गई, अब आराम से गांव पहुंच जाएंगे।
2: हाँ बाबा ये अच्छा हुआ, नहीं तो कभी कभी खड़े होकर जाना पड़ता है।
1: और का
0: चलो अच्छा हुआ इसकी नौबत नहीं आई।
3: चलो भाई चलो, चलो फत्तेपुर की सवारी। अरे अरे कोई भाग नहीं है, चलो भैया बस चल रही है। चलो उत्तर।
0: जयंत बाबू आप भी कहां से कहां आ गए, मैं एक बुद्धू औरत और
2: ये सब फालतू बातें तो करो मत, तुम चुपचाप बैठो और आराम करो, हम घर चलकर बात करेंगे।
3: लो भाई फत्तेपुर आ गया, चलो बस खाली करो सब लोग, चलो चलो चलो। अरे चलो
2: अरे भाई खाली करते हैं, खाली करते हैं, इसमें बैठने थोड़ी आए हैं। जमुनिया तुम थोड़ा संभल कर उतरना, बाबा थोड़ा मदद कर दो।
1: हाँ बेटा संभाल के, अरे अभी बहुत कमजोरी है।
0: हाँ
1: धीरे धीरे उतरो।
2: हाँ बाबा। हाँ जमुनिया। हाँ बाबा।
1: हाँ
2: घर तक हमें पैदल ही चलना होगा।
1: हाँ बेटा
2: चलो जमुनिया, थोड़ा संभल कर चलना।
1: अरे बच्चे अभी भी नहीं आए, मैं ताला खोलता हूँ और जयंत बेटा।
2: हाँ बाबा।
1: जमुनिया को अंतर लेटा दो।
2: ठीक है बाबा।
1: और थोड़ा आराम करने दो उसको, और फिर हम कुछ खाने का इंतजाम करते हैं।
2: बाबा
1: हाँ
2: अभी दोपहर के लिए तो मैं शहर से रोटी और सब्जी ले आया हूँ, अभी खा लेते हैं और रात का बाद में देखेंगे। जमुनिया तुम यही आराम करो और हम लोग बाहर बैठे हैं।
1: चलो बेटा।
4: अरे जयंत बाबू।
2: हाँ भैया।
4: कैसे हो भैया?
2: अच्छा हो भैया, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
4: अच्छा और जमुनिया बहन की तबीयत कैसी है भैया?
1: वो तो अच्छी है भैया, भगवान जी ने सुन ली। अरे वो तो जयंत बाबू दौड़ धूप करके बचा ले आए उसको।
4: वो तो है भैया, वो तो समझदार आदमी है। अरे अरे बाबा।
1: हाँ।
4: ओ सुबह अपने वो गोलू और चिरैया आए थे।
1: अच्छा।
4: अरे भगवान का सब बहुत बड़े बड़े हो गए, मैं बेचा नहीं पाए मेरे। हाँ अब घर में कोई को नहीं देखो ना।
1: हाँ।
4: तो परेशान हो गए, तो मैंने उन्हें बता जाइए कि जमुनिया भाई की थोड़ी तबीयत खराब है, शहर के अस्पताल गई है, तो तुम लोग बैठो यहाँ आराम करो।
1: हाँ।
4: घर को दरवाजा खोल देता हूँ मैं।
2: बाबा तो बाबा बच्चे परेशान होंगे और कहीं अस्पताल नहीं पहुंच गए?
1: अरे जयंत बाबू अब और परेशान होने की बात नहीं है, वो लोग अस्पताल जाएंगे वहां से पता करके गांव वापस आ जाएंगे। आप आराम कीजिएगा, मैं भी थोड़ी पलक झपका लेता हूँ बेटा।
2: पर बाबा।
1: हाँ
2: ठीक है बाबा।

0: प्रणाम बाबा।
1: प्रणाम बाबा।
2: अरे वाह तेजस और रूपस तुम लोग आ भी गए।
3: जी
2: ये तुम लोगों ने बड़ा अच्छा किया। चमोलिया तुम्हारी राह देख देख कर परेशान हो गई है।
0: अम्मा तो बेमतलब ही इतनी चिंता करती हैं बाबा।
1: चलो कोई नहीं, अंत भला तो सब भला।
0: हाँ।
1: वैसे माई कर क्या रही हैं?
2: अभी अभी आई है, थोड़ा आराम कर रही है। तुम लोग यहीं पर बैठो, उसे थोड़ा आराम कर लेने दो।
0: ठीक है बाबा। प्रणाम दादा।
1: प्रणाम दादा।
4: अरे खुश रहो बेटा, तुमने गांव का नाम रोशन किया है।
5: अरे मैं तो गदगद हो गया हूँ बेटा। जमुनिया को भी तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तुम लोगों की

0: उस दिन हो गई या नहीं?
1: हाँ बाबा, हो गई है। मैं पास के ही जिले में कलेक्टर पोस्ट हुआ हूँ।
0: अरे बाबा,
1: और रूपस तो इसी गांव की डिस्पेंसरी में पोस्ट हुई है।
0: अरे वाह,
1: अब इस अस्पताल को सचमुच एक अच्छा चिकित्सा केंद्र बनाना है। और अम्मा जागेंगी तो बताएंगी कि इस गांव को और क्या क्या चाहिए। हम लोग कोशिश करके वो सारी सुविधाएं भी यहाँ लेकर आएंगे। जहाँ तक मुझे याद है, इस गांव में टेलीफोन नहीं आया है। उसका भी काम चल रहा है। पिछले 2 दिन से हमें यही लग रहा है कि टेलीफोन होता तो इतनी भागदौड़ ना करनी पड़ती।
2: कौन है जयंत बाबू? ये तो अपने गोलू लगता है।
3: हाँ माई, मैं गोलू ही हूँ।
2: हाँ, आजा बेटा, अंदर आ जा। और चरैया?
4: हाँ अम्मा, मैं भी हूँ साथ में। कैसी हो माँ तुम?
2: आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे।
4: माँ,
3: अरे माँ, अब तो हंसने मुस्कुराने के दिन आए हैं और तुम रो रही हो। हाँ
4: बिल्कुल ठीक, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। रोए तुम्हारे दुश्मन। हाँ,
2: अरे ये तो खुशी के आंसू है बेटा। तुम लोगों की माँ कितनी तकदीर वाली है।
3: आप जैसी माँ पाकर तो माँ हम भी बहुत तकदीर वाले हैं।
4: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तेजस भैया। पर अम्मा, तुम्हें हुआ क्या था?
2: तू तो डॉक्टर है, देखकर बता।
4: रुको, अभी देखती हूँ। लाओ जरा नब्ज दिखाओ। अरे अम्मा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं सब बता दूंगी। और अब तो मैं यहीं पर रहूंगी और तेजस भैया भी पास के जिले में ही रहेंगे।
2: अच्छा अच्छा, चल ज्यादा बातें ना बना। अभी कुछ रोटी पड़ी होगी, भूख लगी होगी ना, तो तुम दोनों खा लो। हाँ,
4: अरे नहीं, हम लोग तो सुबह आए थे तो पता चला कि तुम लोग शहर गए हो। बस फिर हम लोग भी वापस वहाँ चले गए तुम्हें ढूंढते ढूंढते, तो पता चला कि तुम गांव लौट आए हो। तो हम लोग वहीं पर कुछ खा पी कर आए हैं। रात का खाना अब साथ में ही खाएंगे। अभी तुम आराम करो।
2: हाँ, आराम तो कर ही रही हूँ बेटा, तुम लोग मेरे पास ही बैठो।
3: हाँ अम्मा, तुम्हारे पास ही हैं।
4: और अब तुम आराम करो, ठीक है?
2: हाँ, यही आराम करती हूँ।

0: भाई वाह, देखो इसे कहते हैं भाग की बात। अब अपनी जमुनिया को ही देखो, बेटा कलेक्टर, बेटी डॉक्टर, बेचारी जिन हालात से निकली है ना भैया, देख के ऐसा नहीं लगता था कि जिंदा भी बचेगी कि नहीं बचेगी, है ना?
1: हाँ
0: है? और आज देखो पूरे गांव की चिंता करती है लड़की, है? और दिन रात सभी के भले के लिए काम करती रहती है।
1: हाँ हाँ भाई, ये तो बड़ी बात है, है? अरे मानो तो अपने गांव जैसा आसपास में एक भी गांव नहीं है, है कि नहीं?
2: हाँ भैया।
1: अरे जमुनिया, जरा अपने बच्चों से कहो कि हम लोग उन्हें देखना चाहते हैं।
3: हाँ हाँ भैया, अभी बुलाती हूँ। देखो गोलू और चिरैया, गांव भर के लोग बाहर बैठे हैं, तुम लोग जाओ और बड़ों के पांव छूकर सबसे आशीर्वाद लो।
4: ठीक है अम्मा, चलो भैया।
5: चलो,
4: आप सभी को हमारा प्रणाम।
1: आओ आओ भैया, आओ आओ। अरे तुम लोगों ने तो हमारे गांव का नाम बुलंद कर दिया। अरे हम सबको तुम पर गर्व है बेटा।
6: सच बात। अरे ये तो बताओ बोलू, कितने दिन के लिए आए हो?
1: हाँ भैया जी, और बता दो।
5: मैं तो एक दो हफ्ते में चला जाऊंगा, पर ये चिरैया यहीं रहेगी।
6: अरे
5: ये इसी अस्पताल में आप लोगों की सेवा करेगी, और इसे जो भी मदद चाहिए होगी, स्टाफ की दवाइयाँ वगैरह, वो सब सरकार करेगी।
1: हाँ, वाह अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: वाह बेटा वाह, कितने अच्छे विचार है देखो बच्चे के। हाँ, भगवान करे तुम्हें खूब तरक्की मिले भैया। हाँ, तुम दोनों खूब आगे बढ़ो, हम सबकी दुआएं बटोरो। हाँ भैया, सबके काम आओ हमारे बेटा, हमारे आशीर्वाद है।

0: बिल्कुल
1: बिल्कुल बाबा, अब आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अब यहीं रहूंगी और आप सबकी सेवा करूंगी। तेजस भैया देखो तो जरा ये रोटी कैसी बनी है।
2: हाँ दिख रही है, बहुत ज्यादा सुंदर है। देखो तो जरा कहाँ जा रही है वो, नाक निकल रही है उसकी तिरछी।
1: अब देखो भैया मेरे मजाक मत बनाओ, हाँ एक तो मैं रोटी सेक रही हूँ और ऊपर से तुम मजे ले रहे हो।
3: का बात हो रही है, बड़ी हंसी हो रही है। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझे खाना बनाने दो, तो तुम लोग हो कि मानते ही नहीं। देखो कैसी रोटी बन रही है ये। हाँ
1: अच्छी तो बन रही है अम्मा।
4: अरे बिटिया रोटी बन रही है और बढ़िया बन रही है, क्या हुआ? अरे थोड़ी गोल नहीं है और क्या।
5: हाँ बाबा, और वैसे भी ठीक कहा आपने, पेट में जाकर सारी रोटियां एक जैसे ही हो जाती है।
2: ठीक कहा बाबूजी आपने।
3: ठीक कहा बाबूजी आपने, सारी जलाती रोटियां।
6: जी मालिक।
7: झटके खा रहा है क्या है? ढंग से पाओ दवा।
6: जी
7: ससुरी नींद ही नहीं आ रही। अरे सोच सोच के दिमाग भन्नाने लगा ही ससुरी चमुनिया। अरे अब तो ऊ के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ेंगे, अरे आसमान में उड़ेगी आसमान में। अरे एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। अरे एक तो पैर से ही तेज थी और ऊपर से ये जयंत ने सिखा पढ़ा कर और चतुर बना दिया। और अब तो बेटा कलेक्टर होकर आ गया है। अभी ससुरी किसी को का समझेगी।
6: माफ कीजिएगा मालिक।
7: हाँ।
6: अब अपने दिमाग से जमुनिया को निकाल दीजिए, तभी आराम आएगा। बेकार दुखी होने से कोई फायदा नहीं, जमुनिया का नसीब बहुत बड़ा है, अब आपके कोसने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ सुना है चिरैया इसी गांव के अस्पताल में डॉक्टर बनकर आई है। अब खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो वही तो काम आएगी।
7: अजब, अबे चिरैया के हाथ से इलाज, अरे उसके हाथ से इलाज करवाने से अच्छा है हम मर ही जाएं। हाँ
6: अरे शुभ शुभ बोलिए मालिक।
7: और का तो
6: किसी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि उसके बिना ना रह सके, और इतनी नफरत भी नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ ना रह पाए।
7: अच्छा
6: और फिर जरा गौर से सोचिए कि चिरैया और जमुनिया ने आपका क्या बिगाड़ा है। दोनों ने ही आपके साथ अच्छा बर्ताव किया, और अब आप भी समझिए इस बात को कि उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
7: वाह भैया वाह, बहुत ही बढ़िया है, अब तू हमें समझाने लगा है?
6: मालिक बात समझाने की नहीं है, समझने की है।
7: अच्छा चल अच्छा, कह रहा है तो समझने की कोशिश करते हैं, पर पांव ढंग से दबा पहले।
6: जी मालिक
7: ढंग से।
6: जी
7: बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है।
3: अरे
8: भारत में
3: ये कब का अखबार है?
8: कल का है, मैंने शहर में खरीद लिया था।
3: अच्छा।
8: पर पढ़ने का मौका नहीं मिला तो सोचा अभी पलट कर देख लूं।
3: देख भी लीजिए और मुझे बताइए भी, कोई खास खबर?
8: हाँ हाँ बताता हूँ। देख रहा हूँ कि सरकार कितनी नई नई योजना लेकर गांव में आ रही है, लेकिन गांव के लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे।
3: अच्छा
8: अरे अरे क्या हो गया?
3: क्या हो गया?
9: क्या हो गया बेटा है? अरे एकदम से तुम चौंक क्यों गए?
8: अरे झुलन बाबा।
9: हाँ
8: आप यहाँ आइए मेरे पास।
9: अच्छा हाँ
8: सर ये देखिए, आप इस औरत को पहचानते हैं क्या?
9: हैं? अरे हाँ इसको तो खूब पहचानता हूँ।
3: ये क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे भी आप लोग? क्या देख रहे हैं, किसको पहचान रहे हैं?
8: अरे लो लो तुम भी खुद देख लो।
3: हाँ लाओ दिखाओ।

0: अरे ये तो मैं हूं।
1: अरे हाँ जमुनिया जी, ये आप ही हैं, आप ही की तस्वीर छपी है।
2: अरे जरा दिखा तो। वाकई ये तो अम्मा ही है।
3: अरे वाह, क्या लिखा है बाबा इसमें, जरा बताइए।
1: अरे भाई, इन्होंने इस ग्राम पंचायत में जो काम किया है उसकी तारीफ छपी है।
4: बहुत अच्छा बेटा, अखबार में फोटो छप गई है।
1: जी बाबा।
4: अरे नाम हुआ सोचकर छाती फैल जाती है बेटा।
3: अम्मा,
4: हाँ।
3: अम्मा बहुत बहुत बधाई।
2: वाह अम्मा,
3: सचमुच तुमने अपने बल पर बता दिया कि आदमी की इच्छा हो तो वो पहाड़ से भी टकरा सकता है।
0: वो सब तो ठीक है बेटा, पर मैंने जो कुछ हासिल किया है उसमें जैन जी का बड़ा हाथ है, ये मत भूलो।
3: इसमें भूलने वाली कोई बात ही नहीं अम्मा।
2: बिल्कुल,
3: वो तो हमारे लिए एक आदर्श है।
0: हाँ

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 24वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला ब्रिक्स व्यापार मंच आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से अलग कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें

0: करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट की शुरुआत करेंगे। बैठक में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए बस ऑपरेटर, नीति निर्माता, विशेषज्ञ सहित देश भर के राज्य परिवहन उपक्रमों, आईटी कंपनियों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में 17 सितंबर से स्वामित्व अभियान के तहत 50 लाख से ज़्यादा ग्रामीणों की संपत्तियों की निशुल्क रजिस्ट्री की जाएगी। वहीं सेवा से संकल्प अभियान के पहले दिन शाम को प्रदेश भर में 58 लाख से ज़्यादा दीपक जलाए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल से इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग में भी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। और दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी के पहले दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। हेलेन केलर के इसी नीतिगत वाक्य के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कार्यक्रम महिला सभा में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रतिभा चतुर्वेदी। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हरी भरी वसुंधरा, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल पत्ती, कलरव करते पक्षी सभी का मन मोह लेते हैं। ये धरती हरी भरी बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर प्रयास करें, बारिश के मौसम में पौधारोपण करें और वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल करें। बहनों, घर में खाली मैदानों और सड़क किनारे हाइब्रिड छायादार और फलदार वृक्ष लगाएं जो कम समय में ही जल्दी विकसित हो जाते हैं। बहनों, इसी दिशा में और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हरित भारत मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया या GIM भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यवाही योजना NAPCC के तहत फरवरी 2014 में शुरू किया गया एक प्रमुख मिशन है। बहनों, इसका उद्देश्य देश के घटते वनों की रक्षा करना, उसे बहाल करना और उसका विस्तार करना है। ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य 5 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग 50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर वन और वृक्ष आवरण बढ़ाना है, मौजूदा वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रतिवर्ष 50 से 60 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का पृथक्करण करना है। लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख वन निर्भर परिवारों की आय और आजीविका में सुधार करना है। बहनों, हरित भारत मिशन वन क्षेत्र को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये वन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर बल देता है और एक हरित और अधिक लचीला भारत बनाने के लिए वृक्षारोपण, पुनर्वनरोपण और टिकाऊ भूमि उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। GIM के उद्देश्यों के अनुसार 1 लाख कुशल स्थानीय समुदायों के युवाओं को प्रशिक्षित करना है जो समुदाय आधारित वन संरक्षण में सहायता करेंगे और समुदाय तथा वन विभाग जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच कड़ी का काम भी करेंगे। बहनों, आप भी परिवार के सदस्यों के जन्मदिवस, वैवाहिक वर्षगांठ और अपने पूर्वजों की याद में एक पौधा अवश्य लगाएं और अपनी धरती को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। तो बहनों, ये तो अभी हमने आपसे चर्चा की ग्रीन इंडिया मिशन पर और अब रुख करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं।

पापा ने हर मुश्किल से मुझे लड़ना सिखाया, हमेशा मेरे साथ रहकर मेरा हौसला बढ़ाया। बहनों, हर कदम पर परिवार का साथ बच्चों को संबल प्रदान करता है। समय के साथ लोगों की सोच भी बदली है और बेटी और बेटे की समान शिक्षा, समान परवरिश से आज हर कदम पर हर क्षेत्र में बेटियों ने सफलता का मुकाम हासिल किया है। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला और सुरक्षा का मुख्य केंद्र है। बहनों, आज की परिस्थितियों को देखते हुए माता पिता अपनी बेटियों को उन्हीं की पसंद के आधार पर अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए तरह तरह के कोर्स करवाते हैं ताकि वे आगे जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। बहनों, बेटियों को घर के छोटे बड़े फैसलों में अपनी राय रखने का मौका दें, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्रता उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। परिवार को हर कदम पर बेटियों का हौसला और विश्वास बढ़ाना चाहिए ताकि वे समाज की रूढ़िवादी सोच और पाबंदियों को पार कर सकें। बेटियों को घर में ऐसा अपनापन और सुरक्षित माहौल दें जहां वे खुलकर अपनी बात कर सकें। बहनों, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ

अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें, उन्हें आत्मरक्षा का गुण सिखाएं, साथ ही आत्मसम्मान से जीना सिखाएं, क्योंकि जब एक बेटी आत्मनिर्भर बनती है तो पूरे परिवार का

वे में दयाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। दयाराम एक प्राइवेट संस्था में छोटे पद पर कार्य करता था। उसके परिवार में तीन बच्चे वीरेंद्र, इंदिरा, कविता और पत्नी शोभा थी। दयाराम के पिता पुरुषोत्तम और माता कांति उसके बालकाल में ही स्वर्ग से धार गए थे। दयाराम का कोई सगा संबंधी न होने से उसका लालन पालन चचेरे भाइयों ने किया। पढ़ाई समाप्ति पर उसे प्राइवेट नौकरी मिल गई और ब्याह हो गया था। दयाराम की पत्नी शोभा कम पढ़ी लिखी होकर भी घरेलू सुघर महिला थी। इसकी वजह शोभा को बालकाल से ही अपने मायके में संस्कारी माहौल मिला था, क्योंकि शोभा की माँ सावित्री एक सीधी साधी धार्मिक महिला थी जिन्होंने अपनी गृहस्थी सकुशल चलाई और बच्चों को लाड़ प्यार से पाला। बड़ा होने पर ब्याह रचा दिया। परिवार पुराने परिवेश और सोच का होने से लड़कियां जल्दी ब्याह दी गईं। शोभा की पढ़ाई मायके में 8वीं दर्जा तक ही हो पाई थी और दयाराम उसका जीवन साथी हो गया। ब्याह के कुछ वर्षों तक जीवन अच्छा बीता। परिवार में एक के बाद एक तीन बच्चों की किलकारी से हंसी खुशी का माहौल हो चुका था। बच्चे बड़े होने लगे, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, उनके लालन पालन का खर्च सामने आ गया। सब कुछ ठीक था, पर शोभा के पति दयाराम को कुछ गलत एमाल करने वाले साथी मिल गए और धीरे धीरे दयाराम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान न देकर पूरी की पूरी वेतन खाने पीने और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में उड़ाने लगा। शोभा चिंतित रहने लगी। जैसे तैसे बच्चों की पढ़ाई प्राइमरी शिक्षा के साथ माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा ले देकर पूरी करवाई। महंगाई और खर्च अधिक होने के कारण बच्चों की उच्च शिक्षा नहीं हो पा रही थी। रुपए पैसे के अभाव में बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाया, वर्ष बर्बाद हो गए। अब पति दयाराम की खाऊ उड़ाऊ आदत के कारण शोभा हैरान हो चुकी थी। न दिन का चैन, न रात का आराम। वह बेचारी कुछ दिन मर्यादा से बंधी रही। घर से बाहर निकलना शर्म के कारण घर पर रहने को विवश कर देता। शोभा धर्म संकट में थी। एक ओर बच्चों की पढ़ाई और उनका लालन पालन, दूसरी ओर लज्जा और मर्यादा। वह अपनी कठिनाइयों से उभरना चाहती थी। दिन रात इसी उहापोह में बीत रहे थे। एक दिन उसने दृढ़ निश्चय किया, वह कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगी, बच्चों का भविष्य बनाकर रहेगी, उसकी अधूरी पढ़ाई पूरी करवा कर ही चैन लेगी। शोभा विचारों में खोई थी, तभी उसके दूर के एक संबंधी जो रिश्ते में चाचा लगते थे का अचानक विक्रमपुर आना हुआ। चाचा गिरधारी लाल जी ट्रांसफर पर विक्रमपुर आए थे। शोभा से कुशल क्षेम पूछने पर शोभा रो पड़ी। तभी चाचा गिरधारी लाल बोले, बेटा रोते नहीं, मुझे बताओ क्या परेशानी है और क्या था। शोभा ने अपनी कहानी रो रो कर सुना दी। उसने चाचा से पूरा दुखड़ा बता दिया। चाचा गिरधारी लाल जी भले आदमी थे, उन्होंने शोभा को समझाया और कहा, बेटा हिम्मत से काम लो, कठिन परिस्थितियों में धीरज रखना चाहिए, मुझे बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ। रोते नहीं, मैं तुम्हारे पति दयाराम को समझाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर शोभा को पता था कि उसका पति इतना बिगड़ चुका है कि अब वह नहीं सुधरने वाला। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की वह स्वयं भी पढ़ाई पूरी करेगी और काम करेगी, बच्चों को आगे पढ़ाएगी, जहाँ चाह वहाँ राह। उसने चाचा से मदद लेकर उसी सत्र में हाई स्कूल बोर्ड का फॉर्म स्वाध्याय के रूप में भरा। घर गृहस्थी के काम के साथ ही शोभा ने पढ़ाई का समय निकाला। हर विषय का अध्ययन स्वयं करती, जो कठिनाई आती बच्चों से विषय पर चर्चा करती। साथ ही पड़ोस की पढ़ी लिखी महिलाओं और लड़कियों से भी बीच बीच मार्गदर्शन ले लेती। धीरे धीरे दिन बीतते गए और परीक्षा आ गई। शोभा ने बड़े हल्के मन से सभी विषयों के पेपर्स दिए, पेपर अच्छे भी रहे। अगले ही महीने शोभा का हाई स्कूल परीक्षा परिणाम आ गया और हिम्मत न हारने वाली शोभा फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हो गई। फिर क्या था, चाचा गिरधारी लाल जी को जैसे ही समाचार मिला शोभा फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई है, वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शोभा से कहा, बेटा मेहनत का फल मीठा होता है, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और बच्चों के भी फॉर्म भरवा दो। शोभा ने बच्चों के भी आगे की पढ़ाई के फॉर्म भरवा दिए और अपना इंटरमीडिएट का फॉर्म भी भर दिया। स्वाध्याय के रूप में इंटर की परीक्षा की तैयारी करती रही। आशा के अनुकूल
एक बार फिर मेहनत सफल हुई। अब इंटर क्लास में भी शोभा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण।

0: हो गई। वह सामने खड़ी जिम्मेदारियों के लिए अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। नौकरी की तलाश करती रही। एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक हो गई। उसे वेतन मिलने लगी। कुछ घर पर ट्यूशन पढ़ाने से भी रुपए मिल जाते। शोभा ने अपनी मेहनत के बल पर आत्मविश्वास के साथ बच्चों की उच्च शिक्षा पूरी कराई। शोभा की मेहनत, लगन और प्रतिज्ञा रंग लाई। बच्चों की उच्च शिक्षा पूरी होते ही बेटा वीरेंद्र को अच्छी कंपनी में बड़े पद पर पोस्टिंग मिल गई। अब लड़कियां इंदिरा, कविता खुश रहने लगीं। सब कुछ ठीक चलने लगा। लेकिन शोभा और बच्चे एक ही चिंता में ग्रसित थे कि समाज और रिश्तेदारों में दयाराम की बिगड़ी प्रवृत्ति चर्चा का विषय रहता था। पत्नी शोभा और बच्चों की यह सब अच्छा नहीं लगता। जब जब शादी ब्याह की बात आती तब लोग कहते, हमें उठाई गिरा दयाराम के बच्चों से शादी नहीं करनी। यह सुनकर शोभा का मन कुंठित था। बच्चे वीरेंद्र, इंदिरा, कविता भी दुखी थे। तभी एक दिन सभी बच्चों ने इकट्ठा होकर अपने पिता दयाराम को समझाने की ठानी। अब ये बच्चे वीरेंद्र, इंदिरा, कविता बड़े हो चुके थे। इंदिरा, कविता विवाह योग्य हो रही थी। दयाराम का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। फिर क्या था, अपने बच्चों के समझाने पर अपनी आदत सुधारने का दयाराम वचन देने लगा। दयाराम ने अपनी पत्नी शोभा से क्षमा मांगी। दयाराम रो पड़ा। धीरे धीरे दयाराम अच्छा आदमी बन गया। बच्चों के विवाह प्रस्ताव आने लगे और घर में पहले बेटा वीरेंद्र का विवाह होने से एक सुंदर बहू आ गई। साथ ही अच्छा वर मिलने पर शोभा और दयाराम ने अपनी लाडली बेटियों इंदिरा, कविता के हाथ पीले कर दिए। वे अपनी ससुराल चली गईं। एक बार फिर परिवार में हंसी खुशी का माहौल हो गया।
1: अभी आपने कहानीकार रजनी खरे से उनकी कहानी सुनी प्रतिज्ञा। और बहनों, अब चलते हैं संगीत के सफर पर और सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में अभिमान फिल्म से ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने।

और इस प्यारे सी गीत के बाद अब आपको देते हैं उपयोगी जानकारी। बहनों, कहा गया है पहला धन निरोगी काया, लेकिन आजकल हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, क्योंकि बहनों बिगड़ती दिनचर्या, बिगड़ता खान पान, अव्यवस्थित जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर महिलाओं को मोटापा घेरने लगता है। मोटापे की समस्या महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीर तरीकों से प्रभावित करती है, जो केवल वजन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। बहनों, मोटापे के कारण महिलाओं में पुरुष हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PSOS होने का खतरा बहुत अधिक हो जाता है। बहनों, हार्मोनल असंतुलन के कारण पीरियड्स समय पर नहीं आते, यानी अनियमित माहवारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और मासिक धर्म से जुड़ी कई समस्याएं पैदा होती हैं। मोटापे के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या भी सामने आती है, जिससे अंडे सही न बनने के कारण गर्भधारण में कठिनाई होती है। बहनों, गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसी जटिलताएं बढ़ जाती हैं। अधिक वजन वाली महिलाओं को Type 2 diabetes, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इससे बचने का आसान तरीका यही है कि संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां, मूंग की दाल, खीरा, ककड़ी, फाइबर युक्त खाद्य सामग्री लें और दही मट्ठा का सेवन करें। गरिष्ठ भोजन, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, शीतल पेय, मीठा, शक्कर, चाय, कॉफ़ी का सेवन ना करें। पानी और घरेलू तरल पदार्थों का सेवन करें। प्रतिदिन योग या व्यायाम करें। सुबह सवेरे सैर करें और रात का भोजन डॉक्टर के अनुसार सोने के 3-4 घंटे पहले कर लें। डॉक्टर के अनुसार शाम 7 से 8 बजे का समय उपयुक्त होता है। और बहनों, ज्यादा जानकारी के लिए रजिस्टर डॉक्टर से संपर्क करें। तो बहनों, ये तो हमने आपको उपयोगी जानकारी दी मोटापा और महिलाओं का स्वास्थ्य इस विषय पर। और बहनों, इस समय पूरे मध्य प्रदेश में भीषण बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जगह जगह पानी का भराव जाने अनजाने अनचाही दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। बहनों, भीषण बारिश में घर से बाहर निकलने से बचें। यदि जरूरी हो तो पानी के भराव वाले रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते का चयन करें। फिर भी यदि रास्ता एक ही है और जाना बहुत जरूरी है तो आपको रास्ते के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। बहनों, आपका घर यदि काफी पुराना है, किसी कमरे की दीवार में या छत में दरार है, या पानी दीवारों में भर रहा है, या पानी का रिसाव हो रहा है, तो उस कमरे को या उस जगह को इस्तेमाल में ना लाएं, क्योंकि लगातार पानी का बरसना कभी भी किसी भी अप्रिय घटना को कारित कर सकता है। इसलिए मौसम खुलने पर ऐसी जगह की मरम्मत अवश्य कराएं, उसको नजरअंदाज ना करें, ना ही टालें, क्योंकि जीवन अनमोल है। बहनों, नदी नाले उफान पर हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। पानी से खिलवाड़ ना करें, ना ही नदियों में नहाने या तैराकी करने जाएं। जो लोग नदियों के समीप रहते हैं वे अन्य दूसरी जगह चले जाएं। ऐसा करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे और पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे, क्योंकि कहावत है कि आग और पानी किसी का मुलायजा नहीं करती। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए। तो बहनों, ये तो हमने आपसे बातचीत की बारिश में सावधानियां इस विषय पर। और बहनों, अब चलते हैं संगीत के सफर पर और सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में भाभी फिल्म से ये गीत। राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को संगीत में पिरोया है चित्र गुप्त ने।

अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, अब आप मौसम का आनंद लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय कॉफी के साथ। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राम भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राम भजन आजाद सिंह यादव की आवाज़ में।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राम भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है प्रीति सागर द्वारा गाए गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रीति सागर द्वारा गाए गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम गान।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म अय्या से।

अमित त्रिवेदी का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अय्या से। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है उर्मिला ढंगर की आवाज़ में फिल्म फरारी की सवारी से।

0: देना।
1: प्रीतम का संगीत गुरु ठाकुर के लिखे बोल उर्मिला धांगड़ की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म फरारी की सवारी से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विकास और आर्थिक ताकत के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टार्टअप, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए विश्व के बड़े देशों से आत्मविश्वास के साथ संवाद कर रहा है।
1: वैश्विक स्तर पर इतने उथल पुथल भरे माहौल में भी आर्थिक विकास दर है, वो दर हमको हमारे नेतृत्व पे माननीय मोदी जी पे गर्व करने का मौका देती है। इस दर की स्पीड देखे दुनिया में, अमेरिका की 2%, चाइना की 4% और भारत की 7.8% है। ये अपने आप में सब कुछ कह देती है कि आज वैश्विक युद्धों के माहौल के बीच में भी एक देश कैसे रास्ता निकाल करके प्रगति करता है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने समिट के शुभारंभ अवसर पर इंडस्ट्री एक्सपो का उद्घाटन कर उसका अवलोकन भी किया। सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि लखेरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ 25 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बड़ाइठा थाना क्षेत्र में हनुमान टोंग मंदिर के पास जंगल में घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किए जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक प्रशासन ने 16 मौतों की पुष्टि की है। 46 मरीज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं जिनमें 5 की हालत गंभीर है। प्रदेश में आज करीब 7,000 बैंक शाखाओं पर कामकाज प्रभावित है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर करीब 40,000 बैंक कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हो रही हड़ताल से नकद जमा निकासी, चेक क्लियरेंस और कर्ज से जुड़े काम प्रभावित रहेंगे। वहीं डिजिटल बैंकिंग, UPI और ATM सेवाएं सामान्य रहने की संभावना है। हड़ताल के बाद शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण बैंकिंग सेवाएं सोमवार से सामान्य होने की संभावना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में 3 दिन की सुस्ती के बाद मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल से इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग में भी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। राज्य में अब तक 31.3 इंच बारिश हुई है जो सामान्य से करीब 2.6 इंच कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के कृषकों की फसल बीमा संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु कल कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कटनी नगर निगम द्वारा स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कुल 4,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। शिवपुरी जिले में अवैध शराब के निर्माण और विक्रय के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। और जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज मलेशिया से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान

0: ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: www.govi.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
2: For BRICS particularly, higher economic activity.
3: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
2: and transparent trade and investment.
0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
3: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
2: Take to the world as a trusted partner.
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
6: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
9: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। लेकर हाजिर हूँ इस कार्यक्रम को मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम में आपके भेजे पत्रों को हम पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं।

आप ही के पसंद के गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले की आवाज़ में एक गीत के साथ, जो है फिल्म वक्त से, और इसे गाया है आशा भोसले के साथ ही महेंद्र कपूर ने भी। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छाबड़ा राजस्थान से आसफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की तरफ से। इसके अलावा हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़।

रवि का संगीत साहिर लुधियानवी के लिखे बोल, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म वक्त से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म शोर से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की ओर से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें लिखा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चार डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए, आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत संतोष आनंद के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म शोर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मुगले आजम से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है पटेल नगर मलोट पंजाब से। लिखने वाले श्रोता हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बीबी आरजू जाजौरिया। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ज़िला बुरहानपुर मोहत से, मुशर्रफ खा तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू, परू तड़वी और उनके पूरे परिवार की ओर से। घंटाघर चौक से खंडवा से हमें लिखा है संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

नौशाद का संगीत शकील बदायूनी के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मुगले आजम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म तोहफा से। आवाज़ है आशा भोसले और किशोर कुमार की और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले श्रोता अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर टुकटुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुरा से, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी की तरफ से। हमें एक और पत्र मिला है पाकिजा।

रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलखत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की ओर से। तो लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत आपके लिए।

बप्पी लाहिरी का संगीत, इंदिवर के लिखे बोल, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तोहफा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गोरा और काला से। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, पोतरा मुस्तबा खान, पोतरी आफिया खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग ककोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की तरफ से, और पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी की ओर से। तो लीजिए प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मुकेश के आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गोरा और काला से। और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी तरह अपने पत्र हमें भेजते रहिए अपनी फरमाइशों के साथ। और हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि लखेरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ 25 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। प्रदेश में आज करीब 7,000 बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर करीब 40,000 बैंक कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर हैं। और प्रदेश में 3 दिन की सुस्ती के बाद मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा आज शाम 6:00। और महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल

सुनवाया जाएगा आज रात 7:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत हैं राम भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आज़ाद सिंह यादव द्वारा गाए एक भजन के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: रेडियो 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बज चुके हैं। अब आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। दोनों नेताओं द्वारा आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति, व्यापार संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 2026 पहली अक्टूबर से लागू होगा। राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को 13 अगस्त को मंजूरी दी थी। यह नया कानून 1891 के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट का स्थान लेगा। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नया कानून एक आधुनिक ढांचा उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इसी महीने 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का मंगल आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के नागरिकों को सुगम, सरल, सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद बस सेवा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। हम 25 सितंबर से नया कदम बढ़ाने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय के समन्वय से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 2 दिवसीय भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के साथ भारत के गहन तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। आप सुन रहे थे इस घंटे की

0: खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी। योगदान है आकाशवाणी छतरपुर का।

दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। इसी सुविचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवांगी तिवारी। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। आप सभी के मनोरंजन के लिए होंगे गीत संगीत और आप सभी की जानकारी के लिए होगी कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली महत्वपूर्ण चर्चा से। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो आप सभी के जीवन में बेहद जरूरी है। साथियों, बेटी जब घर में जन्म लेती है तो उसके साथ कई सपने भी जन्म लेते हैं। माता पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है कि आने वाले समय में उनकी बेटी की पढ़ाई, करियर और शादी जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा कैसे जुटाई जाए। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना के रूप में सामने आती है। इस योजना में बेटी के नाम पर छोटी छोटी बचत से उसके भविष्य के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये सिर्फ पैसे जमा करने की योजना नहीं, बल्कि बेटी की शिक्षा और उसके सपनों को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। आज जब महंगी शिक्षा और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच बच्चों के भविष्य की चिंता बढ़ रही है, ऐसे में समय रहते की गई बचत परिवार पर आने वाले आर्थिक दबाव को कम कर सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ योजना शुरू करने का नहीं है, सवाल जागरूकता का भी है। क्या हर माता पिता इस योजना के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? क्या गांव से लेकर शहर तक हर बेटी को इसका लाभ मिल पा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम बेटी के भविष्य के लिए आज से ही आर्थिक रूप से तैयारी शुरू कर रहे हैं? क्योंकि बेटी का भविष्य सिर्फ उसके सपनों से नहीं, सपनों को पूरा करने की तैयारी से भी बनता है। सुकन्या समृद्धि योजना इसी तैयारी की एक मजबूत शुरुआत हो सकती है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे इस महत्वपूर्ण और आप सभी के लिए लाभदायक होने वाली सुकन्या समृद्धि योजना के लिए, जो कि विशेष रूप से बेटियों के लिए होती है। और जब हमने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा कर ही ली है, तो आइए सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत और करवा देते हैं इस गीत के साथ आपका मनोरंजन। साथियों, सुनते हैं सौगंध फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सौगंध फिल्म से यह प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था आनंद मिलिंद ने। तो साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थल की तरफ जिसके बारे में आपने सुना होगा, जाना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन इस स्थान की विशेष बात क्या है ये हम आपको अपनी चर्चा के दौरान बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका शैलाश्रय की। साथियों, चट्टानों पर लिखी हजारों साल पुरानी मानव सभ्यता की कहानी है भीमबेटका शैलाश्रय। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में स्थित भीमबेटका शैलाश्रय भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास की ऐसी अनमोल धरोहर है जहां पत्थरों और चट्टानों पर बनी चित्रकारी आज भी हजारों वर्ष पहले के मानव जीवन की कहानी सुनाती है। ये केवल गुफाओं और चट्टानों का समूह नहीं है बल्कि मानव सभ्यता के शुरुआती दौर का जीवंत दस्तावेज है। यहां प्राकृतिक बलुआ पत्थरों के बीच बने 5 प्रमुख समूहों में शैलाश्रय पाए जाते हैं और इनमें मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, भीमबेटका की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ मौजूद शैल चित्र है। इन चित्रों में प्राचीन मानव के दैनिक जीवन, शिकार, नृत्य, सामूहिक गतिविधि, पशु पक्षी और धार्मिक अथवा अनुष्ठानिक गतिविधियों के दृश्य भी दिखाई देते हैं। लाल, सफेद और अन्य प्राकृतिक रंगों से बनाई गई इन आकृतियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले मनुष्य अपने आसपास की प्रकृति को कितनी बारीकी से देखते और समझते थे। इन चित्रों में हिरण, बाइसन, जंगली सुअर जैसे जानवरों के साथ साथ धनुष, बाण और अन्य उपकरणों के साथ मानव आकृतियां भी दिखाई देती हैं। दोस्तों, भीमबेटका का महत्व इतना अधिक है कि यूनेस्को ने वर्ष 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसे सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर मान्यता मिली। यूनेस्को के अनुसार ये स्थल मानव और उसके प्राकृतिक परिवेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध और आखिर तक संग्राहक जीवन परंपरा का असाधारण प्रमाण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, भीमबेटका को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रागैतिहासिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ मिले प्रमाण मानव और प्रकृति के बीच लंबे संबंध को दर्शाते हैं। भीमबेटका से जुड़ा एक लोकप्रिय धार्मिक लोक विश्वास भी है। माना जाता है कि इसका नाम महाभारत के पात्र भीम से जुड़ा है और इसे भीम के बैठने या विश्राम करने का स्थान माना जाता है। हालांकि ये नाम से जुड़ी लोक परंपरा है, जबकि इस स्थल का पुरातात्विक महत्व प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों और शैल चित्रों से प्रमाणित होता है। आज जब हम इतिहास के किताबों, संग्रहालयों और पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से समझते हैं, भीमबेटका हमें इतिहास को सीधे चट्टानों पर देखने का अवसर देता है। यहाँ बनी एक एक आकृति उस समय के इंसान की सोच, जीवन शैली, संघर्ष और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की झलक देती है। ये भारत की उस प्राचीन स्मृति का हिस्सा है जब लिखित भाषा का व्यापक विकास नहीं हुआ था, लेकिन मनुष्य अपने अनुभवों और विचारों को चित्रों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक पहुँच

प्रिय सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। मारो, खत्म कर दो, बचने न पाए। आवाजें तो सुनाई दे रही थी, पर कह कौन रहा है यह समझ में नहीं आ रहा था। दंगों के दौरान तो जाने पहचाने चेहरे भी एकदम अजनबी नजर आने लगते हैं। चार दिनों की शांति के बाद आज शाइना कॉलेज जाने की सोच रही थी, पर शहर के बिगड़ रहे माहौल को देखकर उसने अपने जहन से यह ख्याल निकाल फेंका था। इस माहौल में किसकी हिम्मत है जो खुद ही अपने जनाजे की तैयारी करने बाहर निकले, शाइना सोच रही थी। लोग कहते हैं कि देश में अब एकता का जज्बा नहीं रहा, गलत कहते हैं। बचाओ, बचाओ, एक कातर सी आवाज़ ने शाइना को खिड़की से बाहर झांकने को मजबूर कर दिया। बाहर मौत अपने सबसे भीभत्स रूप में दिखी। अखबार बांटने वाले एक 15-16 साल के लड़के को शाइना के देखते ही देखते मौत के घाट उतार दिया गया था। शाइना ठगी सी व भयानक नज़ारा देखती रह गई। उसके अब्बू ने उसे संभाल न लिया होता तो वह चकरा कर गिर ही गई होती। उस लड़के के पेट से निकल रही खून की धार याद आते ही शाइना को उबकाई आ गई। हाथ मुंह धोकर आने पर भी वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस मासूम लड़के का क्या कसूर था, उसने किसी का क्या नुकसान किया था। वह हिंदू था या मुसलमान, किसने पूछा उससे, और उसे मारने वाले कौन थे। कौन पड़ता है इस पचड़े में, बस तलवार उठी और सब खत्म। दंगे फसाद कत्ल करने वाले हाथ यह कब सोचते हैं कि उन्होंने किसे मार डाला। जो मरा वह कौन था, किसका बेटा, किसका भाई, किसका पति था। दंगाई कब देखते हैं कि वह 80 साल का बूढ़ा है जो ठीक से चल भी नहीं पाता, या 8 साल का छोटा बच्चा है जो इस दुनिया के रस्म रिवाज भी नहीं जानता। और इस सब से क्या हासिल, इस सब का अंत क्या है। मदद, मदद, यह आवाज़ इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। शाइना फिर खिड़की की ओर बढ़ गई। शाइना, बाहर मत देखो, शाइना के अब्बू ने कड़क कर कहा। वह सहम कर खड़ी रह गई। उसे अब्बू का टोकना अच्छा नहीं लगा था। बुरे हालातों में इंसान खुद को घरों में कैद कर लेता है, ठीक उसी तरह जैसे शुतुरमुर्ग अपने पीछे आ रहे शिकारी से बचने के लिए रेत में सिर घुसा लेता है, यह सोचकर कि अब शिकारी उसे नहीं देख पाएगा। पर क्या ऐसा हो पाता है। जो घरों के बाहर हैं उन्हें सिर्फ मारने की चिंता रहती है, और जो घरों के अंदर हैं उन्हें अपने को बचाने की फिक्र खाई जाती है। इस सब में कोई एक बार भी बीच बचाव करने की नहीं सोचता। पड़ोसी पराई मुसीबत में उनकी मदद ना करने वाला भी ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता, यह एक सामान्य सी बात भी लोग क्यों नहीं समझ पाते। करीम, करीम, मदद, अब्बू का नाम लेकर मदद के लिए पुकारने वाले को देखने से शाइना खुद को रोक नहीं पाई। खिड़की से देखा तो अब्बा के अजीज दोस्त महेश अंकल दिखे। 5-6 लड़कों ने उन्हें घेर रखा था। शाइना घबरा उठी। अब्बू, अब्बू, वे लोग महेश अंकल को मार डालेंगे, उनकी मदद करो, जाओ अब्बू। करीम खान कुछ नहीं बोले और अपना सिर झुका लिया। कई बार झुकी आंखें वो सारी कहानी कह देती हैं जिन्हें जुबान से कह पाना कठिन होता है। शाइना सकते में आ गई। अब्बू, वह फिर कुछ रुक कर बोली, ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते तो मैं जाऊंगी उन्हें बचाने। अब चौंकने की बारी शाइना के अब्बू और अम्मी की थी। करीम खान कड़क कर बोले, पागल हो गई हो क्या शाइना। हाँ, पागल ही तो हो गई हूँ, यह जानकर कि आप इस मुश्किल वक्त में अपने जिगरी कहने वाले दोस्त का साथ छोड़ रहे हैं, उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। क्यों अब्बू, क्यों, करीम खान ने तिलमिलाकर कहा। भरोसा, कैसा भरोसा शाइना, आज तक हम मुसलमानों को बाहरी समझा जाता है, कोई हम पर तहे दिल से भरोसा नहीं करता। वे बाहर से तो अपनेपन का ढोंग करते हैं, पर मन ही मन मनाते रहते हैं कि हम उनका शहर या मुल्क छोड़कर चले जाएं, शाइना ने उन्हें समझाते हुए कहा। ऐसा नहीं है अब्बू, यह सब समझ का फेर है। मुसलमान हर हिंदू को एक ही तराजू पर तौलता है, और हिंदू हर मुसलमान को गद्दार समझता है, पर यह सच नहीं है। ना तो हिंदुओं में जयचंदों की कमी है, न मुसलमानों में औरंगजेबों की, दोनों के ही दामन पर दाग है। फिर हम एक दूसरे की ओर उंगली तानकर क्यों खड़े हैं, क्यों नहीं अपने दामन पर लगे दाग मिटाते हम, क्यों हम एक दूसरे को साथ मिलकर रहने में तकलीफ है। महेश अंकल की मदद करो अब्बू, बचपन से लेकर आज तक हर ईद वे हमारे साथ, और हर होली दिवाली हम उनके साथ मनाते आए हैं, सारे जीवन उनका साथ निभाया है, तो इस वक्त उन्हें तन्हा क्यों छोड़ रहे हो, अब क्या बदल गया अब्बू, करीम खान ने दबे स्वर में कहा। एक हिंदू के लिए मैं अपने समाज से बैर नहीं ले सकता, शाइना चीख पड़ी। हिंदू, हिंदू अब्बू, आज वह हिंदू कैसे हो गए, कल तक तो आपके जिगरी दोस्त, आपके यार थे, क्या हो गया है अब्बू आपको। अब्बू, पर अगर यह हिंदू नहीं होता तो आज आपके सामने आपकी बेटी नहीं उसकी लाश पड़ी होती। करीम खान ने चौंक कर शाइना की ओर देखा। शाइना की अम्मी, जो अब तक चुपचाप बाप बेटे की बहस को सुन रही थी, चौंक कर शाइना से बोली, क्या बकवास कर रही हो शाइना, ठीक ही कह रही हूँ अम्मी। याद है एक सप्ताह पहले जब अचानक दंगे भड़क उठे थे, तब मैं कॉलेज में थी। कॉलेज को जल्दी जल्दी बंद कराया गया, पर तब तक बात बहुत बढ़ चुकी थी। मैं अकेली जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर की ओर आ रही थी कि तभी 3-4 लड़कों ने मुझे आ घेरा। वे हिंदू थे या मुसलमान, यह तो मैं नहीं समझ पाई, पर उनकी आंखों से निकल रही वासना की लपट

0: से इतना तो समझ गई थी कि वे लड़के इंसान नहीं वहशी हो गए थे। उनके इरादे भांप कर मैं उल्टे पैर भागने लगी। वे लड़के पास और पास आते जा रहे थे, तभी मैं किसी से टकरा गई। नज़र उठाकर देखा तो वे महेश अंकल थे। तब तक वे लड़के भी वहां पहुंच चुके थे। महेश अंकल मेरे बिना कहे सारी बात समझ गए। अपने कंधे पर पड़ा शॉल मुझे उड़ाते हुए बोले, नालायको, जिसे मारने चले थे जरा जान तो लेते कि वह हिंदू है या मुसलमान। उनमें से एक लड़का बोला, बड़े मियाँ तुम अब कुछ नहीं समझते, औरत सिर्फ औरत होती है, हिंदू या मुसलमान नहीं होती। पर तुम तो हिंदू हो, जाओ अपनी जान बचाने की फिक्र करो, अंकल ने चीख कर कहा। खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो। तब तक अंकल की आवाज़ सुनकर दो तीन आदमी और वहां आ पहुंचे थे। उनकी संख्या बढ़ते देख उन लड़कों ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। फिर अंकल मुझे घर तक पहुँचा गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे इस बात का जिक्र न करूं, आपको तकलीफ होगी। इतना कहकर शाइना हाथों से अपने मुंह को छिपाकर रोने लगी। उसकी अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। करीम खान ठगे से बैठे रह गए थे। शाइना ने आंसू पोंछकर कहा, अब्बू उन्होंने तो अपना फ़र्ज निभा दिया, अब आपकी बारी है। जो भरोसा उन्होंने आपको मदद के लिए पुकार कर दिखाया है, उस भरोसे को निभाकर अब आप भी साबित कर दो कि उनका हम पर भरोसा करना गलत नहीं था। यही वह कदम है, यही वह पहल है जिसके होने से सब कुछ ठीक हो सकता है। करीम खान ने बड़े नाज से शाइना की ओर देखा और अचानक अपनी लाठी उठा बाहर निकल गए। उन्हें बाहर जाता देख शाइना के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान तैर गई। करीम अपनी लाठी लिए उन लोगों के सामने आ डटे थे। उन्हें आया देख महेश के अंदर भी एक नया साहस आ गया था, क्योंकि अब वह अकेले नहीं थे। उन दंगाइयों ने करीम को देख कर कहा, भाईजान आप हमारे बीच ना आए, आप भी एक मुसलमान हैं और हम अपने ही भाई के खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहते। करीम ने हकारत भरी आवाज़ से कहा, गलत कह रहे हो तुम, मैं मुसलमान नहीं हूँ और ना ही तुम मुसलमान हो। इस वक्त मैं सिर्फ एक भारतीय हूँ और तुम लोग मेरे देश के दुश्मन हो, दंगाई हो। दंगाइयों का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती, पर एक भारतीय होने के नाते मेरा फ़र्ज है कि मैं दूसरे भारतीय की जान की हिफाजत करूँ। जिसमें हिम्मत है वह आए और मेरा मुकाबला करे। करीम के चेहरे के भाव और उनकी आवाज़ में भरा आत्मविश्वास देखकर वे लोग भी सहम गए। करीम खान ने महेश का हाथ थामा और वहां से चल पड़े। महेश ने आत्मीयता से उनकी ओर देखा तो करीम खान ने मुस्कुराकर कहा, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। महेश और करीम खान दोनों समझ गए थे कि घर हो या वतन, दोनों की बुनियाद सभी सदस्यों के आपसी रिश्तों की समझ और मिलकर काम करने की ताकत पर ही टिकी होती है। और अगर बुनियाद एक बार हिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत घर को गिरने से नहीं बचा सकती।
1: साथियों, आप अभी सुन रहे थे कहानी जिसका विषय था पहल और कहानीकार थी कृतिका केशरी। आइए ले चलते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर। हम बात कर रहे हैं आज के समय में युवाओं में होने वाले फिटनेस के जुनून की या फिर दिखावे के दबाव की। दोस्तों, आज के दौर में युवाओं के बीच फिटनेस को लेकर बढ़ता आकर्षण निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव है। जिम, रनिंग, साइकिलिंग, योग, स्पोर्ट्स और वर्कआउट अब केवल कुछ लोगों की दिनचर्या नहीं रह गए, बल्कि बड़ी संख्या में युवा अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर पहले से अधिक जागरूक दिखाई देते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि से शरीर मजबूत होता है, हृदय और मांसपेशियों की फिटनेस बेहतर होती है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक गतिविधि अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने, नींद और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की फिटनेस वास्तव में स्वास्थ्य के लिए है या फिर सोशल मीडिया पर दिखावे दिखने वाली खास तरह की बॉडी को पाने की होड़ बनती जा रही है। इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मस्कुलर शरीर एप्स, स्लिम फिगर और परफेक्ट बॉडी की तस्वीरें युवाओं के सामने लगातार आती रहती हैं। कई बार युवा अपनी वास्तविक शारीरिक बनावट को स्वीकार करने के बजाय इंटरनेट पर दिखाई देने वाली तस्वीरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और यही तुलना धीरे धीरे फिटनेस की स्वस्थ आदत को दिखावे और दबाव में बदल सकती है। आज कई युवाओं के लिए जिम जाना केवल व्यायाम नहीं बल्कि अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का माध्यम भी बन गया है। वर्कआउट के बाद सेल्फी, शरीर की मांसपेशियों को दिखावे वाली तस्वीरें और फिटनेस चैलेंज युवाओं को प्रेरित भी करते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भावना भी पैदा कर सकते हैं कि अगर शरीर वैसा नहीं दिख रहा है जैसा सोशल मीडिया पर दिखाई देता है तो शायद हम पर्याप्त फिट नहीं है। जबकि वास्तविक फिटनेस केवल शरीर के आकार या मांसपेशियों से तय नहीं होती। अच्छी फिटनेस का मतलब बेहतर ताकत, सहन शक्ति, गतिशीलता और नींद, मानसिक संतुलन और स्वस्थ जीवन शैली भी है। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि फिटनेस दिखाने की चीज नहीं, जीने की आदत है। अगर जिम जाने का उद्देश्य स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और बेहतर जीवन है तो ये निश्चित रूप से सकारात्मक जुनून है। लेकिन अगर हर वर्कआउट के पीछे दूसरों से बेहतर दिखने, लाइक्स पाने या सोशल मीडिया के किसी तय मानक पर खरा उतरने

का दबाव है, तो यही जुनून मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। तो आपको जिम जाना है अपने स्वस्थ शरीर के लिए, ना कि दिखावे के लिए। चलिए, बहुत सारी बातचीत और जानकारी के बाद अब करवा देते हैं आपका एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मिस्टर इंडिया फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, कार्यक्रम के अंत में आपको बता देते हैं आज के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर

करता है। पद का नाम है बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता STET। शैक्षणिक योग्यता, संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री 50% अंकों के साथ और BEd परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष पुरुषों के लिए और अधिकतम 42 वर्ष महिलाओं के लिए। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनके आधिकारिक वेबसाइट www.biharboardonline.com पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अनुमति दीजिए अपनी मित्र शिवांगी तिवारी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, योगदान था आकाशवाणी छतरपुर का।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना. जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना. हर संकट का समाधान है भारतीय सेना. भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मैंने प्यार किया से। सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की। गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

इस खूबसूरत नगमे के बाद अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और सोनू निगम ने। गीत लिखा है अनिल पांडे ने और संगीत है संदेश सांडिल का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से, स्वर है उदित नारायण अलगायक ने। फैज अनबर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है डब्बू मलिक ने।

लीजिए अब सुनिए फिल्म वो लम्हे का ये बहुत प्यारा संगीत जिसे गाया है ग्लेन जोन ने। शब्द रचना है सईद कादरी की और संगीत है प्रीतम का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।

0: अंतराल का समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने श्री पुतिन को कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा रचित प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में इसी महीने 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का मंगल आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के नागरिकों को सुगम, सरल, सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद बस सेवा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। हम 25 सितंबर से नया कदम बढ़ाने जा रहे हैं। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 2026 पहली अक्टूबर से लागू होगा। राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को 13 अगस्त को मंजूरी दी थी। यह नया कानून 1851 के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट का स्थान लेगा। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए यह नया कानून एक आधुनिक ढांचा उपलब्ध कराएगा। शिक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय के समन्वय से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 2 दिवसीय भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के साथ भारत के गहन तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। और नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों के साथ गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की है। वे आज श्रीकाकुलम में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं वितरित की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे कैसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में, जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओं, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण

0: थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूँगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थीं। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं, लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: वी आर फाइन सर।
3: आई एम फाइन।
4: आई एम गुड सर।
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
3: I like playing, sir.
5: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
6: Sir, I like singing.
7: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
2: Yes, sir.
5: We like.
1: Lovely butterflies?
2: Yes, sir.
1: And lovely colorful chirping birds.
2: Yes, sir, we like it.
1: That's very nice, children.
5: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
2: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
2: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
2: Like us?
1: Would you like to listen?
2: Yes, sir.
5: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
2: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
2: Okay, sir. We love to recite it.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: I see a big white bear.
2: I see a big white bear.
1: Looking down at me.
2: Looking down. As I lie on my back,
1: looking up at the sky,
2: looking up at the sky,
1: I see a ship sailing.
2: I see a ship sailing
1: on a white sea.
2: On a white sea.
1: As I lie on my back,
2: as I lie
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: I see an elephant.
2: I see an elephant.
1: Waving its trunk at me.
2: Waving its trunk at me.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: Oh, it's fun. It's fun to me. To see whatever I want to see.
2: To see whatever I want to see.
1: So children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
2: Yes, sir.
8: They are beautiful.
9: They are very big.
10: They change the shapes.
1: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
2: Yes, sir!
1: So kids, here comes the song, As I Lie. What?
2: As

0: रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है।
1: सच में?
2: वाह भाई वाह, मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
3: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
2: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
3: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
2: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की, अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
3: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
2: हाँ,
3: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
2: अरे हाँ,
3: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
2: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
3: मालूम नहीं,
2: ये दिन भी देखना था। चलो चलते, अरे चलो चलते, नजदीक आ गए,
3: आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, चलो।
4: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
5: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
4: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
6: उन दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे, वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
5: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
4: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
7: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने
5: जा रही है। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
4: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था।

0: वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
1: होमी, ओ होमी।
2: जी माँ, आती हूँ।
1: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं,
2: क्या बात है माँ?
1: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है, मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
2: जी माँ बिल्कुल।
1: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
2: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, बस यही विचार मन में बार बार आता है।
1: अच्छा तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ
2: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
1: अरे
2: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
1: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
2: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
1: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
2: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
1: कुछ नहीं होमी, बस करो।
2: माँ सुनो तो। अरे
3: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
4: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
0: घर से अनुमति ना मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था, उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया। लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रहीं,
3: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
0: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गईं। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
3: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
2: सर मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, अब बैठो, यहाँ बैठो।
2: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी जरा इसे देखो।
2: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है, जरा यहां देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
2: सर ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है, लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
2: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनत कश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है, और ये लिखा है ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
2: धन्यवाद सर।
3: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशा जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
0: मानेकशा स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशा ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
3: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
0: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
4: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
3: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
0: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
4: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
3: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
0: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
3: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
0: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
6: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनाते हैं एक बहुत खूबसूरत नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। स्वर है लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन के। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है शिवहरी ने।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन है।

सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दिल का क्या कसूर से स्वर है साधना सरगम के। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म सड़क से स्वर है कुमार सानू के, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म आशिकी से स्वर है कुमार सानू और अनुराधा पुडवाल के, गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत है नदीम शमन का।

0: आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का सफ़र अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्केल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

0: के बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:30 पर आप सुनिएगा महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल।

कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 7:20 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सपेरा पेश किया जाएगा। 9:15 पर लोक संगीत के कलाकार होंगे महेंद्र सिंह लोधी और साथी। 9:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए, इसमें आप सुनिएगा वरिष्ठ पत्रकार एवं विधानसभा सलाहकार श्री पंकज शुक्ला जी की बातचीत। 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। दस बजकर 30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, इसमें आप सुनेंगे जयदीप घोष का सरोद वादन, राग होगा देसी। दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12:00 आपकी फरमाइश और 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का 25वां भाग पेश किया जाएगा। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम योगदान होगा आकाशवाणी रीवा का। 1:30 पर लोक संगीत और सुगम संगीत 1:45 पर योगदान होगा आकाशवाणी रीवा का। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युवाणी पेश किया जाएगा। फिल्म संगीत शाम 5:33 पर, शाम 6:00 और 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनिएगा शाम 6:30। शाम 7:25 पर बुंदेली समाचार और 7:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।

रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर फिल्म संगीत। रात 9:30 कार्यक्रम संस्कृति भारती। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे अश्विन एम दलवी का सुरबहार।

श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः बता दें, आज शाम 7:30 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। श्रोताओं, ये थे आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। 5-day बैंकिंग की मांग को लेकर आज प्रदेश के 40,000 बैंक कर्मचारी रहे हड़ताल पर। और सतना, रीवा, शहडोल सहित 12 पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी। इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने श्री पुतिन को कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा रचित प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट किया। श्री मोदी और श्री पुतिन दोनों ने भारत मंडपम में स्थित इनोप्रोम प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित यात्री परिवहन विजन समिट में ऐलान किया कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के 75% गांवों तक आधुनिक और सुरक्षित बस सेवा पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है।
4: हमारे प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव से लगाकर ये जो एक महीने की सेवा संकल्प महीना जो हमने घोषित किया है, ऐसे में 25 तारीख को सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ राज्य के अंदर किया जाएगा यात्रियों की सुविधाओं के लिए।
3: वहीं फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए रैपिडो के साथ एमओयू किया गया है, जिसके तहत महिलाओं द्वारा संचालित रैपिडो पिंक बाइक टैक्सी सेवा को बढ़ावा मिलेगा। भोपाल और इंदौर में इसे पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू किया जाएगा। लगभग 2 दशकों बाद शुरू हो

0: ध्वस्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिव्यांग बच्चों ने मिट्टी से बनाई भगवान श्री गणेश की सुंदर प्रतिमाएं भेंट की। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में बच्चों की प्रतिभा, मेहनत और सृजनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि इन पर्यावरण अनुकूल प्रतिमाओं के माध्यम से बच्चों ने प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश दिया है। उन्होंने गणेश चतुर्थी पर बच्चों द्वारा बनाई प्रतिमाएं खरीदकर उनका उत्साह बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप नगद राशि भी प्रदान की। ये प्रतिमाएँ सीहोर स्थित वसुंधरा विशेष विद्यालय के बच्चों ने तैयार की हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 3,65,000 से अधिक ग्रामीण आवासों के स्वीकृति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शेष 18 लाख आवासों का निर्माण भी जल्द पूरा किया जाएगा।
1: धन्य विष्णुदेव, मुख्यमंत्री बनते ही पहला आदेश ये दिया कि सब गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। और जब विजय आए तो हमने कहा चिंता मत करो, 18 लाख जो शेष बचे हुए जो मकान है वो पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। और आज जब मैं आया हूं, 13 लाख मकान 2 साल में पहले दिए, आपने कहा 2 लाख और बना दिए, आपने 2 लाख बना दिए विष्णुदेव जी, तो 3,65,159 और ले लो, आज मैं स्वीकृति पत्र दे के जाऊंगा।
0: कार्यक्रम में पंचायत पदाधिकारी एवं लखपति दीदी सम्मेलन भी आयोजित हुआ। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री श्री साय और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण भी किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में आज करीब 40,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हुई हड़ताल से प्रदेश की करीब 7,000 बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हुआ। नगद जमा निकासी, चेक क्लियरेंस, ऋण संबंधी कार्य और काउंटर सेवाएं प्रभावित रही। डिजिटल बैंकिंग, UPI और ATM सेवाएं सामान्य रही। हड़ताल के बाद कल दूसरा शनिवार और रविवार होने के कारण बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज सोमवार से सामान्य होने की संभावना है। पांढुर्णा जिले में आज आयोजित गोटमार मेले के दौरान जाम नदी में झंडे पर कब्जे को लेकर पांढुर्णा और सावरगांव पक्ष के बीच सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार पत्थरबाजी हुई। इस दौरान करीब 1,000 से अधिक लोग घायल हुए। 5 घायलों को नागपुर रेफर किया गया। घायलों के उपचार के लिए 7 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, 44 डॉक्टर और 22 एम्बुलेंस तैनात किए गए। सुरक्षा के लिए 700 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ड्रोन और CCTV से निगरानी की गई। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तृतीय और अंतिम चरण की समय सारणी जारी कर दी है। ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन 13 सितंबर तक किए जा सकेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 15 सितंबर तक होगा। मेरिट सूची 16 सितंबर को और सीट आवंटन 17 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद 17 से 19 सितंबर तक भौतिक सत्यापन और 17 से 20 सितंबर तक प्रवेश शुल्क जमा किया जा सकेगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में 3 दिन के विराम के बाद मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, शहडोल और बालाघाट समेत प्रदेश के 12 पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर एरिया से अगले 2 दिनों में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में भी तूफानी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में इस सीजन में अब तक 31.3 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से 8% कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में वर्ष की 3री नेशनल लोक अदालत कल आयोजित होगी। अलीराजपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शिविर में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस श्रद्धापूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुरैना में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत ग्राम खांडोली में शिविर आयोजित किया गया। खंडवा में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में देश की 40 प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंदसौर जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत मुख्य सचिव ने धार में कन्या आवासीय परिसर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये
2: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: Jolly, and this is going to be a cracker of a game today because this is a interesting semi-final. India is already in the final, so we have nothing to worry about. But we'll just wait and see who is going to join India, Sri Lanka or Pakistan.
1: इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे पहले टॉस होना है, लेकिन टॉस में जाने से पहले सुमित्र बोस हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वैशाली माथुर क्रिकेटर हैं. वैशाली, सबसे पहले आप ही से सवाल पूछता हूँ. पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में मुकाबला है एशिया कप, दोनों आपस में पहले भी भिड़ चुके हैं सेमीफाइनल में, थोड़ी सी एज है श्रीलंका को, कुछ कह रहा है कि कोई कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एज है, आप किसको देखते हैं, किसके पास एज है?
2: मुझे लगता है श्रीलंका के पास बेटर है क्योंकि वो 2024 का चैंपियंस भी रहे हैं और उनके पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी है. बैटिंग के बारे में बात करें या बॉलिंग के बारे में बात करें तो वो काफ़ी बेटर है हमारा. एंड उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ चमारी की, तो उसमें उन्होंने लास्ट जो मैच खेला था इंडिया के साथ उसमें बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, और उसके साथ हर्षिता ने भी काफ़ी बेटर किया था. इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 60+ स्कोर किया था. तो अभी जो भारी है पलड़ा वो है श्रीलंका का.
0: सुमित्रो, क्लियरली श्रीलंका ने अभी तक एक भी मैच हारा नहीं है, बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वाकई डू यू थिंक दैट दे हैव बीन प्लेइंग एब्सोल्युटली 100%? देयर वाज हिट्स एंड मिसेस देयर, सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू फील? बिकॉज पाकिस्तान इज वेरी गुड विद देयर बॉलिंग एंड आई थिंक द श्रीलंकन टीम दे हैव द एज विद देयर यूनिसन इन द टीम. सो what exactly do we expect from both the teams?
3: See, first of all, it's a win or go home kind of a match, so right. Pressure is equal for both the teams, but you have to look at what's the group where Sri Lanka played. They had the weaker teams, and the fact that they are unbeaten, the fact is a good statement. But any crunch match like this is always a 50-50 affair,
0: right?
3: They're no favorites, but of course, yes, if you look at their records, yes, they're unbeaten. And they've beaten Pakistan at home in a bilateral series. So yes, if you look at a favorite, if you're looking for a favorite, then maybe Sri Lanka.
0: Okay.
1: Right, then आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 के बाद पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में नहीं गया. आंकड़े बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे. 2022 में अगर देखें तो सिलेट में आखिरी बॉल पर श्रीलंका ने मैच जीता था पाकिस्तान से. बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं. श्रोताओं को बताते हैं कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हो तो हमारे दो टेलीफोन नंबर्स हैं, उन पर खास ध्यान दीजिएगा. वो है 2342-1083 और 2342-1085. यहाँ पे आप फोन करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं. टॉस जब भी होगा वो जाएंगे. लेकिन दादा, आई जस्ट वांट टू कम बैक टू यू. यू नो, लुकिंग एट हाउ दुबई हैज बीन, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ टर्निंग ट्रैक, बट देन यू नो शी जस्ट मेंशन्ड अबाउट चामारी अथापत्थु, शी इज फॉलन टू द फास्ट बॉलर्स बिफोर. यू थिंक you know the fast bowlers still have an opportunity to create an impact in such wickets?
3: Always. You see, it's about 30 odd degrees in Dubai. So there will always be that factor where it will always help the wicket. The fresher wicket will always help. But yes, it's a 40 over game. So as and when the kind of the

0: moisture evaporates, then obviously the spinners come into play.
1: Right.
0: और आप अगर matches का results देखिए तो इधर spinners have been the leading wicket takers and I don't think it's going to change. And both teams have quality spinners. Of course, India have the best spinners. And if you look at the top three bowlers, you'll see there are spinners and spinners and spinners.
1: Right.
0: So the fact remains that yes, spin will dominate for sure. But you never know with a new ball on either side of the wicket and during the power play, everyone's trying to force the pace. There could be wickets here and there.
1: All right. So the interesting part is always, Vaishali, जब भी हम बात करते हैं, कुछ चीजें बहुत ही basic होती हैं कि भी कौन टॉस जीतेगा, जीत के क्या करना चाहिए. जो थोड़ी बहुत history हम यहाँ की देख रहे हैं और जो सुनने में आ रहा है कि जो chase करेगा उसके पास better option है. क्या कितना score एक बहुत ही decent score हो सकता है और जो toss जीतेगा उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से?
2: आई थिंक अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो मुझे लगता है कि वो पहले बैटिंग को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि हम जितना स्कोर कर सकते हैं इट विल बी बेटर कि अगर इनके से ये मैच हम जीतते हैं तो नेक्स्ट मैच के लिए हमारी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हो जाएगी एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका टीम के लिए. और जो देखे ऑन पेपर्स अगर देखे तो श्रीलंका 60 और 40 का रेशियो अभी तक चल रहा है एंड उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है. एंड इट डिपेंड क्योंकि फातिमा एक ऐसी बॉलर है पाकिस्तान के अंदर जो बहुत अच्छी बॉलिंग एंड बैटिंग लाइनअप है उनका. एंड अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हुआ तो उन्होंने 3 विकेट हमारे मेन विकेट लिए थे उस पर, तो वो उनसे बच के रहना बहुत जरूरी है चमारी के लिए एंड उनके अलावा हर्षिता को भी, क्योंकि पिच पे आप टाइम स्पेंड करेंगे एंड आप कितने फोर बाउंड्रीज लगा रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है.
1: So actually there is a news we have. Munish, would you like to tell our listeners about it? So Sri Lanka women have won the toss and have opted to field first. So as we were discussing, Soumitra, that they have opted to field. This is a better choice. Clearly they are in a good form, but I think they have the strategy in place right now.
0: Yes, I mean if you look at the teams, there are many teams which have won the toss and mostly decided to field, which in a way in a T20 match is a bit defensive.
1: Right.
0: But what quite rightly so is a 20-over match. And the best thing is Pakistan's batting is not working. हम देखिए उनका batting चल नहीं रहा है, तो इनका जो अगर run नहीं बना पाएगा and अगर if they take the early wickets which they can, Pakistan will be under pressure. So I think it's a good decision.
3: So we are just trying to be very generous with what's happening with the Pakistan cricket, but that's an area of concern. Vaishali, आपने भी सुना होगा बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं 55 पे all out हो गए उसके बाद उनके coach ने कहा वहाब रियाज ने कि हमारी team तो final जीतने वाली team है. तो अभी जो Pakistan की जो media है वहाँ पे बहुत सारी criticism हो रहा है. तो Pakistan की मीडिया के लिए मजाक करना छोड़ दो, सीरियस गेम के ऊपर पर डे आप फोकस करिए. और खास तौर से तब जब आप सेमी फाइनल खेलने आ रहे हो उस टीम के विरुद्ध जहां पे आपने एक द्विपक्षीय आपने एक श्रृंखला खेली है जिसको श्रीलंका ने अपने ही घर पे पाकिस्तान को हराया था. तो फैक्ट्स पे ज्यादा नजर रखें हम लोग,
2: फैक्ट्स पे ज़्यादा हमें नज़र रखनी चाहिए क्योंकि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. जो हम ऑन पेपर्स देखते हैं, जो ग्राउंड के अंदर होती है चीज़ें, हम उनको कभी भी डिनाई नहीं करते हैं. एंड मेन ये है कि एज अ पाकिस्तान टीम अब 55 पे वो ऑल आउट हुए थे, उनको अपने बैटिंग पे वर्क करना चाहिए एज कम्पेयर टू फील्डिंग बॉलिंग, क्योंकि उनकी बॉलिंग एंड फील्डिंग इज़ बेटर बट बैटिंग उनका लाइनअप काफ़ी डामाडोल है.
3: बॉलिंग से संतुष्ट हो आप उनकी, मतलब
2: उनके पास दो बॉलर्स अच्छे हैं एंड उसपे उसके अलावा अगर बैटिंग और बॉलिंग की अगर बात करें तो दोनों में डिफरेंस देखें तो बैटिंग बिल्कुल ही नहीं है उनके पास. एक फातिमा ही है जो वहाँ पे स्कोर कर रही है.
3: तो गीतांजलि आपको बता दूं क्योंकि आप ही से बाद में बाहर चर्चा हो रही थी कि जो पहला मैच जो 55 रन पे ऑल आउट हो गया उसके बाद उन्होंने एक सेलिब्रेशन भी किया. तो सारी लड़कियां ड्रेसिंग रूम में डांस कर रही थी, वहाब रियाज आए तो उन्होंने सोशल मीडिया में ये डाला, तो वहाब रियाज बड़े स्टाइल से उनको देख रहे थे एंड इट वॉज criticized thoroughly in Pakistan that let's get back to winning ways rather than celebrating and you know making those reels for the social media.
1: Also, you know, I think sometimes when we see cricketers doing such kind of things, normally it is just maybe to leave an impact or irritate the other team, or it's just a psychological game sometimes. But here when we talk about Pakistani team, 55, it's the lowest ever score in Asia Cup history, and I guess they were not able to really portray the way their personality, it was showing that they are going to do wonders there. Surely their bowlers will do something, but batters, they need to perform, Soumitra.
0: See, 55 against India, okay. But what about 119-9 against Thailand? A country known for football and Muay Thai and kickboxing and all this. When you score 119-9, then there's a question.
1: Right.
0: You can do social media reels. Aap sab kuch kar sakte hain, nacha, kana, sab kuch. But Wahab Riaz is a very serious cricketer. And Munish, we would have, would have

0: seen a lot of him. A very, very articulate and quick fast bowler, very incisive fast bowler. He would definitely not like it. Especially if you look at it, we are not being unkind to Pakistan.
1: Yeah, absolutely.
0: Regardless of whether it's cricket or hockey, bad times. Bad times.
1: Absolutely.
0: For Pakistan. And they really have to recover. And if Asia has to be a force in world cricket or world sport, Pakistan need to play very well, regardless whether it's men's or women's. We always enjoyed Pakistan as a good competitive team. But उसको अच्छा खेलना बहुत जरूरी है
2: जी और हमारे यहाँ तो कॉम्पिटिशन आई थिंक मुनीश हमारे कॉलर्स का हमेशा रहता है पहला कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आज के मैच के बारे में नमस्ते जी अपना नाम बताइए जी फारूक तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप आज के मैच के बारे में क्या उम्मीद है आपको जी बिल्कुल सबको ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो ताकि उसकी जो वाइब है एक एनर्जी है वो बहुत ही डिफरेंट होती है एक बार फिर अपने श्रोताओं को बता दें आप हमें कॉल कीजिए नंबर वही है हमारे 2342-1083 और 2342-1085 दिल्ली के बाहर से आप फिर अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं 011 लगाना ना भूलें हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वैशाली माथुर फॉर्मर क्रिकेटर सौमित्र बोस सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं हूँ गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मनीष चौली
1: इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें कुछ खास बातें श्रीलंका की टीम के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि श्रीलंका ने टॉस तो जीत लिया फील्डिंग करने का फैसला किया उसकी खास वजह यह भी है कि वो जो श्रृंखला जिसकी हम बात कर रहे हैं जो श्रीलंका में हुई थी वहाँ पे दो मैचेस जो श्रीलंका ने जीते थे श्रृंखला जीतने के लिए वो चेज़ करके जीते थे एंड ऑफकोर्स पाकिस्तान ऑल्सो चेज्ड एंड दे वन बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अबाउट इमेशा धुलानी क्योंकि एक बहुत ख़ास प्लेयर हैं मैं उनको समझता हूँ कि अगर T20 में अगर कोई भी बैटर सेंचुरी बना दे तो टैलेंट उनके अंदर बहुत होगा और ख़ासतौर से वो जज्बा होगा और उसके साथ इनिंग्स बिल्ड करने का कब तेज़ करना है कब स्लो करना है क्या करना है वो भी उनके अंदर है उनको कैसे देखते हैं आप इमेशा धुलानी को
3: आपने तो सारी बातें पहले ही बता दी उनके बारे में
1: बाद में बताना चाहिए था मैच के
3: क्योंकि आपने सब कुछ बोल दिया ना तो एक्चुअली क्या होता है कि जो बैटर है वो जैसे आपने एक्सप्लेन किया है अभी कि वो पावर हिटिंग शॉट्स भी बहुत अच्छा खेलती हैं उसके साथ साथ उनके अंदर एक जज्बा ये है कि जब वो लाइन जब वो पिच पे आती है तो वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स पे आके रुक जाती हैं जिस तरीके से मैंने उनको अभी तक देखा है और जज किया है
1: ये मैंने नहीं बताया ये आप ही को बताना था व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग दैट यू लाइक अबाउट हर
3: अबाउट हिटिंग
1: वो टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी है
3: बहुत अच्छी है कमाल की हिटिंग है उनकी और वो मुझे काफी इंप्रेसिव भी लगती है
2: और बाकी की चीजें हमारे कॉलर्स हैं क्या स्पेशल है वो बताने वाले हैं और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ नमस्कार जी खेम सिंह जी क्या कहना चाहेंगे जी हमें बहुत खुशी होती है आप हमें हमसे जुड़ते हैं और आप जो श्रोता हैं वो हमारे संबल हैं कहिए और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे एक्सपर्ट से शुक्रिया ओके थैंक यू सो मच जी बहुत बहुत शुक्रिया नाउ सुमित्र बहुत अच्छी बात है हमारे जो श्रोता हैं वो बहुत खाली क्रिकेट इंडिया की वजह से नहीं देखना चाहते हैं वो एक अच्छा क्रिकेटिंग गेम देखना चाहते हैं आपका क्या कहना है
0: मैंने दो मिनट पहले कहा कि एशिया अगर कॉन्टिनेंट हिसाब से अगर देखा जाए पाकिस्तान को स्पोर्ट स्पेशली क्रिकेट और हॉकी में अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है और इन अभी प्रेजेंट में आप देखिए उनका दोनों में अच्छा नहीं चला। इवन

0: मेंस क्रिकेट इफ यू नोटिस मनीष दे आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ शेप, और हॉकी में तो बहुत ही बुरा हाल है। अब देखिए अभी जूनियर एशिया कप है, जिस तरह से इंडिया हार रहे हैं, जिस तरह से सॉरी पाकिस्तान हार रहे हैं, इट इज़ वेरी ज़रूरी है कि क्रिकेट और हॉकी में खास करके पाकिस्तान को उस लेवल पे आना ज़रूरी है जहाँ कि इन एशिया को हम रिप्रेजेंट जब करेंगे एट द वर्ल्ड लेवल, दे लुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंट। वन साइडेड तो है, नो डाउट अबाउट इट, इंडिया क्रिकेट स्ट्रक्चर, BCCI क्रिकेट स्ट्रक्चर, जिस तरह से द डेप्थ ऑफ द वे BCCI रीचेस टू द ग्रास रूट्स, जिस तरह से टैलेंट आता है, वी हैव टूर्नामेंट्स लाइक वुमेन्स IPL एंड सो मेनी अदर थिंग्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और अपॉर्चुनिटीज। आज इंडिया में वुमेन्स के लिए क्रिकेट इज एन अपॉर्चुनिटी, इज अ करियर, पाकिस्तान में नहीं है।
1: दादा, इन 10 मिनट्स वी हैव टू हैंड ओवर द स्टूडियो टू द कमेंटेटर्स एंड वी वांट टू मेक इट अवेयर टू आवर लिसनर्स आल्सो कि हमारे स्टूडियो में क्या चल रहा है। हम लोग चार लोग यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं
0: जी।
1: आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है ये, बट इट्स नॉट द प्लेयर्स हु आर टू बी ब्लेम्ड,
0: नॉट एट ऑल।
1: बट आप अगर आज से 30 साल पहले पाकिस्तान की क्रिकेट PCB को देखें, वॉज दैट गवर्न्ड द सेम वे इट इज गवर्न्ड टुडे?
0: No, I think then it was much better.
1: Yeah.
0: They had better quality players. They had leadership qualities. There was a time when the Pakistan men's cricket team had 6 captains, but there was no infighting.
1: But was it run by PCB? Genuine people who knew what cricket is?
0: Maybe. There are people like Shahryar Khan, don't forget. Mm-hmm. Diplomatic, cricketing background, understood. Mm-hmm. More of sport, less of politics. Without politics, no sport can survive in the subcontinent. But the point is, when sport is top, takes priority over politics, and the best players play, that's why you always had Imran Khan and Wasim Akram and Majid Khan and Zahir Abbas. They were a real force.
1: And it's that's the reason I asked you this question, because unke caliber ka koi player yahan pe abhi dikh nahi raha.
0: Nahin.
1: And that is the area of concern.
0: Absolutely.
2: मुनीश, आपने भी कंसर्न की बात की है, ऑब्वियसली आप हमारे जो श्रोता हैं वो रहते खुश हैं इंडिया के परफॉर्मेंस से, लेकिन वैशाली मैं आपसे जानना चाहती हूँ एज अ क्रिकेटर, इस वक्त जो हमारी इंडियन टीम है उनकी आपको क्या ऐसी स्ट्रेंथ लगती है? ऑब्वियसली फाइनल में है तो बहुत ही अच्छा कुछ किया हमारी टीम ने, इसीलिए हैं, लेकिन कुछ कंसर्न भी है इंडियन टीम्स के साथ, तो आपका उस बारे में क्या कहना है?
3: देखिए, इंडिया की बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन उनके साथ है ना शेफाली वर्मा और स्मृति हैं जो अभी तक बारी संभाल के रखी है उन्होंने, और उसके बाद हमारी हिटर है ऋचा घोष, तो अभी जो बीच का है हमने देखा है हरमनप्रीत कौर का लास्ट कल के मैच में जो उन्होंने खेला है वो काफ़ी बेटर था परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू अदर मैचेस, तो वो थोड़ा हमें वहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर फाइनल जीतने का ख्वाब है तो आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, एंड वो जहाँ पे हम लैक्स कर रहे हैं वहाँ पे वो हमें फिल करना पड़ेगा वो पार्ट वो एरिया
2: जी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज जो भी जीते भारत के लिए, तो आई थिंक अगर पाकिस्तान खेलेगा जैसे सब कह रहे थे तो एक रोमांच भी रहेगा, और मुझे लगता है कि भारत के लिए जीतना आसान हो जाएगा, ये मेरा सोच है।
1: बिल्कुल सही कहा, वो जो कॉलर ने किया था वो बेसिकली कह रहे थे कि वन साइडेड अफेयर है, इट्स अ वन साइडेड लव, तो एकादश जो अभी श्रीलंका और पाकिस्तान की खेलेगी, आइए अपने श्रोताओं को उससे परिचित करवा देते हैं
2: जी। सो श्रीलंकन टीम से क्या आप चाहेंगे मुनीश, आप श्रीलंका टीम के बारे में बताना चाहेंगे?
1: ओके, इमेशा दुलानी और चमरी अथापत्तू कप्तान है, संजना काविंडी, हर्ष थिता, समर विक्रमा, हसीनी परेरा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना जो विकेट कीपर भी हैं, और सुगंधिका कुमारी, चामुंडी प्रबोदा और मिथाली अयोध्या को आज मौका दिया गया है, जिसके बारे में हम अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे
2: जी। मुझे लगा इसी बारे में आपसे टंग ट्विस्टर्स की भी प्रैक्टिस करवा लेती हूँ। और पाकिस्तान की जो टीम है उसमें मुनीबा अली जो विकेट कीपर रहेंगी, शहबाज जुल्फिकार है, गुल फिरोजा है, आयशा जफर है, सदाब शमास, फातिमा सना कैप्टन, और ऐमान फातिमा, उमेहानी, तौबा हसन और नशरा संधू एंड सादिका इकबाल टीम के अंदर रहेंगी आज।
1: मेरे ख्याल से हमारी इस डिस्कशन में जो चार मेंबर टीम है, एक और मेंबर जुड़ रहे हैं और अच्छा। हमारे कॉलर, तो देखते हैं कि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना पूरा परिचय दें और प्लीज बताएं कि क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल कहां से बोल रहे हैं दादा? ओके, स्वागत है आपका। ओके जी जी जी

0: ओके
1: जी, पाकिस्तान की तो कप्तान फातिमा सना है, और क्या जानना चाह रहे थे?
0: ही वाज एक्सपेक्टिंग जी वो हम बता देंगे, लेकिन दादा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज वॉट ही सेड अबाउट द श्रीलंकन कैप्टन चमरिया थपतु. शी इज गॉट 300 इन T20s.
2: Yes, and she's got 9 wickets, or she's probably with the most versatile cricketer they have. Or is tarah se, and we are always talking about Chamari Athapattu. We Harshita ka naam bhi lena chahiye. I think she's the captain in the waiting. Aur 28 saal mein unka already she's a very high caliber batsman. So the fact remains that we were talking about strength or weaknesses of the team. Obviously, a very well-rounded Sri Lankan team. And well-rounded team, pretty high on confidence. Teen match jeet ke aaye, Pakistan ko bilateral series home mein haraye. So we see all the good things are stacked with them. Pakistan have a lot of odds to beat.
1: Right.
2: Main thing is they have to score the runs, and they are batting first. That's the first thing they have to do.
1: But Vishali, अभी जो सारा दारोमदार हो जाता है वो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनको भी कमान संभालनी होगी right from the word go, because जैसा हम जानते हैं कि जो श्रीलंकन टीम है दे आर वेरी गुड बैटर्स, दे आर वर्किंग वेरी वेल टुगेदर. सो क्या स्ट्रैटेजी आपको लगती है पाकिस्तानी टीम की रहने वाली है आज?
3: देखिए, अगर दोनों टीमों के बारे में बात करूँ तो श्रीलंका बैटिंग से मैच जीतती है और पाकिस्तान अपनी बॉलिंग पे से मैच जीतती है, तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है दोनों टीमों में. और अगर अभी सर ने बोला कि मिताली के बारे में, जो श्रीलंका प्लेयर है और 19 इयर्स की है वो, यस एंड उनके अंदर ना एक चीज बहुत अच्छी है कि वो एक तो मीडियम पेसर के साथ साथ ना रो पेस डालती है, उसमें प्लस बाउंस भी होता है. तो उनका जो बॉल है, जो इन्होंने पहले पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी श्रीलंका के साथ वो मिस कर दी थी, लेकिन इस बार वो पाकिस्तान टीम को ना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है उनको खेलने में, और पेस बॉलर्स को खेलने में पाकिस्तान को काफी डिफिकल्टी होती है
1: जी.
3: तो ये एक बेनिफिट और है श्रीलंका टीम के पास, क्योंकि क्योंकि मिताली को खिलाना बहुत जरूरी था इस मैच में, क्योंकि विकेट्स जल्दी से फॉल करना बहुत जरूरी है श्रीलंका टीम को.
0: राइट, सो दैट्स द वन चेंज वी हैव इन द श्रीलंकन 11. दादा, यू वांट टू ऐड, बिकॉज चेतना विमुक्ति हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मिताली अयोध्या.
2: So, right, so they have the bench strength. उसको अगर जैसे बोला कि आपने इनफैक्ट आस्किंग गीतांजलि ने सवाल पूछा था कि इनिशियली विकेट में पेस है कि विकेट ले सकते हैं, मे बी दैट्स द गैम्बल दे हैव टेकन, एंड अ विनिंग साइड कैन टेक द गैम्बल्स. उनके पास इतना बैकअप, इतना सराउंडेड प्लेयर्स है ना, बैकअप तो हो सकता है. इफ ही गेट्स द विकेट्स, ग्रेट. अगर विकेट नहीं मिला फिर भी उनके पास बॉलर्स और भी बॉलर्स है, स्पिनर्स भी हैं, वो विकेट ले सकते हैं. बट यस, ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान बैटिंग ऑल आईज विल बी ऑन फातिमा. फातिमा विकेट्स ली हैं, मगर बैटिंग करना इस मैच में और रन्स बोर्ड में देना बहुत ही जरूरी है, तभी ये वन साइडेड कॉन्टेस्ट नहीं होगी.
1: आपने रन की बात कर ही ली है, तो क्या आपको लगता है एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहने वाला है?
2: एनीथिंग बिटवीन 130 टू 140 विल पुट प्रेशर, विल प्रेशर. एंड डोंट फॉरगेट अगेन आई मेंशन फातिमा हैज गॉट अ ग्रेट स्ट्राइक रेट, 150, फोर्थ बेस्ट इन द वर्ल्ड दिस सीजन. और देखिए वो, दैट हैज टू रिफ्लेक्ट टुडे. टुडे इज द मैच, बिकॉज आई कीप सेइंग दैट विन और गो होम मैच.
1: वंडरफुल.
0: वैशाली, आप बहुत सीरियस लग रही हैं. टेंस गेम है, ठीक है, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में, पर आपका एक्सपेक्टेड स्कोर जिससे थोड़ा सा फाइटिंग हो जाए श्रीलंका के लिए?
3: आई एम एक्सपेक्टिंग 135 प्लस. सो मे बी हो सकता है कि क्योंकि हमारी जो बाकी पाकिस्तान की जो टीम है शायद बेटर कर ले, एंड श्रीलंका टीम शायद उसको और इम्प्रूवमेंट दे दे, मे बी हो सकता है इसमें 135 प्लस. आई एम थिंकिंग
0: दादा, वेरी क्विकली, बिकॉज वी स्टिल हैव अराउंड 2 मिनट्स टू गो बिफोर द कमेंटेटर्स टेक ओवर. आई वांट टू आस्क अबाउट शवाल जुल्फिकार. शी इज बीन रेटेड एज वन ऑफ द हाई स्ट्राइकर. शी मे नॉट बी अमंग्स बिग रन्स, बट योर टेक ऑन इट.
2: या आई मीन देयर इज अ रेपुटेशन एंड देयर इज एन एग्जीक्यूशन. आप देखिए, इंडियंस हैव सो मेनी हाई कैलिबर प्लेयर्स, बट हाई कैलिबर व्हेन यू डोंट डिलीवर ऑन द बिग डे मेक्स नो सेंस मुनीश. सो इट्स अ फैक्ट रिमेंस दैट नो मैटर व्हाट योर क्रेडेंशियल्स आर, व्हाट योर क्रेडिबिलिटी आर, द फैक्ट रिमेंस ऑन अ बिग डे यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स. सो द पॉइंट इज दिस, प्रोबब्ली वी विल हैव मच टू टॉक अबाउट इन द मिडिल सेशन. फर्स्ट, पाकिस्तान नीड द रन्स ऑन द बोर्ड.

0: पास थोड़ा सा समय है यहाँ पे वैशाली, और मैं मुनीबा अली, गुल फिरोज, आयशा जफर, सदफ शमस जो टॉप फाइव में आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? पावर प्ले इम्पैक्ट कुछ होना चाहिए शुरू में, या फिर विकेट सेव करिए और बाद में अटैक कीजिए?
1: नहीं, पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, फातिमा को स्पेशली एंड जो भी ऊपर आएंगे बैटर्स, उन सबको अपना पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड उसके बाद जब बॉलिंग पावर प्ले आएगा वो उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। ट्राई करें जिस गैप, अगर आप गैप में खेलेंगे तो इट विल गो टू द बाउंड्री, एंड अगर नहीं मारोगे आप गैप में तो वो बाउंड्री तक जानी बॉल बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाइट बॉल है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है।
0: राइट देन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुमित्र बोस, वैशाली माथुर जी, गीतांजलि सोनी, और मैं अब आप सभी लोगों से विदा ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कमेंट्री टीम जो है, जो संदेशा है, वो बिल्कुल तैयार है आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। लेकिन चलते चलते बहुत सारे आंकड़ों के बीच में बताना ज़रूरी है कि श्रीलंका है डिफेंडिंग चैम्पियंस एशिया कप की, और सेमीफाइनल का रिकॉर्ड ये बताता है कि जब भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका भिड़े हैं विमेंस क्रिकेट में, तो 3-2 से पाकिस्तान का रिकॉर्ड उनके फेवर में है। क्या होगा संडे को? भारतीय टीम जो इंतज़ार करेगी दुबई में, कौन भिड़ेगा उनसे, वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे एक्सपर्ट्स का भी।
2: फर्स्ट बॉल 20।
3: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका। ये दूसरा सेमीफाइनल है एशिया कप का। मैं आपका कमेंटेटर विनीत गर्ग, मेरे साथी कमेंटेटर एस किशोर, और वयोवृद्ध और सीजनड स्कोरर यशवंत चार्ड और जतिन सूद, हमारे युवा स्टेटिस्टिशियन, उन सब की ओर से भी आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आप जानते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ये दूसरा सेमीफाइनल मैच एशिया कप का खेला जा रहा है। पहला समाचार आप सुन ही चुके हैं कि श्रीलंकाई टीम में दो परिवर्तन हैं, जबकि इस समय दोनों ही देश के राष्ट्रीय गीत और वो बजाए जा रहे हैं, और कैसा ये भावुक क्षण होता है, आपका सीना गर्व से फूल जाता है और आपको एक भावुक बना देता है कि आप अपने देश के लिए कुछ कर गुजरें, तो ये दृश्य इस समय उभर रहे हैं। लेकिन जहां तक टीमों का प्रश्न है, मेरी निगाह में जो ये टीम सामने मुझे नज़र आ रही है, पाकिस्तानी टीम में कोई परिवर्तन नहीं है, और श्रीलंकाई टीम में जैसा कि मैंने बताया, वो महिलाओं के मलिंगा कहलाने वाली वो मिथाली अयोध्या भंडारा टीम में वापस बुलाई गई हैं, और चेतना विमुक्ति आज टीम में नहीं है, और उधर हसिनी परेरा टीम में नज़र आ रही हैं, और विश्मी गुणरत्ने टीम में नहीं आज शामिल की गई हैं। श्रीलंका की टीम इस समय विजय रथ पे सवार है, अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को छोड़कर कभी भी टॉस जीतने के बाद किसी ने बैटिंग नहीं ली, वहीं पाकिस्तान ने हर मैच में बैटिंग ली, यानी कि तीनों मैच में अब तक उन्होंने बैटिंग ली है, एकमात्र टीम है, और ये एकमात्र तीन अवसर हैं जबकि ये टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बैटिंग ली हो, हालांकि सब ने पहले बॉलिंग चुनी है, तो आज कोई इससे अलग कोई बात नहीं है, और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। ये स्थिति यहाँ पर है, ये जोरदार कांटे का मुकाबला होगा, और सबसे बड़ी दिलचस्पी ये है कि भारत के खिलाफ कौन सी टीम पहुंचेगी, इसलिए बहुत उत्सुकता इस मैच को लेकर है, कौन मुकाबला करेगा भारत से, श्रीलंका या पाकिस्तान। हालिया रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, किशोर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पिछले 5 मैचों में 3 बार श्रीलंका जीती है, और दोनों के बीच में बायलैटरल द्विपक्षीय जो मुकाबला हुआ था उसमें भी श्रीलंका विजयी रहा था। और स्वागत करता हूँ एस किशोर का, मेरे अंग्रेजी कॉमेंटेटर।
5: Thank you, Vineet. Good evening to you. Good evening to all our listeners, wherever you are tuned into this live and exclusive broadcast on Akashwani. And as Vineet just said, this match, the second semi-final, would decide as to which of these two teams, whether the reigning champion Sri Lanka or would it be Pakistan, who hasn't won a title for a long, long time, who would be contesting with India on the coming Sunday, the big day of the final. But all in all, the other point that Vineet made was also about how Sri Lanka, as has been their practice, have done the insertion job, winning the toss and inviting Pakistan to bat. And Pakistan, on the contrary, have opted to bat whenever they won the toss in this edition of the Asia Cup, Vineet.
4: तो ये सूरत हाल है, आप सभी जानते हैं, अब तक इस टूर्नामेंट में लगभग मिडिल पिच ये नज़र आ रही है, एक ही मैच, एक ही मैदान पर एक के बाद एक, कोई रेस्ट डे बीच में नहीं है, हर रोजाना मैच होते रहे हैं। काबिले तारीफ बात है कि ग्राउंड्समैन ने पिचों को सही समय पर तैयार किया, और एक ही मैदान पर जब ये सारे मैचेस हुए हैं, आप ये देखिए कि बात पिच की नहीं है, स्क्वायर के ऊपर भी जब खिलाड़ियों के जूते हैं, दौड़ते हैं आप होते हैं, तो उनका रख रखाव इतना आसान नहीं हो जाता। फिर दूसरी बात यह है, इससे पिच और स्लो होती चली जाती है, ग्रिप ज़्यादा करती है, और बैट्समैन की दुश्वारी बढ़ती जाती है। किशोर,
5: यस, यू राइटली पुट इट, द क्यूरेटर्स रियली नीड टू बी यू नो appreciated for the efforts they have put in, not only as Vineet mentioned about the square, the pitch and the square, but the outfield as well. They have the stadium, the Dubai International Cricket Stadium, state of the art technology over there, and it's hosted many international tournaments and this Asia Cup once again. And the other thing I'm sure Vineet you would also discuss about is the floodlights at the stadium. They call it the Ring of Fire. It's almost on the periphery of the roof that the floodlights are installed here in the stadium, which is very different from the other stadia you would see around the world.
4: और इसी की वजह से कई बार ऊंचे कैच पकड़ने में यहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि पूरी गोलाई में छोटी छोटी छोटी लाइट्स लगी हैं, लाइट टावर्स नहीं हैं। चार जो लाइट टावर्स होते हैं हर मैदान पर, वो जो एक ट्रेडिशन बन गई है, जो परंपरा बन गई है, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ छोटी छोटी पूरी पेरिफेरी में पूरे स्टेडियम की छत पर ऊपर की तरफ लाइट लगी हैं। आज के मैच के जो अंपायर्स हैं उसमें भारतीय वृंदा राठी हैं। आप जानते हैं कि ICC भी और एशिया कप में भी सारी महिलाओं की टीम होती है, जहाँ तक मैच ऑफिशियल्स का सवाल है। तो शातिरा जाकिर बांग्लादेश की और भारत की वृंदा राठी मैदान पर हैं। बांग्लादेश की ही रोकेया सुल्ताना वह TV अंपायर हैं, और भारत की GS लक्ष्मी आज के इस मैच की मैच रेफरी हैं। उधर रेबाब एहसान जो कि लोकल अंपायर हैं, इस बीच दोनों ओपनिंग बैट्समैन मुनीबा अली पाकिस्तान की 101 मैचेस 1891 रन और स्ट्राइक रेट 100 का है। देखिए ये 100 मैच खेल चुकी हैं, चार अर्धशतक हैं, दो शतक हैं, तो अच्छा बढ़िया है, स्ट्राइक रेट 102 के आसपास है। और उनका साथ देने के लिए आए हैं शाहवाल जुल्फिकार, आई हैं 16 मैच, अभी युवा हैं और शुरुआती है उनके कैरियर की, 327 रन, एक अर्धशतक उनका है, टच में नज़र आ रही हैं। हालांकि भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी, लेकिन उधर ये जो एक अजूबा है, ये खिलाड़ी जो है, ये सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, मिथाली अयोध्या बंडारा। ये मलिंगा के अंदाज में स्लिंगर हैं, हाथ को बहुत पीछे से लाकर बॉलिंग करती हैं, और इनके रिलीज पॉइंट्स देखने लायक होते हैं। जो खिलाड़ी मुझे नज़र आ रहे हैं, फाइन लेग दायरे के अंदर है, थर्ड मैन भी दायरे के अंदर नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान मुनीबा क्योंकि लेफ्ट हैंडर हैं, तो बाएं हाथ के बैटर के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक भरी हुई ऑफ साइड की फील्ड है। स्मरण रहे कि केवल दो खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, पहले थर्ड मैन और फाइन लेग ही रख दिया जाता था, लेकिन अब पिच इतनी धीमी हो गई है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट भी फील्डर्स नज़र आने लगे हैं, क्योंकि पावर प्ले में 6 ओवर्स में आपको केवल दो खिलाड़ी ही आप बाहर रख सकते हैं। ये अच्छा प्रयोग है, और मिथाली को वापस बुलाया गया है, भारत की पूर्व कप्तान की नाम राशि हैं, और केवल पहले मैच में खेली थी, उसके बाद से टीम में नहीं रही हैं, और विमुक्ति को खिलाया गया है। विमुक्ति ने हालांकि पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, लेकिन एक अच्छा ये निर्णय है। पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, श्रीलंका के पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं, तो क्या उनके पास पर्याप्त ऑफ स्पिनर है, ये चर्चा जारी रहेगी किशोर के साथ। इस बीच मुनीबा तैयार, ये रही दूसरे सेमीफाइनल की पहली गेंद, ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर, और पीछे विकेट कीपर की ओर, कौशनी की ओर ये गेंद चली गई, उन्होंने उसको गैदर कर लिया। इस बार एक नई चीज़ जो देखने को मिल रही है कि पॉपिंग क्रीज के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर 2 लाइनें आपको नज़र आएंगी, उसमें एक प्रोटेक्टेड एरिया जो डेंजर एरिया होता है, उस पर लाल निशान की लकीर है, और उसके बाद थोड़ी वाइड पोजीशन पे पॉपिंग क्रीज पे नीले रंग की लाइनें हैं। ये वाइड के लिए जो ICC ने नियमों में संशोधन किया है, उसके लिए इस्तेमाल की जाएंगी, बात चर्चा जारी रहेगी। इस बार कटकर अंदर की तरफ आई, मिथाली कोई बहुत ज़्यादा रफ्तार का प्रयोग नहीं कर रही हैं, लेकिन शुरू से ही लेंथ अच्छी पकड़ ली है, ऑफ स्टंप की ज़रा से बाहर कर कट होकर बाएँ हाथ के बैटर के लिए ऑफ कटर बनकर ये गेंद अंदर की तरफ आई थी। चमरिया आथा पट्टू और जो कि कप्तान है, दिग्गज खिलाड़ी हैं, सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और टहू जैसी बड़ी खिलाड़ी रिटायर हो चुकी हैं महिला क्रिकेट में, ये चली जाएंगी तो एक वैक्यूम आएगा। इस बीच ये गेंद और बहुत ही राउंड आर्म एक्शन से ये गेंद की, और इस पे पहले रन बन जाएंगे। गेंद थोड़ी डीप पोजिशन पर जाए और इससे पहले उठाए जाए, दोनों खिलाड़ियों ने छोर बदला।

0: अब जुल्फिकार पहली बार सामना करेंगी इस मैच में। चश्मा पहन के खेलती हैं, ये विकेट कीपर भी हैं मुनीबा, और अब नॉन स्टैकिंग एंड पर है पाकिस्तान टॉस हारने के बाद एक रन बगैर नुकसान कर। तो क्या खिलाड़ी है अत्ता पट्टू, मुझे ताज्जुब होता है कि भारतीय विमेंस पीएल में इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, केवल एक सीज़न वो खेली लेकिन उसके बाद कोई है ही नहीं जो उनको ऑक्शन में उनके नाम पर बोली लगाए, जबकि श्रीलंका की ओर से बाकी लीग क्रिकेट में बिग बैश हो, कैरेबियन में या कहीं पर भी, उसमें ये बदस्तूर खेलती रही हैं और श्रीलंका की पहली खिलाड़ी हैं जो लीग क्रिकेट में शामिल की गई हैं। शवाल जुल्फिकार तैयार, उधर वो स्लिंग बॉलर मिथाली तैयार, क्रीज के बीचों बीच से बिल्कुल स्टंप्स के करीब आई, आगे की ओर झुक गए बैटर और उसको मोड़ा, कलाइयों के सारे प्लेस कर दिया, गेंद ऑन साइड में गई है, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग के बीच के स्थान पर बाउंड्री लाइन से कोई 20 गज अंदर उसको फील्ड किया गया। हरे रंग की पोशाक पाकिस्तान की और नीले पीले रंग की पोशाकें पहने हैं श्रीलंका के खिलाड़ी, बाल झूलते हुए मिथाली के बहुत पूरी झुक जाती हैं, बैंड करती हैं और राउंड आर्म एक्शन उनका हो जाता है, अंपायर के सामने से आता है उनका हाथ, कई बार बहुत परेशानी होती है सामना कर रहे बैटर को उनका बॉलिंग एक्शन देखने में। इस बार ये लगभग लकीर के ऊपर है, क्या फैसला करेंगे वो, वाइड नीली लकीर जो वाइड गेंद के इशारे के लिए बनाई गई है संकेतात्मक, क्या उसके ऊपर से ये गई थी, क्या अंपायर उसके वाइड का इशारा देंगी, वहां पर भारतीय अंपायर वहां पर मौजूद है वरिंदा राठी, लेकिन कोई इशारा उनका वाइड का नहीं आया, बाल बाल बची हैं वहां पर मिताली, बिल्कुल वो निशान जो है, वो जो लकीर जो है किशोर, उसके ऊपर से निकल गई, अच्छा निर्णय कहना होगा। इस बीच ये अगली गेंद बिल्कुल स्टंप्स के पास आ जाती हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रही हैं और ये भी एक कला है और निगाह रखनी होगी कहीं ऐसा ना हो कि अंपायर से बहुत जल्दी वार्निंग मिल जाए कि वो पिच के ऊपर दौड़ रही हैं, क्योंकि काफ़ी नज़दीक आ रही हैं, पहला ओवर समाप्त हो गया। आइए एस किशोर।
1: थैंक यू विनीत, एंड एज यू राइटली सेड, यू पॉइंटेड आउट दोस टू न्यू डायमेंशंस व्हिच द आईसीसी एंड द एशियन क्रिकेट काउंसिल हैज ब्रॉट इन, वन ऑफ कोर्स इज द डेंजर एरिया, दोज आर दोस रेड मार्क्स इंडिकेटिंग दैट इट इज इंडीड dangerous to tread onto that, and of course the wide lines of the blue lines which indicate the wide deliveries, and the last time very marginal clays as far as that wide ball was concerned, and she got away with it. Ayodhya, who has, as Vinit mentioned, that slinging action of hers, very much like Malinga, Lasith Malinga, who really put Sri Lanka on the world map with not only with his wicket taking abilities but with his very unique action as well. It's going to be Sugandhika who will be bowling the second over, and Muniba and Zulfikar both on a run apiece. Pakistan 2 without loss. Early days here. Sri Lanka winning the toss and opting to bowl. The left arm spinner, left arm round the wicket, and this time everything correct about that shot. Slight misfield enabling a quick single. Good understanding between both Muniba and Zulfikar, and the Pakistan score 3 without loss. The fielder seems to have hurt herself. Sometimes it does happen when you're not able to field it cleanly. And of course, when it really hits the fingers, the tip of the fingers, it can be quite painful. But no damage done, even though she's still writhing in pain. And as far as Pakistan are concerned, they will like to put up a good show here. Kavisha was the fielder there, who seems to have hurt herself and gave a single left arm around the wicket to Muniba. Muniba, the bespectacled wicketkeeper batter for Pakistan, and she is someone who's got tons and tons of experience. And look at the field there, it's a predominantly offside field for the left-handers. Four or five in the ring, starting from the fielder that shot third backward point. There's a man forward of point more towards cover, extra cover and mid-off. That's the field for the left-arm spinner Sugandhika bowling to Muniba. Muniba having a look around the field. She knows that open space is on the onside to be exploited. Would she be able to do that? The line is the leg stump line, middle and leg stump. But Muniba not able to put it away. Plays it straight to the fielder at short backward square leg. Not for any runs. And Pakistan stay on 3 without loss. This is the second semi-final of the Women's Asia Cup cricket match, cricket cup in fact, which is being played at the Dubai International Stadium. And as far as Pakistan's are concerned, it's been

0: a tournament which their batters have not really come to the fore. In the meanwhile, we see Kavisha leaving the field. She had injured herself trying to stop that one. Just got the feeling it hit her on the thumb rather than the tip of the finger, as one thought earlier. But yet another misfield. Sri Lanka and fielders have really been good in this tournament, but and this time it was very good to see. It was Zulfikar who came in the way of the throw and prevented. Doesn't matter if it hits you, as long as you can protect your wicket, Vineet, as that one driven through the covers. And look at that slight hesitation, but then does well. It wasn't quite intentional. She came in the way of the ball, and fortunately for her, that helped her to protect that throw, which was almost going at the stumps. Here is Sugandhika, left arm around the wicket from the wide of the crease, and once again this is drifting down the leg side, helped along straight to the fielder at square leg, and Pakistan stay on four without loss. As I was saying, Pakistan, their batters have not come to the fore right through the tournament. They were bowled out for a very low score against India. They just about managed to win their other two matches against Thailand and Hong Kong, China. This one has been lofted. There's no one there. Down in the deep, there was a fielder coming in from long on, and that enabling a single there. So runs coming by ones until now. There have not been any big hits, no boundaries thus far. Pakistan, five without loss. 1.5 over sent down thus far. And Muniba, she is quite capable of the big hits, the left-hander, the very experienced southpaw from Pakistan. This time to the pitch of that one, and straight down the throat of the fielder. That's the first wicket down for Pakistan. Muniba, call it the commentator's curse. We were talking about her experience, her stroke play, and there she is. And that's the end of Muniba. 2 overs gone by, and Pakistan are 5 for 1.
1: ये पीछे इतनी धीमी है, गेंद ग्रिप होकर आती है, रुक कर आती है, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद हवा में उठी, और एक जिसको आप कह सकते हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पे मुनीबा अपने बैट को देख रही हैं, पिच के ऊपर एक निगाह डाली, गहरा घात वहां पर पाकिस्तान को। मुनीबा इन फॉर्म बैटर थी और काफ़ी जान और फॉर्म में थी। नीलाक्षी ने उनका कैच पकड़ा। सुगंधिका, ज़्यादातर टीमें स्पिन बॉलर को एक एंड से नई गेंद से लगा रही हैं और वो वहीं से वो बॉलिंग के। सुगंधिका भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और उनको सफलता मिली एक्स्ट्रा कवर पे। एक आसान सा कैच, सीधे फील्डर के पास जाता हुआ उठाकर खेला, ऊंचा, लगभग फील्डर के सर के आसपास आता हुआ वो कैच था, उसको उन्होंने कैच में तब्दील कर लिया और सुरक्षित उसको पकड़ लिया और पहली क्षति पाकिस्तान को दी। एक और चिंता की बात है, जैसा कि किशोर आप बता रहे थे कि फील्डिंग करते समय कविशा के हाथ में चोट लगी, वो फील्ड कर रही थी ऑफ साइड में और विकेट से कोई 20 गज के फासले पे वो फील्ड कर रही थी। वो प्रमुख बॉलर हैं श्रीलंका की और उनके बॉलिंग आर्म में उनको लगी है, दाएं हाथ में उनको चोट लगी है। 20 विकेट 2026 में ले चुकी हैं वो। इस बीच लोअर ट्रेजिक्टी के राउंड आर्म से मिताली के नए ओवर की पहली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट वो बॉलिंग कर रही हैं, स्टम्प्स में की थी। और शहवाल अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं, जबकि ये शॉट खेला था, एक तो मिडल नहीं कर पाई थी, मोटे बाहरी सिरे से लगकर ये आगे की तरफ गई थी, मिडल नहीं कर पाई थी, गेंद हवा में ऊपर उठी और एक आसान सा कैच सुरक्षित कर दिखाया, वहाँ पे फील्डर ने पकड़ लिया और मुनीबा से बहुत उम्मीदें थी, बैकफुट पे चली गई है पाकिस्तान। शहवाल को ये गेंद लेग स्टंप के बाहर भटकती हुई, ये गेंद इस बार वहाँ पर मिथाली की, और शहवाल उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाई, शायद वो तैयार नहीं थी इस तरीके की बाहर की ओर जाती हुई गेंद के लिए, और अब खफा हैं अपने आप से, सर हिला रही हैं कि उस गेंद का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। वो जो लाल निशान हैं प्रोटेक्शन के, डेंजर एरिया को दिखाते हुए दोनों तरफ के, वो लेग साइड की वाइड के लिए इशारे हैं, उस लाइन से अगर बाहर होगी तो वाइड दी जाएगी, बॉलर्स के लिए काफी फायदा हुआ है। इस बीच ये अगली गेंद और इसको घुमा दिया है लॉन्ग ऑन की दाईं तरफ से, पहला चौका पारी का, बेहतरीन स्ट्रोक खेला है वहां पर। और शुरू से ही इस टूर्नामेंट में शहवाल अच्छे फॉर्म में नजर आ रही हैं। हांगकांग के खिलाफ 47 रन उन्होंने बनाए थे, जस्ट बैक ऑफ द लेंथ थी, अपने को संतुलित किया, बॉडी वेट खूबसूरती के साथ बैलेंस किया, पीछे से बैट को लाई, गेंद की लाइन में थ्रू द लाइन खेलती हुई, हाफ वॉली नहीं थी वो गेंद, और उसको प्लेस किया और दाई तरफ लॉन्ग ऑन के और बाई तरफ मिड विकेट के बीच की स्थिति से दूर सामने की ओर साइड स्क्रीन की तरफ वो गेंद चली गई 4 रन के लिए। मिताली की गेंद धीमी

0: लंबा ऊंचा स्ट्रोक और इसके साथ ही 6 रन का इशारा अंपायर द्वारा और अब तक 10 रन बन चुके हैं। ये गेंद ऐसा लगा उस पर नियंत्रण और इसीलिए शायद मिथाली को बीच में ड्रॉप भी किया गया था। फुल टॉस पे लिया, एक कदम नीचे झुकाया, घुटने मोड़े और गेंद को खेल दिया जो उसको आप कह सकते हैं लॉन्ग लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो ये स्थिति है मिथाली का मेहरा ओवर। ये नियंत्रण रखना, ये मलिंगा ही हैं जो नियंत्रण रख पाते थे। और जहां तक इनका सवाल है, अभी इस ओवर में बहुत ज़्यादा काबू नहीं रख पा रही हैं अपनी गेंदों पर। अंतिम गेंद इस ओवर की और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ऑफ वॉले, ओवर द टॉप खेल दिया और इस बार ऑन ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रन। बहुत ही महंगा ओवर समाप्त हुआ अयोध्या का।
1: Yes, it was an expensive over before this over. Runs were just coming by way of singles, but Ayodhya Mithali gave away 14 runs in that over, a 6 and 2 boundaries in that over, and just the impetus that the Pakistan innings required, especially after the fall of the experienced Muniba Ali. And talking about women's T20 Asia Cup, the winners, if you go back down in time, you can see, remember, the Women's Asia Cup sometimes have been played in the 50-over format and sometimes in the T20 format. In 12-13, when the first ever Asia Cup was held in the T20 format, it was India who won the title. That was in China. 16-17, again, the Indian women triumphed in Thailand. And 2018 was the only time Bangladesh lifted the Asia Cup title in the T20 format. Here is the first ball of a new over from Sugandhika, and this has been driven towards the long on fielder. A single easily had, and that would take Zulfikar Shahwal to Firoza, opens their account, Gul Firoza, and Shahwal is on 17, Pakistan at 20-1. To get back to the records as far as the Women's Asia Cup in T20 format, 2023. As this one is on the middle and leg stump, not quite able to execute the sweep like she would have liked, Zulfikar Shahwal. And that would also mean, talking about that last over, it was Ayodhya who was really taken to the cleaners there. Some superb stroke play, very, very decisive footwork and stroke play there. That was from Zulfikar Shahwal. Is this one from Sugandhika to Gul Firoza? Fetches a single. She was thinking in terms of a second run but decides against it. And as I was saying, 22-23 in Bangladesh, Asia Cup was held where India emerged triumphant. And in the last edition in Sri Lanka, it was the girls from the Emerald Isles who put it across India to lift the title. So Sri Lanka, the reigning champions here, playing the second semi-final of the 2026 edition of the Women's Asia Cup. The next ball, once again, the line, middle and leg stump. Once again, easy pickings there for Zulfikar Shahwal. She gets a single. She's on 18. Gul Firoza is on 2. And Pakistan put into bat by the Sri Lankan captain, Chamara Attapattu, are 23-1. The next ball from Sugandhika. The line this time around the off stump. She's been bowling the middle and leg stump line. This time to the right-handed Firoza. She employs the off stump line and well dug out there. Here is for the final time. Tossing that one up, and this time not where she intended. She was trying to go through the covers, and the ball ends up at short third man. No damage done. No runs. End of that over. And Pakistan at 23-1.
0: थैंक यू किशोर। ताजुब है, आपने बहुत कम देखा होगा कि पावर प्ले के ओवर्स में एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन हो। आमतौर पर आप देखेंगे बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर होता है, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट भी आजकल होने लगा है, नहीं तो पहले तो थर्ड मैन ऑफ फाइन लेग होता था। तो ये पिच की तासीर जैसे बदलती चली जा रही है, उसकी वजह से वो कई बार खिलाड़ियों को देखकर कैसा बैटर सामने है, लेकिन दो फील्डर बाहर रखे जा सकते हैं और वो ठीक सामने दूर साइड स्क्रीन के पास लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन दोनों ओर। जबकि अत्तापत्तु, ये बॉलिंग चेंज तो होना ही था। मिथाली अयोध्या ठीक फॉर्म पे नहीं नज़र आ रही थी और पिछले ओवर में महंगी साबित हुई। गेंदों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी और चमरी अत्तापत्तु कप्तान है श्रीलंका की, वो अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे। ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और ये गेंद

0: और टप्पा खाने के बाद और लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, ऑफ स्पिन गेंद थी। शहवाल जबरदस्त फॉर्म में दिख रही हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रही हैं, देख रही हैं कि ये बॉलिंग जो है अतपत्तू की इतनी आसान नहीं है खेलना, वो बैटिंग अच्छी कर रही हैं। लेकिन देखें नजदीक की कोई खिलाड़ी नजर अब नहीं आ रहा है। अतपत्तू की गेंद और लगातार गेंद टर्न होने के बाद ये ऑर्थोडॉक्स फिंगर स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं, और टप्पा खाने के बाद दाएं हाथ के बैटर के लिए अंदर की तरफ शहवाल के लिए गेंद आती है जो उनके लेग स्टंप के बाहर से निकल रही है। और शहवाल दो बार प्रयास कर चुकी हैं उसको फाइन लेग और लॉन्ग लेग की दिशा में कहीं ऊपर खेल दें, लेकिन दोनों बार चूकी हैं और इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेल ही तो दिया। गेंद दूर जा रही है मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। ओह, शहवाल तो लगता है अपने ही कंधे पर ले जाएंगे पाकिस्तान को आज, क्योंकि ये इसलिए कि 15 गेंदों पे 24 रन बनाकर खेल रही हैं। लूप बनाती हुई ये गेंद थी, फ्लाइट दिया था अच्छा खासा, वो तैयार थी घुटने मोड़े स्वीप के अंदाज में, लेकिन सीधा ऊंचा लंबा स्ट्रोक सामने की ओर खेला और मिड विकेट बाउंड्री के काफ़ी ज़्यादा बाहर जाकर गेंद गिरी। बाउंड्री काफ़ी छोटी होती है विमेंस क्रिकेट में, 30 गज का नहीं 25 गज का दायरा होता है, और इस बार तेजी के साथ खेलने की कोशिश की, उंगली उठी, दूसरा विकेट गिर गया पाकिस्तान का। शहवाल जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही थी, अचानक वो जो एक स्ट्रेटजी से बॉलिंग कर रही थी अतपत्तू, उनके लेग स्टंप के बाहर गेंद घूम कर जा रही थी, ऑफ स्पिन गेंद को जब पलट कर पीछे की ओर फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास किया, महीन सा इनसाइड एज लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। कौशिनी नत्यांगना बहुत ही कुशल और दक्ष कीपर हैं और उन्होंने उसको कैच कर लिया, पहले ही से पूर्व अनुमान लगा के शफल कर रही थी, लेग स्टंप की तरफ सरकती हुई चली गई थी विकेट कीपर, और एक बेहतरीन पूर्व अनुमान के साथ, एंटीसिपेशन के साथ वो कैच कर लिया। और कप्तान की भाव भंगिमा अतपत्तू की इस समय देखती ही बनती है।
1: Yes, indeed, you would agree with me, that's a very frustrating on an irritating manner for a batter to get out, going, getting caught down the leg side, going to play that flick very fine, but unfortunately going to straight to the wicketkeeper, who made no mistake whatsoever. So especially Zulfikar, she's been batting so well, and she'll be feeling really down in the dumps having thrown it all away.
0: ज़्यादा सिक्सर्स इस टूर्नामेंट में लगे नहीं, और पाकिस्तान की ओर से तो केवल ये दूसरा ही मात्र था जो शहवाल ने लगाया, इससे पहले एक सिक्सर था। और हाँ, ये टूर्नामेंट ही ऐसा रहा है, इसमें पहली बारी की बैटिंग में औसत अगर आप देखें तो 120 रन से ज़्यादा ने औसतन बने हैं, जो कि बहुत आज के जो आधुनिक क्रिकेट है उसके हिसाब से काफ़ी कम कहे जाने चाहिए। गेंद शॉर्ट थी, फिर वही झांसा, फिर वही माया जाल जिसमें फंस कर गई हैं शहवाल और आयशा खेलने के लिए आई हैं। फिरोजा और आयशा दोनों ओपनिंग बैटर्स हैं, लेकिन क्योंकि अच्छे फॉर्म में इस समय चल रही थी शहवाल, इस टूर्नामेंट में लगातार इन दोनों को रोककर नीचे भेजा गया, शहवाल से ओपन शुरुआत कराई गई। लेकिन जिस तरह से इस गेंद को पलट कर वही गलती करने जा रही थी जो शहवाल ने की थी, घूम कर गेंद लेग स्टंप के बाहर अच्छा बाउंस लेकर अतपत्तू की जा रही हैं, और उसको लेग साइड में आप जब डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक सिरा लगकर विकेट कीपर पे, जिस तरह से दूसरा विकेट गिरा था श्रीलंका का, उस तरह से आप आउट हो सकते हैं। तो ये स्थिति है, ये ओवर सफल ओवर समाप्त हुआ कप्तान अतपत्तू का, दो खिलाड़ी खो चुका है पाकिस्तान।
1: Yes, Pakistan losing wicket. Sri Lanka striking when it was required. First, of course, they had an early wicket, and then in that last over, the skipper replacing Mithali Ayodhya and immediately reaping rewards with the wicket of the well-set Zulfikar. And that wicket, I'm sure, would dent Pakistan early. Pakistan's top order has been a problem right through this tournament. Here is Sugandhika. Once again, keeping it within the stumps, left arm round the wicket, and very accurate is Sugandhika. She was the one who picked up the first wicket, and then in that last over, the well-set Zulfikar trying to go for a feint, tickle down the leg side, caught by the wicketkeeper. This time, the ball of a fuller length driven on the offside, not for any runs. The Sri Lankan fielding right through this tournament has been good. We spoke about it earlier as well. The floodlights, or rather the round of fire, as it is called, as far as the Dubai International Stadium is concerned, with the floodlights. They don't have towers. The floodlights are around the periphery of the roof of the stadium. not very easy for fielders to judge.

0: matches as the next ball has been played defensively, not for any runs, and Pakistan stay on 30 for 2. The sixth over in progress, 5.3 overs to be precise. And what has been also been very surprising in this tournament as far as the Sri Lankan captain Chamari Attapattu is concerned, she's been more successful with the ball than with the bat. This one is lofted over the infield on the offside safely. Look at the skipper really showing the way. Chamari Attapattu belying her age, diving around, stopping that one. And that would mean that Pakistan are not able to get anything more than a single. In fact, the very first ball that Ayesha faced from Chamari Attapattu, there was an opportunity for the wicketkeeper to make it 2-in-2 balls, but wasn't the easiest of catches, and that was a catch which went a-begging. As Sugandhika, who has been bowling his into her third over, 1 for 10 after that single on the onside. She's bowling her third over on the trot, which isn't very common when we come to T20 cricket. We often see bowlers getting a spell of two overs, a maximum three, and that is what Sugandhika is into her third over. She's kept things tight from one end. Here is she, once again, left arm, using the width of the crease, and this time, once again, we've seen more often batters trying to go through the offside, not able to. The slowness of the pitch defeating the intention, and that would mean that the score stays put. A dot ball to end that over, and Pakistan being put into bat a 33 for 2. Really, things not really going the way of Pakistan. Sri Lankan bowlers exerting the pressure, except for that one over Vinith when Mithali went for 14 runs. The bowlers have been able to exercise. Not only have been they been able to restrict the flow of runs, they have picked up wickets at regular intervals. So the first power play of 6 overs, one must say, has gone the way of Sri Lanka, with Pakistan on 33 for 2.
1: तो ये स्थिति है. पाकिस्तान हांगकांग के खिलाफ 28 पावर प्ले में दो खिलाड़ी खोए थे, भारत के खिलाफ 29, 3 कुल मिला के 55 पे आउट हो गए थे, और थाईलैंड के खिलाफ 32 रन बनाए थे पावर प्ले के 6 ओवर में, और 3 खिलाड़ी खोए, और आज 33 रन बनाए हैं. तो बेस्ट पावर प्ले पाकिस्तान का, लेकिन दो खिलाड़ी खोए. लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल करती हैं आयशा, खेल दिया गेंद को, गेंद एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मिलेंगे. अच्छी फॉर्म में नजर आ रही हैं ये भी, फिरोजा और आयशा दोनों ओपनिंग बैटर्स हैं, और उनको इस नई गेंद से खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी. नई गेंद का फ़ायदा ये है कि एक ज़्यादा बाउंस करती है, और उसमें आपको स्ट्रोक ज़्यादा आसानी से खेलने को मिलते हैं. पिच कुछ नीची ज़रूर रह रही है, लेकिन उसको अच्छी तरह संभाल रही हैं दोनों बैटर्स. धन्यवाद जतिन. और ये स्थिति है यहाँ पर, कविशा अब तक नहीं लौटी हैं. इस बीच ये गेंद, अच्छी गेंद है अत्तपट्टु, बहुत अच्छी गेंदें कर रही हैं, लगातार अपनी लेंथ और लाइन में परिवर्तन कर रही हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से लाइन बदल दी, और फिर गेंद अच्छी लेंथ पर, ये गेंद थी गुड लेंथ से थोड़ा आगे टिप्पा खा के कटकर अंदर की तरफ आ रही थी दाएं हाथ की बैटर आयशा के लिए. और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लैश करने की कोशिश की, उंगली उठी, ओ पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी आउट. ऐसा चक्रव्यूह बनाती हैं अत्तपट्टु कि उसमें फंस कर रह जाता है खिलाड़ी. लेग स्टंप के बाहर का निशाना साधा हुआ था, अचानक ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे करने लगी, उस पर स्लैश किया, आड़े बैट से खेलने की कोशिश की, बॉटम एज लगी, और विकेट कीपर कौशनी जो एक गफलत कर चुकी हैं जब उसको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, इस बार चौकस और चौकन्नी थी, और उंगली उठी वहां पर अंपायर की. उनको कोई संकोच नहीं हुआ, कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, और शातिरा जाकिर जो बांग्लादेश की अंपायर हैं उनकी उंगली उठी, और इस तरह से पाकिस्तान ने 37 के स्कोर पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना तीसरा विकेट खो दिया है. तो ये स्थिति है यहाँ पर. ये टूर्नामेंट भी इसी तरह का, इसी तासीर का रहा है, इसमें आप ये नहीं कह सकते, जिसमें क्रिकेट की भाषा में जिसको कहा जाता है यू नेवर फील यू आर इन, कभी भी आपसे गलती हो सकती है. और अत्तपट्टु का ये 16 साल का अनुभव है जिसका वो इस्तेमाल कर रही हैं. 2009 और 10 में इन्होंने डेब्यू किया था वाइट बॉल क्रिकेट में, तब से लगातार श्रीलंका के लिए खेल रही हैं. दिग्गज खिलाड़ी हैं विश्व क्रिकेट की, है ना केवल श्रीलंका की, और इनकी बुद्धि जो है चमत्कारी है. उन्होंने पहले लेग स्टंप के बाहर लगभग दूसरा खिलाड़ी भी आउट कर लिया था, लेकिन कौशनी विकेट के पीछे कैच नहीं पकड़ पाई थी. सदाफ खेलने के लिए पहुंची हैं, दाएं हाथ की बैटर हैं, और बैट लग गया, लेकिन गेंद निश्चित रूप से लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, फिर पैड से टकराई।

0: और टकराने के बाद सामने की ओर गेंद चली गई। सादाब शम्स खेलने के लिए आई हैं और अब पाकिस्तान संकट के बादल पाकिस्तान टीम पे मंडरा रहे हैं। गेंद को हवा में झूलने दिया, डिप किया, चूक सकती थी वहां पे बैटर, जिस तरह से बहुत ही बुद्धिमानी से चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही हैं अथा पत्तू, लगभग झांसे में आ गई थी। आयशा लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर रही हैं, जब ड्राइव करती हैं अपनी ग्रिप को बदल लेती हैं, ये अंदाज़ है खेलने का उनका। और श्रीलंका क्या पछताएगा, विमुक्ता जो उनकी तेज़ बॉलर थी, पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, मिथाली अपनी बॉलिंग पर, वो मलिंगा के अंदाज में जो आपको लगातार हम बताते रहे हैं, उनका दूसरा ओवर काफ़ी महंगा, 14 रन उसमें उन्होंने दिए थे। और उससे भी बड़ी बात है कि गेंद नियंत्रित तो नहीं कर रख पा रही थी, काबू में नहीं थी, ऐसा लगा हर गेंद उनके हाथ से बहुत ज़्यादा सध कर नहीं आ रही थी। इस बार बहुत धीमे से खेला, गेंद को ऑन साइड में खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के करीब से, इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए रन ले लिया वहाँ पर फिरोजा और सादाफ ने। और इस ओवर में हालांकि विकेट भी गिरा, अतापतु को विकेट मिला, लेकिन इस समय चढ़कर खेल रही है श्रीलंका। एक ओवर की समाप्ति हुई और आपके कमेंटेटर होंगे इसके शो।
1: थैंक यू सो मच विनीत। सो श्रीलंका स्ट्राइकिंग रेगुलरली, पाकिस्तान लूजिंग देयर थर्ड विकेट एंड द कैप्टन रियली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न, चमारी अतापतु। And this tournament, as I mentioned a while earlier as well, it is with the ball that she has really been at the in the forefront. Remember against Indonesia, she picked up 7 wickets in an innings. And really, that's the sort of bowling. Her batting has really not come to the fore in this series. She's the most experienced, the captain of Sri Lanka. And Chamudi Prabodha, there's a bowling change here with Pakistan 39 for 3 after 7 overs. And Chamudi bowling yet another left-arm spinner. One left-arm spinner replacing another. This time once again. This time the ball may just run away. It may beat the fielder. No, it doesn't. The two fielders converging there in the third man region. And the two batters have been able to get a couple of runs there. Really, Pakistan in that first power play, all that they managed to get was 33, losing 2 wickets. And immediately after the power play was over, the first power play, the seventh over sent down by the captain, Atapattu. And look at her, she is so aggressive, really showing her teammates how to fight it out in a very well-contested semi-final here. Goes up to now, it's been Sri Lankan bowlers who've held sway, who are calling the shots. Chamudi replacing Sugandhika. One left-arm spinner replacing another. Bowling from round the wicket, from using the width of the crease. And once again, the slowness of the pitch in evidence there. Playing a tad too early, uppishly, but safely towards mid-off. And that takes Firoza to 7. Sadaf is on 1. And Pakistan in the 8th over, after 7.3 overs to be precise, a 42 for 3. Being put into bat by the Sri Lankan captain, Atapattu, who won the toss and had no hesitation whatsoever in doing the insertion job. This time once again, this one keeping it within the stumps. Good variation there from Chamudi. And what one has seen, the Sri Lankan spinners, they're not afraid to toss the ball, including Atapattu. When you really toss it above the eye line, that's when you really test the skill of the batter. And that is what the Sri Lankan bowlers have been able to do. It's a very pensive looking dugout, Pakistan, quite understandable. Here's Chamudi. This time almost a full toss and driven, but not for anything more than a single, down to long off. And that would mean that Pakistan are 43 for 3. And really, as far as the Asia Cup is concerned, there's so many records which are associated with this. And all these details are being provided a minute to minute by a very efficient scorer, statistician team of Yashwant Chadd and Jatin Sood. That's the last ball of the over. Has been played defensively, not for any runs, and that ends the over. And with Pakistan really at the moment, Vineet, the odds stacked against them, it requires someone to play an inning, someone to bat through maybe until the 16th, 17th over for Pakistan to really put up a score which would challenge Sri Lanka.
0: Firoza bahut zyada badi pariyan khel nahi payi hain ab tak tournament mein. थाईलैंड और भारत के खिलाफ दोनों ही में खाता भी नहीं खोल पाई जतन बता रहे हैं, और हांगकांग के खिलाफ केवल 3, तो गेंद को मिडिल नहीं कर पा रही हैं, खेलना चाहती हैं सामने की ओर और गेंद जाती है पीछे थर्ड मैन की दिशा में, मोटा बाहरी सिरा लेकर कई बार गेंदें गई हैं, निशाना साधती हैं विकेट पर सामने की ओर सीधा खेलने की, जो कि एक सही अंदाज़ है इस पिच पर खेलने का, लेकिन उसको फिर टाइम नहीं कर पाती हैं और किनारा लेके गेंद पीछे जा रही हैं। ओ, श्रीलंका के लिए अच्छा समाचार है, कविशा देलहरी मैदान पर आ गई हैं, घायल हो गई थी एक्स्ट्रा कवर में फील्डिंग करने के प्रयास में, उनके उंगलियों में चोट आ गई थी और उनके बॉलिंग आर्म पे चोट आई थी, अब वो बॉलिंग करने के लिए आ रही हैं। उनकी पहली गेंद, आउट, अच्छा खासा टर्न मिला, गेंद नीचे भी रह रही थी लेकिन विद द टर्न खेल दिया गेंद को और एक रन ले लिया दोनों खिलाड़ियों ने, फिरोजा और सादाफ ने, और 5.38 का इस समय औसत है, 44 रन 3 विकेट पर। पाकिस्तान टॉस हार के बैटिंग कर रहा है, ये 9वें ओवर की पहली गेंद थी। अगर आप देखें कविशा देलहरी ने 20 विकेट लिए हैं 2026 में, चमरी अत्तापत्तू वो बॉलर हैं कप्तान हैं जिन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए हैं इस साल, सुगंधा कुमारी जिनके 15 विकेट हैं, कविशा की ये गेंद और बहुत बढ़िया गेंद कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है, श्रीलंका के खिलाड़ी विविधता लाते हैं, कोई सी भी गेंद रिपीट नहीं करते हैं, 6 की 6 अलग गेंदें। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इतनी थी, गुड लेंथ गेंद से थोड़ा पहले टिप्पा खा रही थी, टप्पा खाने के बाद जिस तरह से ऑफ स्पिन होती है उस अंदाज में गेंद अंदर की तरफ आई राइट हैंडर के लिए। इस बार फ्लाइट दिया, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, ड्राइव किया और उसमें रन अवश्य मिल जाएगा इससे पहले कि लॉन्ग ऑफ पे गेंद को विकेट के पीछे की ओर, बॉलर के पीछे की ओर फील्ड किया जाए। इस पिच पे गेंद को फिरकी देना बहुत ज़रूरी है इस पिच पर, क्योंकि जब तक आप रेवोल्यूशंस ज़्यादा नहीं देंगे, जब तक आपको ग्रिप नहीं मिलेगी, ड्रिफ्ट आपको नहीं मिलेगी, और वो बखूबी श्रीलंकाई हर स्पिनर कर रहा है। और इस बार स्वीप के अंदाज में घुटनों को मोड़ दिया, खेल दिया दायरे के अंदर 25 गज के, फील्डर से वो रुक नहीं पाई और गेंद चली गई लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच की स्थिति से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ऐसे मौके रहे हर टीम के साथ, जबकि ये फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद, लेग स्टंप के बाद, पिच होने के बाद और लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, विद द टाइड गेंद की रफ्तार का ही इस्तेमाल करते हुए ही अपने आड़े बैट से घूमते हुए स्वीप के अंदाज में एक घुटना जमीन में झुकाते हुए उसको आगे भर बढ़ा दिया और 4 रन बटोर लिए अपने टीम के लिए। 1 रन कम रह गया है, 50 से दूर है पाकिस्तान केवल 1 रन से, 49 पे 3। ये 9वां ओवर चल रहा है, खतरनाक गेंद बैकफुट पर सरक कर चली गई थी, एक खिलाड़ी हिट आउट भी हो चुका है इस टूर्नामेंट में, लगभग स्टंप्स के करीब चली गई थी और फिर जैसे तैसे उसको निकाला था, बिल्कुल चूक गई थी, अंतिम समय में बैट लग ही तो गया, नहीं तो बोल्ड आउट हो जाती, गेंद की लंबाई कम कर दी थी। बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहे हैं पाकिस्तान खिलाड़ी कविशा के खिलाफ, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं कविशा देलहरी, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रही हैं, लगातार लेंथ लाइन ट्रेजेक्ट्री स्पीड रफ्तार की परिवर्तन, फ्लाइट का परिवर्तन, रेवोल्यूशंस दे रही हैं। एक बहुत ही शानदार ओवर समाप्त हुआ, हालांकि विकेट उसमें नहीं मिला, लेकिन कश्मकश भरा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। 3 लगातार जल्दी जल्दी विकेट खो देने के बाद पारी को दोबारा संभालने में लगे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन श्रीलंका है कि हावी हो रहा है और रन बनाना दूभर हो रहा है। आईएएस किशोर।
1: थैंक यू विनीत, एंड एज यू वेरी राइटली सेड, द श्रीलंकन बोलर्स एस्पेशली द स्पिनर्स हैव बीन ऑल ओवर द पाकिस्तान बैटर्स, दे आर रियली वेरीड। द पॉइंट दैट यू मेड दैट दे बोल ऑलमोस्ट 6 different डिलीवरीज इन एन ओवर, and that is what is making the task of the Pakistani batters all that more difficult. The first ball of a new over has the batter stroking it out into the extra cover region just for a single. 50 up on the board for Pakistan. Firoza on 9, Sadaf on 7 on strike to Chamudi, who's been bowling well. She had replaced Sugandhika, and she has also been as accurate as miserly as the next ball, once again tossing it up, and to the pitch of that one was Sadaf, but not able to get the ball off the square. You not only need to time it well, you need to place it well, and batting against spinners require a totally different skill set. You need to use your feet well, and maybe modern day batters not so much equipped in doing that. This time goes deep into the crease and pulls it, a short arm pull there just for a single down to the fielder there, and Pakistan are 51 for 3. Boundaries are at a premium now. the way the Sri Lankan bowlers have been bowling, the spinners, and we've seen right through this Women's Asia Cup at the Dubai International Stadium that the pitches have afforded a lot of turn. The next ball, once again, this time with the turn almost, that's just giving the ball direction to a short third man for a single. Firoza moves into double figure. She's on 10. Sadaf is on 8. And Pakistan are 52 for 3. Almost at the halfway stage at after 9.4 overs. So from here on, it would be up to these two batters. They need to consolidate. They need to stay. Look at this. That's exemplary work by the wicketkeeper. And the bowler saw that the batter, Sadaf, was really dancing down the track, shot on the length. And as the ball spun across the bat, wicketkeeper didn't do any immediately whipping of the bails. Quick silver work there by the Sri Lankan wicketkeeper, accounting for the fourth batter in the Pakistan inning. She was down a mile there beneath. And really clever bowling by the left arm spinner.
0: Batters ke upar dabav ban raha tha. Dono Sadaf aur Gul theek se nahi khel pa rahi thi. और ऐसे में वो क्रीज छोड़ के बाहर निकल आई, एक बड़ा स्ट्रोक तलाश रही थी. हाँ, अच्छी बात है, अगर आप स्टंप आउट होती हैं तो कम से कम एक मील दूरी से रन आउट होइए, स्टंप आउट होइए, मतलब मन पूरा बना लिया था. क्रीज छोड़ के बाहर निकल आई थी, चूंकि विकेटकीपर के पास गेंद चली गई और उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए और एक और सफलता मिल गई श्रीलंका को. और एक बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय. 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स होती हैं, लेकिन नौवें ओवर में अगर विकेट गिर जाए तो ड्रिंक्स बुला ली जाती हैं. तो ड्रिंक्स मैदान पर आ गई हैं. लगभग 42 मिनट में ये 10 ओवर हुए हैं. ये याद रखने वाली बात है कि 9:15 तक भारतीय समय के अनुसार ये पहली बारी निर्धारित की गई है. और आजकल क्या है, स्टॉप वॉच चलती है तीसरे अंपायर की. 60 सेकंड में आपको दूसरा ओवर, अगला ओवर शुरू करना है, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. और फिर बाद में लास्ट के ओवर्स में आपको फील्डर कम मिलेंगे. अगर टाइम पे ओवर आपने पूरे नहीं किए तो केवल 3 फील्डर आपको मिलेंगे. तो ये तमाम दुश्वारियां हैं. और अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी ICC ने लेटेस्ट जो नियम आए हैं उसमें स्टॉप वॉच बुला ली है कि 60 सेकंड के अंदर, किशोर, आपको दूसरा ओवर शुरू करना है.
1: Yes, so many new rules being introduced. Also the fact that earlier in a red ball game, in a longer duration game, if a wicket falls, it would have been stumps. Now the new rule says that the over needs to be completed. So all in all, it is basically for the paying cricket lover, those who flock the stadium to see matches. So the bodies which govern the game worldwide, be it the ICC or in Asia the ACC, always the attempt is to see that the paying public get their money's worth.
0: एक दिलचस्प बात यह है कि अब इतनी आसानी से लेग स्टंप के बाहर की वाइड नहीं मिलेगी. ड्रिंक्स मैदान पर है, खेल रुका हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में. ये एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, लगातार विकेट गिरते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के. क्यों? क्योंकि ICC ने नियमों में परिवर्तन करके एक निशान बना दिया है. और वो जो निशान है वो प्रोटेक्टेड डेंजर एरिया होता है, मिडल स्टंप के दोनों ओर 1 फुट के आसपास का वो जो डेंजर एरिया है, उस पर निशान दोनों तरफ लगा दिया है, ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर. तो पहले जो जैसे ही लेग स्टंप के बाहर गेंद होती थी तो उसको वाइड दे दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा. जब तक कि वो 1 फिट बाहर नहीं है उस लाल निशान का जो कि पिच पर बाकायदा लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान की कप्तान ड्रिंक्स मैदान से बाहर जा चुकी हैं 52 रन 4 विकेट पर टॉस हार कर, जबकि कप्तान फातिमा साना मैदान पर आई हैं और बहुत आवाज़ बुलंद की जा रही है पाकिस्तान की. अच्छी खासी ये ऑलराउंडर हैं और जिस तरह से ये बैटिंग करती हैं, इस सीज़न में सबसे ज़्यादा T20 रन उन्होंने ही बनाए हैं पाकिस्तान के लिए, कि इनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर आना चाहिए, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं. फिरोज़ा 10 रन बनाकर खेल रही हैं, 16 गेंदों का इस्तेमाल कर लिया है और कप्तान को ये पहली गेंद. चामुड़ी, जिन्होंने कि पिछले मैच में उन्होंने विकेट लिए थे, जबकि क्या ये दूसरा विकेट एक और मिल जाएगा चामुड़ी को, ये अब समय की प्रतीक्षा हम करेंगे. लेकिन तेजी के साथ ये गेंद आई थी. चामुड़ी ने पिछले मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था और उनको अब देखिए केवल 17 बरस की हैं. नाट्य कप की ये बड़े खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता और टैलेंट इनमें नजर आ रहा है. और श्रीलंका पछता रहा होगा कि उन्होंने जिस तरह से चेतना विमुक्ति को ड्रॉप किया और उसके बजाय वो मलिंगा के अंदाज में जो बॉलिंग करती हैं, मिथाली को टीम में शामिल किया अयोध्या, लेकिन वो पूरी तरह से रिदम में, लय में बॉलिंग नहीं कर पा रही हैं. पिछली 30 गेंदों पर 23 रन बने हैं, दो विकेट पाकिस्तान ने खोए हैं, नहीं कोई आउट होने की संभावना नहीं, चकमा जरूर भर दिया था। फिरोजा और फातिमा ये मैदान पर हैं और आएंगे किशोर।
1: थैंक यू विनीत। सो पाकिस्तान रियली गोइंग डीप इनटू ट्रबल एट द मोमेंट विद द लास्ट विकेट दैट फेल एंड रियली चमोड़ी वाज रियली फॉक्स द बैटर देयर एंड रियली दैट्स अ डिलाइट फॉर एनी लेफ्ट आर्म स्पिनर टू ड्रॉ द बैटर आउट and for the wicketkeeper to do the rest as once again this was played tossing that one just outside the off stump. Once again Kavisha, she's been the pick of the bowlers in the last game as well when she picked up 3 wickets. Kavisha, and one thought that she had injured her thumb, but she was off the field, but she's come back and here is she coming in to bowl the third over, and this time this is driven through the offside through the fielders there, and once again what a good throw that's there from the deep. I think it was the captain there, Chamara Attapattu, who has been a live wire in the field, but it was a delight in that last over when the way Chabudi drew the batter forward really doesn't see this very often. Very clever bowling by her to reduce Pakistan to 53 for 4. This is the 11th over, just gone past the halfway stage as far as the Pakistan innings is concerned. In all sorts of trouble here. Kavisha, look at that. Almost forcing Fatima Sana to go deep into the crease and play a defensive shot. Really, the ball turning as has been happening in all the matches. We saw that semi-final between India and Bangladesh also.
2: द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
3: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
3: हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
3: ग्लोबल ट्रेड तभी

0: आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेयरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेयरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
4: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रेजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जो आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर ये भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया।

0: को दुनिया की दरख्शां और खुशहाल मईशतों को यकजा करने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया है। इस दौरान कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने अपने खिताब में कहा कि ब्रिक्स की भारतीय सदारत के तहत ये फोरम पूरे ब्लॉक के रुकन ममालिक के दरमियान मुतवाजन तिजारत और तिजारती इम्कानात की तलाश के हुसूल की खातिर वाज़ह मकसद से तहरीक पा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं बशमूल रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन, चीन के सदर शी जिनफिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, इंडोनेशिया के सदर प्रोबोवो सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान और अबू जहबी के वलीहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मेजबानी करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 का मौजू है मजबूत इख्तिरा तआवुन और पायदार तरक्की का क्याम। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए नई दिल्ली सभी की तवज्जो का मरकज है क्योंकि कौमी राजधानी आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए तैयार है। इस दौरान कल होने वाली सरबराह मीटिंग के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के रहनुमा शमूलियाती आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेंगे। ब्रिक्स रुकन ममालिक भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स नुमाइश का भी मुशाहिदा करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के रहनुमा मुश्तरका तौर पर शजरकारी करेंगे जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके इशाइये की मेजबानी करेंगे। इस दौरान वजीर आजम मोदी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के तनाजुर में ब्रिक्स रहनुमाओं के साथ सिलसिलेवार दो तरफा मुलाकातें करेंगे। ब्रिक्स की भारतीय सदारत के तहत भारत मुख्तलिफ अराकीन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगा, साथ ही मौजूदा मैकेनिज्म की असर पजीरी को भी मुस्तहकम बनाने की कोशिश करेगा। वहीं भारत का मकसद ब्रिक्स को ज़्यादा शमूलियाती आलमी ऑर्डर तरतीब देने में तामीरी क़ुव्वत बनाना भी है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के पेश नज़र कल कौमी राजधानी दिल्ली की अहम सड़कों पर ट्रैफिक की पाबंदियां, रास्तों की तब्दीली और आमदो रफ्त को मुनज़्ज़म करने के इकदाम किए जाएंगे। ये पाबंदियां रात 8:15 बजे से 11 बजे तक बरकरार रहेंगी। इस दौरान इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, जनपथ, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, मथुरा रोड और प्रगति मैदान समेत करीबी रास्तों पर ट्रैफिक के खसूसी जवाबित नाफिज होंगे। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि अपने सफर की पेशगी मनसूबाबंदी कर लें, जहां मुमकिन हो मेट्रो का इस्तेमाल करें और मुतल्लिका इलाकों से गुजरते या वहां जाते वक्त घर से इजाफी वक्त लेकर निकलें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम ने ब्रिक्स को आलमी इश्तराक और खित्ते जनूब की मजबूत आवाज के प्लेटफॉर्म के तौर पर तकवियत देने की खातिर ब्रिक्स को मजबूत करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की सताइश की है। एसोचैम के सदर निर्मल के मिंडा ने कहा कि ब्रिक्स इश्तराक को ठोस कारोबारी नतायज में तब्दील करने का वजीर आजम का विजन बेहद अहमियत का हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स मईशतों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और कारोबारी शराकतदारी को वसत देने से बेपनाह मौके खुल सकते हैं और शमूलियाती और पायदार तरक्की के नए इम्कान पैदा हो सकते हैं। यूरोपीय कमीशन ने आज भारत के साथ आज़ाद तजारती माहदे FTA पर दस्तखत करने और इसे नाफिज करने के लिए यूरोपीय कौंसिल के सामने एक बाज़ाबता तजवीज़ पेश की है। इस माहदे को मदर्स ऑफ ऑल डील्स यानी अब तक का सबसे बड़ा तजारती माहदा बताया जा रहा है। यूरोपीय कौंसिल की मंजूरी मिलने के बाद यह भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तजारती माहदा होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन ने रवां साल जनवरी में FTA को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया था। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक माहदे के नाफिज होने के बाद बाजारों तक रसाई आसान होगी, महसूलात में कमी आएगी और गैर जरूरी तिजारती रुकावटें दूर हो जाएंगी। इससे भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के लिए वाज़ह और काबिले एतमाद जवाबित दस्तियाब होंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को बड़े पैमाने पर तकनीकी जिद्दत तराजी को अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी वाजह किया कि इसके लिए इंसानी जिम्मेदारी, तहफ्फुज और अवामी एतमाद पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026 से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि भारत की नौजवान नस्ल मौके का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि खुद प्लेटफॉर्म, कारोबारी इदारे और नए हल तख्लीक कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में आबादी के तनासुब से हासिल होने वाला माशी फायदा मुल्क के तेजी से तरक्की करते हुए टेक्नोलॉजी और फिनटेक इकोनिज़ाम में नुमाया तौर पर नजर आ रहा है।

0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने दादरा और नगर हवेली को मिनी इंडिया करार देते हुए मरकजी खित्ते के समाजी तनवो सकाफती विरसे और हमाहंगी के जज्बे की सताइश की। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के अपने पहले दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकजी खित्ता इस बात की एक शानदार मिसाल है कि किस तरह जिद्दत तराजी पर मबनी हुक्मरानी और अवामी शिरकत तरक्की में तब्दील हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोग खित्ते की तरक्की में तआवुन कर रहे हैं और मिलजुल कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने बहिरे अहमर के दहाने पर वाक़े आबनाए बाबुल मंदब में मौजूद कलीदी एतबार से अहम जजीरे मायून पर कब्जा कर लिया है। इसकी तस्दीक यमन की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के एक आला फौजी अहलकार और एक हूसी अहलकार ने की। यह आतिश फसां से बनने वाला एक छोटा और बंजर जजीरा है जो यमन के मगरबी साहिल से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। सऊदी अरब ने इसके जवाब में अहम बंदरगाही शहर मोखा के हवाई अड्डे पर फजाई हमले किए जिस पर हूसियों ने गुज़श्ता रोज कब्जा कर लिया था। इससे कबल ईरान की हुकूमत ने सऊदी अरब की जानिब से यमन के मुहासरे के खात्मे का मुतालबा किया और अपने इत्तेहादी हूसियों की हिमायत का इजहार किया। ईरान की वजारत खारजा ने सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान मुजाकरात की बहाली का भी मुतालबा किया। अमरीका में 11 सितम्बर 2001 को हुए दहशतगर्दाना हमले को आज 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के दहशतगर्दों ने 4 मुसाफिर तैयारों को अगवा किया था। पूरे अमरीका में आज इन हमलों में जान गंवाने वालों के लिए यादगारी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। जान गंवाने वालों में आग बुझाने वाला अमला, पुलिस अफसरान, हंगामी कारकुन और आम शहरी शामिल थे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे में जब दहशतगर्दी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, दहशतगर्दी की सभी शक्लों और मज़ाहिर के खिलाफ भारत का अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। जूनियर एशिया हॉकी कप में आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में मर्दों की जूनियर भारतीय टीम ने मलेशिया को 3-1 से हरा दिया। इस तरह भारतीय टीम चीन के शहर मोकी में होने वाले फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय कप्तान अनमोल एका ने 2 गोल किए जबकि सुखविंदर ने 1 गोल किया। फाइनल में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। जनूबी कोरिया आज शाम पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा है। इस दौरान खवातीन की जूनियर भारतीय टीम कल सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया का मुकाबला करेगी। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल साहिली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का इम्कान है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने बताया कि कल सुबह सवेरे कौमी राजधानी दिल्ली के कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 18वें ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से पहले आज नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी, इक्तिसादी, दिफाई, तवानाई और मकामी और आलमी मौजूदात पर हुई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़ियात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सदर और अक़वाम-ए-मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल से भी दोतरफा मुलाकातें की। ब्रिक्स रुकन ममालिक के सरबराहान ने ब्रिक्स कारोबारी फोरम के रहनुमा इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की माशी ताकत बाकी दुनिया से दुगनी रफ्तार से बढ़ी है। ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने बहिरे अहमर के नज़दीक बाबुल मंदब में वाक़े स्ट्रेटजिक एतबार से अहम यमन के मायूं जजीरे पर कब्जा कर लिया है। और हॉकी में मर्दों की जूनियर भारतीय टीम चीन के मोकी में मलेशिया को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This time just shortening the length and completely foxing Fatima Sana on that occasion. The slower you bowl, the more difficult it becomes for the batter to pose the pace, and that is what one has seen. Clever bowling, I must say, from Sugandhika. As here is she once again bowling from over the wicket, using the width of the crease very well. This time Fatima Sana drives down the ground. There is no protection there. 4 runs. You really cannot set a field for that one. And really eyeing the area where you can get scored down the track. Fine straight drive there for 4 runs.

0: तो कहते हैं कि जब इरादे नेक हों तो जो आप हासिल करना चाहो वो आप हासिल कर सकते हैं, और पाकिस्तान की टीम के लिए भी शायद यही बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि 10वें ओवर में स्कोर हो 52 और 4 विकेट खो बैठे हैं, और उसके बाद लगभग जो 78 रन 80 रन अगर बनाएं तो फाइटिंग का चांस तो बन ही जाता है। बहुत सारी बातों के साथ मैं मुनीश जौली आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। गीतांजलि सोनी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हमारे एक्सपर्ट सुमित्र बोस, वैशाली माथुर, आप दोनों का स्वागत कर रहा हूं मैं।
1: थैंक यू। Good evening, and in fact, you know, this is for me quite interesting show right now. Although we are going to talk just for a little bit, because initially when Pakistan started and their wicket fell off, I thought it's going to be really quick and easy for Sri Lankan team. But things were different, and they have shown the resilience. So, Sumitra, I'll first ask you, where do you see now match going from here? 130 score, is it a good enough score?
2: Yeah, challenging score. Just humne before the match we predicted anything between 130 and 140 good score, because the wicket is not ideal, it's a slow batting track. So now

0: Pakistan have done the job, especially Fatma, the way she batted. Rear good action, two good partnerships, especially after Munish has already said that they had lost four wickets for the half a stage.
1: Right.
0: Great comeback, two wonderful partnerships, but now they have to do the job with the ball. And 130 won't be an easy target, so Sri Lanka will have to plan their chase very well.
2: Vaishali, क्या लगा आपको कि पाकिस्तान लड़खड़ाई शुरू में क्या वजह रही?
3: पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे उन्होंने आके अपना कमाल उस तरीके से दिखाया नहीं, बट हाँ जब फातिमा आई और ट्यूबा उनके साथ खेल रही थी काफ़ी अच्छा ये शो देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से वो निकल के वो सिक्स हिट कर रहे थे एंड बाउंड्रीज तक लेके जा रहे थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड पूरे मैच की अगर बात करें तो सबसे अच्छा लगा था श्रीलंका के विकेट कीपर, द वे उन्होंने जल्दी से जैसे उन्होंने अटैक किया है, कैचेस पकड़ी हैं, वो आउटस्टैंडिंग है। एंड वो काफ़ी यंग भी देखने को दिख रही है अभी। तो अगर हम बात करें अपने इंडियन प्लेयर से, अगर अपनी रिचा घोष से अगर कंपेरिजन करें तो टाइमिंग काफ़ी अच्छी है उनकी उनसे।
1: राइट, so Mitra, though we have to give it to Pakistan for this, because we have seen that they have resilience, of course, because as we have seen in the tournament they did not play that well, but the last two matches which they won and they came into semi-finals, I guess, you know, they can give good fight to Sri Lanka.
0: Certainly, in fact, that's what we require.
1: Yeah.
0: I mean, this is the time, this is the business end. One match, if you don't win today, you go home. But thing is, they've shown captain has come to the party finally.
1: Yes, yes.
0: Because and she's quite capable. Ki unka jo strike rate hai is 150.74, which is very good and one of the top among the top five in the world. Aaj she has, but the bad thing that I saw that she was cramping towards the end.
1: Yes.
0: Unka cramps humne dekha, and she is equally important with the ball. So I will hope that in this 10 to 15 minutes break, the support staff for the mashers, the people, unko acha se hydration milna chahiye, kyunki or so that she comes back fit to bowl her 4 overs. Or dekhiye, these are very crucial things. Ye T20 tournament mein, T20 matches mein, these are the challenges. And Dubai's high humidity is also a massive challenge.
1: Yes.
0: So I think we're all set for a great second innings.
2: Right then, do wicket liye. चमरिया थपतू जो सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड ऑफकोर्स मैं कहूँगा कि उनके साथ चामुंडी प्रबोडा जो उनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो सबसे कम उम्र की हैं। डिड शी इम्प्रेस यू वैशाली?
3: या वेरी वेल, क्योंकि 17 इयर्स का आप उनका फेस देखो जो वो बॉल डाल रही थी, बिल्कुल 13 इयर्स की लग रही थी उस टाइम पे। आई थॉट कि इंडियन मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे, इतने छोटे मतलब बच्चे होके आप, एंड वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो था वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके पास तक नहीं होता है। वो इतने कॉन्फिडेंस से बॉल डाल रही थी एंड सी टुक 2 विकेट्स, वो बड़ा इम्प्रेसिव है। और उनको सबसे एक डिफरेंट बात ये थी कि इतना छोटा यंग प्लेयर होने के बावजूद भी उनको ये पता है कि उनको बॉल किस बैटर को किस वे में डालना है। वो कहीं ना कहीं खींच के भी डाल रही थी अपनी तरफ के बैट्समैन को, वो लूप दे रही थी कि वो निकल के मारे, एंड वहाँ पे उन्होंने वो दिया, एंड वहाँ पे सामने खड़ी थी अट्टा पट्टू, एंड वहाँ पे उन्होंने कैच भी लिया था उनका। द रिएक्शन वॉज एक्सपीरियंस प्लेयर का जो रिएक्शन होता है, सेम रिएक्शन जो मेरे को मिला है ना देखने को, वो बहुत ही इम्प्रेसिव था।
1: सो मित्रों, इज इट सेफ टू से दैट दिस कॉन्फिडेंस सॉर्ट ऑफ ईज कम्स विद द I think stability factor which Sri Lankan team has right now, considering they haven't even lost even a single match. So do you think that is also a contributing factor?
0: Certainly, because you see Chamari Athapattu, if you look at the way she was bowling,
1: right,
0: very intelligent. They had came out with a very straight game plan, pace and spin. Or jis tarah se Chamari Athapattu came to bowl, the way she was using the ball, line and length,
1: right,
0: और जिस तरह से अपना वेरिएशन कर रहा था, जिस तरह से वो पिच यूज कर रहा था, she was leading from the front.
1: Right.
0: Yes, and it was captain versus captain. Of course, the Pakistani captain Fatma came back and with the brilliant knock. But Chamari actually took a wonderful catch. Or maybe one or two catches were dropped, but I think Pakistan have done really well to fight back. And fantastic.
1: All right. और मुझे लगता है कि ये जो कैच ड्रॉप हुई है ना वैशाली, ये कहीं ना कहीं हर्ट जरूर करेंगे श्रीलंकन टीम को।
3: बिल्कुल करेंगे, बट अभी देखने की बारी ये है कि किस तरह से इनके जो बैटर हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको पावर प्ले में कितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं ना एज अ श्रीलंकन टीम, तो आप

पुनः स्वागत है आपका, मैं आपका कमेंटेटर विनीत गर्ग बोल रहा हूँ। मेरे साथ हैं एस किशोर अंग्रेजी में, वयोवृद्ध हमारे स्कोरर यशवंत चार्ड मुंबई के, और जतिन सूद हमारे स्टैटिस्टिशियन मुस्तैदी के साथ तैयार हैं एक ऐसे मुकाबले के लिए जो बहुत संघर्षपूर्ण साबित होगा, ऐसा उम्मीद यहाँ पर सबको हो रही है कि ये निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। लेकिन सबके दिमाग में एक ही प्रश्न है कि क्या पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना बॉलिंग करेंगी? जिस तरह से तकलीफ में वो नज़र आ रही थी पारी की, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी उस समय उनको घुटने में चोट भी लगी थी, और फिर उसके बाद पतनाले की तरह, धार की तरह पसीना बह रहा है क्योंकि उनके बहता रहा है जब वो बैटिंग, लेकिन मैदान पर आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए ये शुभ समाचार है, फातिमा साना मैदान पर आ रही हैं। हालांकि काफ़ी खेल का वक्त ज़ाया हुआ क्योंकि उनको उपचार देना पड़ा मैदान पर आके फिजियो को पाकिस्तान के, लेकिन इस समय कम से कम मैदान पर तो आ रही हैं और उम्मीद है कि बॉलिंग करेंगी क्योंकि पारी की शुरुआत में वो नई गेंद का इस्तेमाल करती हैं और उन्होंने सबसे अधिक इस साल T20 इंटरनेशनल्स में विकेट पाकिस्तान की ओर से चटकाए हैं 23। तो एक ऐसा मुकाबला जिसमें ये रन बनाने इतने आसान नहीं होंगे इस पिच पर, क्योंकि ज़्यादा बड़े स्कोर होते नहीं रहे। 169 मैच खेलने वाली ODI और T20 में दोनों में 4000 रन बनाने वाली, 114 का स्ट्राइक रेट अच्छा खासा है, 14 अर्धशतक, 4 शतक भी लगाए हैं उन्होंने। पहली थी श्रीलंका की ओर से T20 शतक लगाने वाली, 119 रन बनाकर नाबाद रही, 160 का स्कोर। ईमिशा दुलानी जो एकमात्र दूसरी हैं जिन्होंने शतक लगाया श्रीलंका की ओर से, और किसी ने नहीं लगाया, उनका एक शतक है, 2 अर्धशतक हैं, 23 मैच अब तक खेली हैं, 460 रन उन्होंने बनाए हैं। और सादिया इकबाल जो स्पिनर हैं वो बॉलिंग करने के लिए आ रही हैं, और सादिया इकबाल बाएँ हाथ की स्पिन बॉलर हैं, 68 मैच में 84 विकेट उन्होंने लिए हैं, अच्छी ऊंची कद काठी की हैं तो गेंद उनकी काफ़ी बाउंस होती है, और जो फील्ड लगाई गई है उसमें एक स्लिप नज़र आ रहा है। और बाएं हाथ के बैटर अत्तापत्तु कप्तान जो पारी की शुरुआत करने आई हैं उनके लिए भरी हुई ओपैक ऑफ साइड फील्ड है और ऑन साइड की भी नज़र आ रही है, दूर के खिलाड़ी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, केवल 2 रखे जा सकते हैं। सादिया इकबाल बाएँ हाथ से ओवर द विकेट ड्राइव किया, कोहनी ऊपर करके सीधा ड्राइव, और गेंद मिड ऑफ जो कि दायरे के अंदर है 25 गज के, और श्रीलंका को जीतने के लिए 131 रनों की आवश्यकता है। एमिरेट्स रोड एंड से ये बॉलिंग की जा रही है ईमिशा दुलानी, जो नवयुवक नवयुवती हैं, 24 बरस की हैं। अगली गेंद और इसको ड्राइव कर दिया दो फील्डर्स के बीच में से, करारा ड्राइव खेला है इस बार, और गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक था, अनुमान सही लगाया था। कप्तान अत्तापत्तु के पास 16 साल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, बहुत ऊंची बैकलिफ्ट ली और फ्लरिश में गेंद को जब वो खेला उन्होंने तो बैट जाके पीछे कमर से दोबारा टकरा गया, और सना थोड़ा सा इशारा कर रही है कि आपको इतनी ओवर पिच करने की ज़रूरत नहीं है गेंदों को, और इस बार धीमी गेंद को रफ्तार भी कम कर दी, लंबाई भी कम कर दी, और सावधानी से इस बार पुश भर कर पाई अत्तापत्तु, 4 रन 3 गेंदों पर, और श्रीलंका का भी खाता उस चौके के साथ खुला था 4 बगैर नुकसान के। 20 पारियों में 434 रन बनाए हैं 115 के स्ट्राइक रेट से अत्तापत्तु, श्रीलंकाई कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ T20s में। इस बार क्रीज पे चौड़े वाइड ऑफ द क्रीज ये गेंद कर दी और केवल उसको डिफ्लेक्ट करके एक एंगल शॉट खेला और ऑफ साइड में बैकवर्ड ऑफ पॉइंट पर दायरे के अंदर गेंद को फील्ड करें उससे पहले छोर बदल लिए दोनों खिलाड़ियों ने। तो ईमिशा दुलानी 12, 3 और 25 ये स्कोर रहे हैं अब तक टूर्नामेंट में उनके। दरअसल टीम में वो इसलिए हैं और उसकी वजह से विश्वी गुणरत्ने को पारी की शुरुआत नहीं कराई है इस टूर्नामेंट में। 64 गेंदों पर एक शतक लगाया है इन्होंने एक बायलेटरल सीरीज में, द्विपक्षीय सीरीज में जो लंका में हुई अगस्त में, शानदार बैटिंग की और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उस पारी की वजह से उनको पुरस्कृत किया गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर श्रीलंकाई क्रिकेट की। बढ़िया गेंद थी, थ्रू द डिफेंस लगभग हो गई थी, लेकिन क्योंकि चौकस और चौकन नहीं थी, कोई आक्रामक तेवर नहीं दिखा रही थी, फ्रंट फुट पर आ जरूर गई थी, फिर असहज महसूस किया, पीछे से बल्ले को लाई गेंद की लाइन में और धीरे से पुश भर कर दिया, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रही हैं सादिया, बार बार बदल रही हैं ओवर से, राउंड विकेट हो रही हैं, एक लेफ्ट हैंडर है, एक राइट हैंडर है, और दोबारा इस बार जबरदस्त स्ट्रोक लिया ईमिशा ने, पूरी तरह से चूकी, मिस टाइम किया, बैट पे लगी, पैड पे लगी और फिर रिफ्लेक्ट हो गई, विकेट कीपर ने आके गेंद को उठा लिया, अच्छा ओवर सादिया का,

0: सोचने पर मजबूर किया दोनों बैटर्स को और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त हो गया श्रीलंका की पारी का।
1: सो श्रीलंका मेकिंग ए क्वाइट बिग इनिंग, 131 इज द टारगेट, ए फाइटिंग स्कोर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, विन इट एंड इट वुड बी अप टू फातिमा सना द स्किपर, शी लेड फ्रॉम द फ्रंट एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न्ड, पाकिस्तान वेन ट्रबल हैविंग लॉस्ट 4 अर्ली विकेट्स व्हेन शी केम आउट टू बैट, फर्स्ट दैट 40 रन पार्टनरशिप for the fifth wicket and unfinished one for the sixth wicket saw that Pakistan reached a score of 130 and Sri Lanka in reply at the end of the first over 5 without loss and a lot would depend on the Sri Lankan skipper Attappattu Chamari Attappattu, so much of experience. Fatima Sana, look at her record, 64 wickets in 67 matches, 9 occasions when she has taken 3 or more wickets. And a lot would depend upon her. Bowling to a very interesting field, just the lone slip. Then you've got a man at a fielder there at backward point. Then a ring of fielders on the offside. Fatima, this time drifting down the leg side. And these days what the ICC has done is earlier, whenever Vineet was also talking about that, whenever a ball even marginally going down the leg side used to be called a wide. Now with those blue lines which are on either side of the stumps is what would determine a wide ball. And this is very good. This has made it more bowler friendly because as we all know, the game is so much loaded in favor of batters. Fatima Sana bowling the second over of the innings. Sri Lanka 5 without loss. Bowling captain to captain. Fatima Sana to Chamari Attappattu, and Attappattu in the slot picks it up straight to the fielder. What a catch that is. That's the breakthrough that Pakistan were looking for. The danger woman, the captain of Sri Lanka, gone in the very first over. Chamari Attappattu picked up the fielder with unerring accuracy there, Vineet. And that would mean that Sri Lanka have been dealt an early blow. 5-1.
0: Sabse safal khiladi, Captain Attappattu. और ये झांसा दिया लगातार लेग स्टंप के आसपास गेंद करती रही हैं सना, जानबूझकर फील्ड प्लेसमेंट इतने लाजवाब हैं और वहाँ पे बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर की बजाय थोड़ा सा फॉरवर्ड ऑफ स्क्वायर कर दिया था स्क्वायर लेग क्षेत्र में। Attappattu ने जब उस बाएं हाथ की हैं जब खेलने का प्रयास किया तो सीधे झोली में चला गया, बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट। सदाफ ने बढ़िया कैच पकड़ा, ये कैच पकड़ने इतने आसान नहीं है, दिखते ज़रूर हैं आसान, लेकिन महत्वपूर्ण सफलता हाथ में आ गई है पाकिस्तान के।
1: You're right, not very easy, especially under the floodlight arrangement which is there at the Dubai International Stadium. Unlike most grounds across the world where you have floodlight towers, here you have the floodlights are actually on the periphery of the roof of the stadium. Most times it is difficult for the fielder. We've seen a lot of catches being dropped here. Even in the Pakistan innings, some catches went begging. But this time the fielder, Sadaf, they're doing extremely well and taking that catch. So an early jolt for Sri Lanka, chasing 131 for victory, a 5-1. And it is once again the skipper who's delivering. Fatima Sana, this time the ball stopping on her. And that's another wicket. She's on a hat-trick here. So Pakistan really fighting back after losing their first 4 wickets for very cheaply. First through the bat, the skipper leading the way there, Fatima Sana. Now she's doing it with the ball as well, Vineet. Two wickets of consecutive balls. She's on a hat-trick. And Sri Lanka in early trouble, 5-2.
0: धीमी गेंद कर दी और बैटर उससे चौक गई, अपने स्ट्रोक को चेक करने की कोशिश की लेकिन गेंद लॉब हो गई, उसको खेलना चाहती थी और जैसे ही उसको ऑन साइड में गई, एक शॉर्ट फील्डर शॉर्ट मिड विकेट पर तैनात है, उस ओर गेंद चली गई, एक लेफ्ट हैंडर गया, दूसरा लेफ्ट हैंडर आया और वो जो लेफ्ट हैंडर जो आई उन्होंने जब उसको खेलने की कोशिश की, खुशी देखते ही बनती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, उनको लग रहा है उनके पास पर्याप्त स्कोर नहीं है, लेकिन संजना कविंदी अच्छे फॉर्म में थी, खाता ही नहीं खोल पाई। और जैसा कि किशोर ने बताया, अब अगली गेंद हैट्रिक बॉल होगी और संजना कविंदी का वहाँ पे विकेट खो दिया है और महत्वपूर्ण सफलता पाकिस्तान के। इसके साथ ही हौसला बढ़ेगा उनका और वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे, दबाव बनाएंगे। हालांकि टॉप पहले 5 खिलाड़ियों में 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं श्रीलंका के पास और ज़्यादा ऑफ स्पिनर पाकिस्तान के पास है नहीं, मैचअप ज़्यादा है नहीं, लेकिन 2 विकेट पहले ही खो दिए हैं श्रीलंका ने।
1: यस, नॉट द आइडियल स्टार्ट बिगिनिंग फॉर

0: Sri Lanka, just the opposite of that, chasing 131, and they are 5 for 2, and it is the hat-trick ball coming up. But this time Hasini has been able to play it defensively, gets behind the line of the ball, showing good technique, and the hat-trick averted there. But the fact remains that Sri Lanka now will find the going difficult. Too early jolts there. First it was Chamari Attapattu who really picked one up on the middle and leg stump, flicked it but found the fielder there on the boundary, and very next ball it was a case of the ball just stopping on the batter, and very clever bowling, I must say, from Fatima Sana. Seam up, here she is now bowling to Hasini, and Hasini has her work cut out. Once again, middle and leg stump line that she's employing, the restrictive line, and a single accrues, and that would mean that Sri Lanka are 6 for 2. But what a evening this is turning out for the Pakistan skipper Fatima Sana. First with the bat, that fighting knock which took Pakistan to a score of 130. Now with the ball, delivering in his in a very first over, first accounting for an opposite number, Chamari Attapattu, and immediately dismissing the next batter as well. So really, this is, even though she was troubled while batting, she was cramping, the heat and humidity taking a toll, but she really, to her credit, the Pakistan skipper really saw to it that Pakistan crossed the line as far as batting is concerned. 130 for 5 on a pitch where stroke making isn't the easiest of things. They have put up a score of 130 and now defending it well. Here's Fatima for the last time in her first over. This time driven towards mid-on, a quick single there to end over number 2, and Sri Lanka at the moment tottering 7 for 2. Vineet?
1: बैट का चेहरा बंद करना खतरे से खाली नहीं है इस पिच के ऊपर, और ये जो पिछली गेंद थी, हालांकि उस पर सिंगल ज़रूर दौड़ा है, लेकिन जिस तरह से क्लोजिंग द फेस ऑफ द बैट, बहुत देखने में सहज नज़र नहीं आई उस स्ट्रोक पर वो बैटर, और गेंद हवा में उड़ सकती थी, टॉप एच भी लग सकती थी, LBW बोल्ड भी हो सकती थी, तो तमाम संभावनाएँ बन रही थी। और वैसे भी इन पिचेस पे बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सीधे बल्ले से आपको खेलना है, क्रॉस बैट से अगर आप खेलेंगे या क्रॉस द लाइन अगर आप खेलेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कौन खेलेगा भारत के खिलाफ इतवार के फाइनल में? पाकिस्तान ने अच्छी वापसी की है मैच में, ज़ोरदार ढंग से कप्तान फातिमा सना ने 2 विकेट लेकर हैट्रिक पर वो थी। हसीनी और इमीशा इस समय मैदान पर हैं। धीमी गेंद, सादिया इकबाल की, बाएं हाथ की स्पिनर, राउंड विकेट बॉलिंग कर रही है, एज ऑफ द क्रीज से बिल्कुल कोने से उन्होंने ये गेंद की थी, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, और दाएं हाथ की इमीशा ने धीरे से पुश भर किया। लेकिन श्रीलंका पहले भी ऐसी स्थिति से कई बार उबर कर T20 मैच जीता है, इस टूर्नामेंट में भी जीता है। सादिया इकबाल की अगली गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर, लूप बनाती हुई गेंद मिडिल स्टंप पर, फ्लैटेड गेंद को धीरे से मोड़ भर दिया। अब पहले अपने सुरक्षित रखने हैं विकेट और फिर तेजी से रन बनाने हैं। हालांकि 131 का स्कोर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब तक अधाई में भी नहीं पहुंचा है स्कोर। अगली गेंद को रिवर्स कर दिया, घूमकर बैट को घुमाकर उल्टी दिशा में खेल दिया, और बैकवर्ड ऑफ पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है, और वहां पे उसको फील्ड किया गया उससे पहले, और पलट कर आके गेंद को उठाया जाए। 4 रन के लिए ये लुढ़क कर बाहर चली गई गेंद, फील्डर उससे पहले पहुंचे, फ्लाइटेड गेंद को उल्टा खेला और मिड विकेट की तरफ और स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ ना खेलकर पॉइंट की दिशा में स्वीप कर दिया उस गेंद को, रिवर्स स्वीप के अंदाज में, केवल बैट की स्थिति को चेंज किया, स्विच शॉट नहीं था, केवल रिवर्स स्वीप के अंदाज में, और पूरी स्वीप भी नहीं थी, आधी स्वीप आधी पैडल के अंदाज से डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन खेला इमीशा ने, उनका स्कोर हुआ 5, और श्रीलंका जो अपने कप्तान और उसके बाद एक खिलाड़ी को और खो चुके हैं, 11 रन 2 विकेट पर। इस बार बैकफुट पे गए, गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेकिन स्ट्रोक के पीछे जान नहीं थी, केवल धीरे से पुश भर किया। तो हसीनी खेलने के लिए आई हैं, विश्मी गुणरत्ने आज टीम में नहीं है, नहीं तो उनका स्लॉट है ये। असल में विश्मी गुणरत्ने पारी की शुरुआत करती थी, लेकिन इमीशा की वजह से, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इमीशा हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है, बढ़िया गेंद इस बीच लगभग डिफेंस को चीरती हुई स्टंप से चली ही तो गई थी ये गेंद, जैसे तैसे इमीशा ने टाइम नहीं कर पाई, लेकिन बैट से टकरा कर वो गेंद वापस लुढ़की ज़रूर है। लेकिन सादिया तरह तरह के सवाल प्रस्तुत कर रही हैं, उनके सामने प्रश्न पूछ रही हैं, बाध्य हैं बैटर के ध्यान से खेलें, और लगातार स्टंप्स की सीध में ये गेंदें

0: nobody misfeels purposefully rather, but that was a boundary which was gifted away. Here is Fatima Sana for the last time, the second over of hers and the fourth of the innings. And once again, just keeping the scoring down to a single. And that completes four overs. And as far as Sri Lanka concerned, they are chasing 131 for victory. And they are 23 for the loss of two wickets. So Vineet, at the moment, the Sri Lankans especially looking up to Imesha. If she can really keep one and going, and the other stroke players can rally around her, then we may still be in for a very interesting climax to the second semi-final of the Women's Asia Cup 2026.
1: मैदान पर ड्यू है, और जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब भी हमने ये देखा था, और भारतीय खिलाड़ी बता रहे थे कि बाद में उनको क्रॉस सीम का इस्तेमाल करना पड़ा था इस ड्यू को देखते हुए. उसको पहुंचा गया गेंद को कई बार. उमे हानी ऑफ स्पिनर हैं, उनको बुलाया है बॉलिंग करने के लिए. और हसीनी को ज़्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है. हमेशा ने अपनी क्वालिटी, अपनी क्लास दर्शा दी है. क्लासिकल अंदाज में बैटिंग करती हैं, बॉडी से अपने शरीर से ज़्यादा दूर नहीं खेलती हैं, और सीधे बल्ले का जहाँ तक हो वर्टिकल बैट का इस्तेमाल करती हैं, और टाइमिंग बेहतरीन होती है. और विकेट गिर गए हैं, दबाव है उन पे. श्रीलंका इस समय संघर्ष कर रहा है, उसके बाद भी इतनी सूझबूझ वो रख पा रही हैं, इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि प्लेसमेंट लाजवाब निकाल रही हैं. फील्डर्स के बीच में से गेंद को प्लेस बार बार कर रही हैं, देखते ही बनता है. बहुत ही कुशल तकनीक वाली खिलाड़ी हैं हमेशा दुलानी, 24 बरस मात्र की हैं. ये श्रीलंकाई टीम काफ़ी यंग टीम है. हालांकि तीन खिलाड़ी हैं 35 के आसपास की, बाकी सारे युवा खिलाड़ी हैं. 96 गेंदों पर 108 रनों की अभी भी आवश्यकता श्रीलंका को है. बड़ा समय ज़ाया कर रही हैं, क्योंकि मुनीबा जो विकेट के पीछे हैं वो मुतमईन नहीं हैं, और बार बार कप्तान सना को बता रही हैं कि यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है. फील्ड प्लेसमेंट में पाकिस्तान काफ़ी समय ले रहा है. सादिया इकबाल की जगह उमे हानी आई हैं बॉलिंग करने के लिए. स्पिनर रिप्लेसिंग स्पिनर, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क है और बॉलिंग में फ़र्क है. ऑफ स्पिनर हैं, लेकिन इस समय राइट हैंडर सामने हैं. पहली गेंद, और बढ़िया गेंद थी, पिछले पैर पे लगी, लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं. हालांकि अपील जरूर की उमे हानी ने वहां पर. ये पिच ऐसी है, इस पे टर्न तो है ही, और जरा सा आप गेंद को ज्यादा फिरकी देंगे तो ग्रिप होती है, और धीमी गेंद होती है तो ज्यादा ग्रिप होती है. पिछले पैर पे जाके लगी, लेकिन निश्चित रूप से वो लेग स्टंप के बाहर. अंपायर को ये देखना होता है कि गेंद अगर उसको बाधा नहीं पहुंचती तो कहां जाकर समाप्त होती. वो लेग स्टंप के बाहर जा रहे थे. अगली गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, फील्डर उस ओर दूर है, लॉन्ग आर्म में और मिड विकेट के बीच में से 4 रन. बेहतरीन स्ट्रोक इमिशा दुलानी के, क्या कहने हैं, बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन कर रही हैं. और कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा एफर्ट उनकी बैटिंग में नजर आ रहा हो. इतना समय है उनको स्ट्रोक्स खेलने के लिए. She has so much time to play her strokes. घुटने नीचे झुकाते हुए, जबकि ये चौथा चौका है इमेशा दुलानी का, यशवंत भाई बता रहे हैं. बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, और ऐसे कई स्ट्रोक्स की आवश्यकता है श्रीलंकाई दृष्टिकोण से. फील्ड अगर आप देखें तो इमेशा दुलानी के लिए पॉइंट है. थर्ड मैन थोड़ा स्क्वायर बाउंड्री लाइन पर है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है. एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में जो कि दायरे के अंदर है, एक और खिलाड़ी नज़दीक बुलाया जा रहा है, वो भी दायरे के अंदर नज़र आ रहा है. तो चार फील्डर तो साफ नज़र आ रहे हैं ऑफ साइड में. हमेशा दोलानी राइट हैंडर है, उनके लिए गेंद डिफ्लेक्ट होती है, एक एंगल डिलीवरी को ऑन साइड में मुड़ा, स्क्वायर लेग एम्पायर के सामने. आमतौर पर यहाँ फील्डर नहीं देखा जाता, वहाँ पर एक खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने उसको फील्ड कर लिया और सिंगल नहीं मिला. अच्छा, बड़ी कूल कस्टमर है हमेशा दोलानी, बड़ी शांत भाव से क्रिकेट खेलती हैं. पैरों की कैची बनाए इत्मीनान से प्रतीक्षा कर रही हैं अगली गेंद का. 93 गेंदे, 104 रन चाहिए श्रीलंका को फाइनल में प्रवेश करने के लिए. पाकिस्तान को चाहिए 8 विकेट, 27 रन 2 विकेट पर. पांचवें ओवर की तीसरी गेंद, और बिल्कुल रफ्तार नहीं थी उस गेंद के. उमे लानी की बड़ी अच्छी गेंद थी, और हानी की उस गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में. हालांकि दायरे के अंदर फील्डर था, शॉट फाइन पर केवल एक रन मिलेगा. और हमेशा दूसरे छोर पर आ गई हैं, अब लंबी लंबी सांसें लेके सोच रही हैं. एक खामोशी सी छाई है श्रीलंकाई खेमे में. कि किस तरह से अब ये पहाड़ जैसा स्कोर नजर आने लगा है, क्योंकि दो विकेट जल्दी गिर गए, 5 रन बने हैं अब तक इस ओवर में। 19 गेंदों पर इमिशा दुलानी ने 22 रन बनाए हैं। कप्तान दत्ता पत्तू का विकेट वो खो चुके हैं और उसके बाद संजना कविंदी को भी उन्होंने खो दिया है। बाउंड्री लाइन पर अत्ता पट्टू खेलने गई थी और बाउंड्री लाइन पर धर लिए गई, उनको ऊंचे स्ट्रोक पर लेग स्टंप में लगातार बॉलिंग कर रही थी। कप्तान सना उनकी ही गेंद पर शफल करते हुए लेग स्टंप पर पहले ही खड़ी हो गई थी, लगभग लीडिंग एज जा सकती थी इस अगली गेंद पर, स्टंप्स की सीध में की थी। बैट का सहारा बंद करना इस पिच पर बहुत खतरनाक है। उमेश हानि की इस गेंद को, गेंद हालांकि हवा में उठी नहीं, बाल बाल बची, लेकिन लीडिंग एज लेकर गेंद सामने एक्स्ट्रा कवर की तरफ चली गई थी। 28 रन 131 बनाने जीतने के लिए एक और एंगल डिलीवरी राउंड विकेट करते हुए इस गेंद को, उस डिलीवरी को उस कोण के साथ ही आगे बढ़ाते हुए दायरे के अंदर, इससे पहले विकेट के पीछे वो फील्ड हो, एक और सिंगल दौड़ लिया और इसके साथ ही 5वां ओवर समाप्त हो गया। 29 रन 2 विकेट पर श्रीलंका इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल, कौन खेलेगा, पाकिस्तान खेलेगा या श्रीलंका भारत के खिलाफ, बॉल बाय बॉल जारी रखेंगे इसके शो।
0: Thank you, Vineet. Yes, the big final coming up on Sunday, the day after tomorrow. India already in the final, beating Bangladesh by 40 runs last evening. Here it's a ding-dong battle, and look at the end of 5 overs. Both the scores have been identical, 29 for 2. So tells our veteran scorer, Yashwant Chadd, who along with our statistician, Jatin Sood, have been providing such interesting information from time to time, and their contribution goes a long way in making a broadcast interesting. 102 of 90 balls is what Sri Lanka required from here on, and they will look up to Imesha and Hasini, not to forget Harshita. Remember Harshita, it was Samara Vikra who really took Sri Lanka over the line in their league game against Bangladesh, the only game they really had to fight hard to win. Will they be able to once again do an encore over here? Because a score in excess of 130 we have seen right through this edition of the Women's Asia Cup has been very difficult to chase. Only 8 occasions when a team has scored more than 120 in this edition. India has done it the most times. This one on the middle and leg stump, and that's swept away. Good fielding on the boundary line will restrict the scoring to a couple of runs. And Hasini is on 3. Imesha, she holds the key. She's on 22. And the Pakistani fielders also look to be under some sort of pressure. The fielders especially, because there's a lot of pressure on them to restrict Sri Lanka, not to give any easy runs. Quite understandable, as the next ball has Hasini going onto the back foot, trying to stroke it through the covers for a run. That doesn't happen because it goes straight to the fielder there at point. And 100 of 87 balls is the equation. As here is once again, this time it's gone high. Will it go the distance? No, there's a fielder coming under it and the catch has been taken. So Sri Lanka lose their way, lose another wicket. It's Hasini who, in an attempt to really up the scoring, up the ante, accelerate, but the slowness of the pitch, playing a stroke a tad too early, and that was generously tossed up and trying to go over the top, really couldn't time it the way she would have liked, Vineet, and that's the end of Hasini there. Sri Lanka lose their 3rd wicket and in trouble at the moment.
1: सादिया इकबाल का एंड बदला था, क्योंकि साना ने अपने आप को स्पेल कर दिया, उनके 2 ओवर हो चुके थे। आयशा ने बेहतरीन कैच पकड़ा सादिया की गेंद पर, 3 रन बनाया 8 गेंदों पर, लेकिन कैप्टनसी बहुत अच्छी पाकिस्तान। साना ने बॉलिंग में चेंज करके सादिया को दूसरे स्पेल के लिए बुला लिया और वो दूसरे एंड बदला उनका फ़ायदा मिला। और सीम की क्या बेहतरीन पोजीशन रखती हैं वो, क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी। जितनी रेवोल्यूशंस आप गेंद पर देंगे इन पिचेस में, उतना आपको लाभ मिलेगा। और परेरा जो कि टीम में आज शामिल की गई थी विस्मी गुणरत्ने के स्थान पर, बहुत ज़्यादा मैचेस इस टूर्नामेंट में अब तक खेले नहीं हैं और इन पिचेस से वो अभ्यस्त नहीं है किशोर, और इसलिए परेशानी ज़्यादा है उनके लिए। और पूरा टूर्नामेंट ऐसा रहा है जिसमें बैटिंग करना बहुत मुश्किल रहा है।
0: Yes, and to this crisis situation walks in the savior for Sri Lanka against Bangladesh, Harshita Samarawikra. And can Harshida do an encore over here? And really, Sadia has bowled well, has varied her length. And this time, really foxing the batter to go for that stroke.

0: for Pakistan comes to an end. And Sri Lanka, at the end of that over, at the end of the power play, are 31 for 3.
1: Sadia Iqbal diggaj khiladi hain, aur agar aap dekhein to is season mein to behtareen pradarshan kar rahi hain. Usana ke baad, kaptan ke baad, unhone sabse zyada wicket liye hain, 22 wicket unhone liye hain. Gati mein bar bar parivartan kar deti hain, slower ball karti hain usi ek hi action se. Aur power play mein agar aap dekhein to 31 run aur 3 khiladi khoye. Sabse again zyada UAE ke khilaf tournament ke match mein, wo shuruaat mein hi UAE के खिलाफ श्रीलंका के मैच में 58 जतिन बता रहे बनाए थे एक विकेट कर. भारत के खिलाफ 31, इंडोनेशिया के खिलाफ 31. इस बीच पलटकर पीछे की ओर मुनीबा से वो गेंद रुकेगी नहीं, साइड स्क्रीन की ओर जा रही है विकेट के पीछे. एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है और केवल दो रन ही पूरे होंगे जब तक ये गेंद की थी. अच्छी फ्लाइटेड गेंद थी, उसको रिवर्स स्वीप करना चाहती थी ग्लव से लगकर, जबकि विकेट कीपर अपने आप को बचा रही थी वहां पर. ऐसे में ही इंजरीज हो जाती हैं. हालांकि हेलमेट पहन के खड़ी है मुनीबा वहाँ एज ए विकेट कीपर, लेकिन उनके सर के ऊपर से होकर चली गई और जाकर गेंद को उठाकर लाना पड़ा. तब तक खिलाड़ी दो रन ले चुके थे. बांग्लादेश के खिलाफ 29 बनाए थे पावर प्ले में, तो वो 58 जो यूएई के खिलाफ थे वही सर्वर ज़्यादा पावर प्ले में रन रहे हैं. जबकि कप्तान बात कर रही हूँ मैं हानी से, 58, 31, 29 और फिर आज 31, 3 विकेट पर. ये जतिन की गणित कहती है पावर प्ले में श्रीलंका का जहां तक सवाल है इस टूर्नामेंट में. उमेश हानी ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रही है ओवर द विकेट. स्टंप्स पर ये गेंद, गेंद हवा में उड़ गई है, ज्यादा लंबी नहीं गई, सीधे ऊपर. विकेट कीपर जब हो तो ये कैच छूटता नहीं है. रिटर्न क्रीज के आसपास बैटिंग वाले छोर पर सीधी ऊपर, जैसे एक गुब्बारा ऊपर जाता है, सीधी ऊपर चली गई गेंद. अपने आप को अवस्थित किया वहां पर मुनीबा ने, जो पिछली गेंद पर गफलत कर बैठी थी, अपने दस्तानों में उसको कैद कर लिया और श्रीलंका ने अपना चौथा खिलाड़ी खो दिया. कुछ समझ में नहीं आया. बल्ले को घुमाया था स्वीप के अंदाज में, एक घुटना नीचे टेक दिया था, बल्ले को लाया, फिर उसको खेलने की कोशिश की, टॉप एज सीधा तन गया, तीर की तरह ऊपर गेंद चली गई, उस पर कोई लंबाई नहीं स्ट्रोक की. और विकेट कीपर ने निश्चित ही आवाज लगाई होगी क्योंकि तीन खिलाड़ी झपट रहे थे उस गेंद की ओर, रुक गए ठिठके और विकेट कीपर ने काम पूरा किया. और इमिशा दुलानी का विकेट बहुत महंगा पड़ेगा श्रीलंका को, 21 रन बनाकर आउट हो गई इमिशा दुलानी.
0: Yes, what a crucial breakthrough. Pressure getting to the Sri Lankan batters, Vinit, no doubt whatsoever. And that the wicket of the skipper, Chamari Attappudu, what a lot depended, because she's such an experienced campaigner. And the way the Pakistani captain, her opposite number, really set her up. She was bowling that mid-length leg stump line, tempting Attappudu to go for that flick shot. And she had a fielder there right at the boundary who took that catch. And that initial wicket, really, that is what that set the rot. And Sri Lanka have been losing wickets at regular intervals and now find themselves in real trouble at 33 for 4.
1: Umeh Hani, safalta mili hai. Ab dekhen kya karte hain is gain par. Kavisha samna karengi unki gain ka. Oh, bahut badhiya gain. LBW ki appeal, zabardast dabav banaya ja raha hai. Bangladesh ki अंपायर हैं वहाँ पर बॉलर वाले छोर पर, मुंडी हिलाकर तुरंत मना कर दिया. और गति का परिवर्तन बहुत मायने रखता है. फ्लाइटेड गेंद थी जिस पे आउट हुई इमिशा दुलानी और विकेट कीपर ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया, उनको ज़्यादा हिलना भी नहीं पड़ा और अपने ग्लव्स में कैद कर लिया. इमिशा का कीमती विकेट मिल गया पाकिस्तान को. प्लेइंग डाउन द रॉन्ग लाइन, समझ में नहीं आ रहा. उमेश हानी की गेंदों को समझ नहीं पा रही हैं कविशा. हर्षिता और कविशा इस समय मैदान पर हैं. हर्षिता अभी खेलने के लिए आई हैं, कविशा कुछ समय से हैं. लेकिन ये हर्षिता जो हैं ये उप कप्तान हैं और आज सेमीफाइनल में खड़ा है श्रीलंका वो हर्षिता की वजह से, जिन्होंने शानदार बैटिंग की थी पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ और दो साझेदारियाँ निभाई थी, एक तो कौशिका के साथ विकेट कीपर के साथ और शिखा के साथ जो साझेदारी उनकी हुई थी. इस बीच ये गेंद को पैडल स्ट्रोक खेला अंतिम समय तक, बैट को काफ़ी आगे तक, लेकिन जिसके विकेट कीपर के एकदम करीब से गेंद पीछे फाइन लेग पर काफ़ी फाइन गेंद गई है, बाउंड्री लाइन के करीब से गेंद को उठाकर लाना पड़ेगा. लेकिन इस समय श्रीलंका के खिलाड़ी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है. जो रन बन गया वही सुरक्षित, उस पर ही मुतमईन है, उसी से ही संतोष रखा है. लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी, ये लग रहा था कि श्रीलंका के लिए रन बनाना इतना आसान नहीं होगा इस पिच पर, चाहे बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन 131 सब पहाड़ जैसा नजर आने लगा.

0: एक बोझ सा नजर आने लगा है। दो गेंदे शेष हैं, 33 रन, 33 for 4, 80 गेंदों पर 98 रनों की जरूरत है। स्पीड का वेरिएशन, द स्लोअर वन, लगातार स्पिनर्स कर रहे हैं और उसको समझ नहीं पा रहे। अब क्या है कि दो माइंड में, दोहरे मन में हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़ा स्कोर खेलें, ज़्यादा ओवर शेष नहीं रह जाएंगे, दबाव बढ़ेगा तो खेलना है, तो अटैकिंग स्ट्रोक। और जब गेंद पर रफ्तार ही नहीं है तो ज़्यादा ऊर्जा और ताकत डालनी पड़ेगी स्ट्रोक खेलने के लिए, जो बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर मिसटाइम कर रहे हैं अपने स्ट्रोक को और उससे आत्मविश्वास हिल रहा है श्रीलंकाई खिलाड़ियों का। अच्छा संघर्ष कर रही है पाकिस्तान, मजबूर कर रही है इस संघर्ष के लिए।
1: Yes, what a fight back it has been from Pakistan. Full marks to the ex-skipper, Fatima Sana, and to the team. Remember, they were tottering. 4 wickets had gone down early before Fatima Sana had a 40-run partnership for the 5th wicket and an unfinished partnership for the 6th wicket as well, took them to 130, and the captain led the way, really batting superbly, Fatima Sana. And now when the turn of them to come, Fatima Sana has once again been in the forefront, picking up 2 early wickets, and it's going to be a bowling change there. Nashra Sandhu, she comes on to bowl. Pakistan has got 3 left-arm spinners in their ranks. As here is bowling from over the wicket, Nashra, almost the block hole length that she's bowled, but this time it's been well dug out by Harshita. And we've been telling about Harshita, she opens the account, the fact that Sri Lanka find themselves in the semi-final is by no means due to the contribution of Harshita in that must-win game against Bangladesh. It was Harshita who really took them out of trouble and saw that Sri Lanka crossed the line in that game. Will they be able to do it here? Looks difficult. 36 of 4 in the 8th over. 7.1 overs gone by. 95 of 77 balls by T20 standards may not look that difficult, but what one has to consider is the nature of the pitch. Look at that. This is what Vinith was talking about, how they're slowing it up, just tossing that one up and coming in so slowly that she was already into that sweep shot by the ball, by the time the ball reached the batter, and asking an optimist, making an optimistic appeal there. No damage done, but Nashra Sandhu and all the Pakistani spinners have been taking pace off, bowling it as slow as possible. This time, slight width there, but that's a, there's a battery of fielders on the offside in the 25-yard cordon, and it's very difficult for the batters to penetrate that. Kavisha yet to open an account. Harshita is on one, and Sri Lanka 36 for 4. Here is Nashra Sandhu, and this time on the middle leg stump, helped along, and that's that. I got the feeling, came in with the arm, and she's just helped it along towards the fine leg region for a single. Kavisha, in fact, 2 runs that Kavisha got, couple of runs takes, makes her open her account. She's on 2, Harshita is on 1, but at the moment, the odds stacked against Sri Lanka. Of course, they have the batters can bail them out. Harshita has done it more than once. One saw her in that league game against Bangladesh. Can she repeat that performance? All of Sri Lanka would be hoping. This is almost a loopy full toss, flighted, generously flighted, and once again taken on the full, but not able to pierce that offside field. Good field placing, good captaincy by Fatima Sana, exerting all the pressure. And seeing to it that Sri Lanka has to fight for every run. This time, once again, a variation in length. This time, holding it back and pulled away. Slight misfield in the deep, but not much damage done. Pakistan's catching has also been good. They held on to their catches. Sri Lanka missed a couple of them, and that ends the over. So, the match really developing into a very interesting battle. At the moment, we need, it does look that Pakistan hold the cards. They are having the upper hand, but cricket is a funny game, more so the T20 variety. And you know better than me that this game is very often throws up surprises.
0: Nobody knows anything in the game of cricket, Kishore. So, ab apni technique mein parivartan kar rahe hain Sri Lankai khiladi, aur wo ye prayas kar rahe hain ki gend ko late khelein और बैट पे आते हुए देखें और बिल्कुल अंतिम समय पे फिर स्ट्रोक का फैसला करें, और इसी में एक दो सिंगल रन्स बने हैं उनके पास, नहीं तो रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वेरिएशन, नशा संधू ने 6 विकेट लिए थे पिछले मैच में, 7 रन देकर मात्र, बढ़िया बॉलर हैं, तेज बॉलर थी पिछले दिनों में, और इस बीच दोबारा पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी, क्या फातिमा साना को दोबारा क्रैम्प्स हो रहे हैं, फिजियो मैदान पर हैं, खिलाड़ी पसरी हुई है मैदान पर, खेल रुका हुआ है। हर्षिता जब तक हैं और अभी भी काफ़ी बैटिंग उनके पास मौजूद है, क्योंकि 2 साझेदारियाँ जतिन ने बताया, इस बीच ये गेंद उसको लॉफ्ट करने की कोशिश, 2-3 फील्डर्स वहाँ पर जपटे हैं लेकिन केवल रन ही ले पाएंगे, कोई कैच हो नहीं पाएगा। हर्षिता ने पहले तो नीलेश शेखा के साथ एक साझेदारी 41 गेंदों पर 38 रन की 6वें विकेट के लिए पिछले मैच में, और ये जो विकेट गिरे थे बाउंड्री लाइन पर अत्ता पत्तो आउट हुए थे, 7वें विकेट के लिए हर्षिता और कौशिनी विकेट कीपर के बीच में 18 गेंदों पर 33 रनों की हुई थी। श्रीलंका के खिलाड़ी साफ नज़र आ रहा है जिस तरह से आउट हुए, कि ना तो इस पिच की रफ्तार, ना इसकी उछाल और वेरिएशंस को वो समझ पा रहे हैं, और जो स्ट्रोक्स खेले हैं खेलना कहीं चाहते हैं, गेंद ऊपर हवा में ज़्यादा उठ रही है, और जब कभी भी एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है तो स्ट्रोक्स में डिस्टेंस नहीं आ पाया है, गेंद ऊपर ज़्यादा चली गई है और वो कैच में तब्दील हो गई है। उमेश हानी ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, ये भी चश्मा लगाकर क्रिकेट खेलती हैं अपना, और हालांकि बहुत बड़ा वाइजर है मुनीबा अली का विकेट कीपर का, वो भी चश्मा लगाती हैं, हेलमेट लगाकर खेल रही हैं। अगर किनारा दे दिया उस गेंद को, जानबूझ के गेंद को प्लेस कर दिया थर्ड मैन की तरफ, खिलाड़ी दौड़े चले जा रहे हैं उसके पीछे, लेकिन वो दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं और एक और रन के बारे में सोच रहे थे। अब इतना जोश आ गया है पाकिस्तानी टीम में कि एक स्ट्रोक के पीछे दो दो तीन तीन खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये जीत की महक आने लगी है। लेकिन श्रीलंका को कभी कम मत आंकिए, इस स्थिति से कई बार अपने आप को उबारा है उन्होंने, और हर्षिता उप कप्तान भी हैं टीम की, और ये जब बैटिंग करती हैं तो मुझे शशिकला श्रीवर्धने, वो महान खिलाड़ी श्रीलंका, बिल्कुल खेलने का अंदाज बहुत अच्छा था। इस बीच ये गेंद, अच्छी टर्न, अच्छी बाउंस, ऑफ स्टंप के बाहर बीट होते हुए विकेट कीपर की अच्छी गैदरिंग, जुड़कर खड़ी हुई थी मुबीना, और ये कमाल है इस पिच का, स्पिनर्स को कभी कभी टर्न इतना ज़्यादा मिलता है, और वो टर्न जब समाप्त होता है विकेट कीपर के पास तो उसको सीने के पास सर के ऊपर लेना पड़ता है, तो बीच बीच में बाउंस भी नज़र आता है इन पिचों में, और कई बार फाइन लेग पे खिलाड़ी कैच आउट हुए हैं। अत्तापत्तू इस टूर्नामेंट में ज़्यादा बैटर की हैसियत से विशेष कर नहीं पाई, और इस बार पिछली गेंद से सबक सीखा, अपने आप को अलग खींच लिया गेंद के लाइन से, बिल्कुल उसी तरह की गेंद थी लेकिन इस बार बाएँ हाथ के बैट्समैन के ऑफ स्टंप के और ज़्यादा बाहर थी, तो उसको देखा परखा और छोड़ दिया। हालांकि शुरू में ट्रिगर मूवमेंट ज़रूर बनाया था और उसके बाद हाथ कलाइयों को पीछे खींच कर अपने स्ट्रोक को चेक कर लें। 44 रन 4 विकेट पर, जीतने के लिए 131 रनों की ज़रूरत है। ये 9वें ओवर की अंतिम गेंद उमेश हानी की, और अंतिम समय में अपनी कलाइयों के लोच के सहारे धीरे से प्लेस भर करके 1 रन ले लिया, 1 रन और श्रीलंका के खाते में। 9 ओवर पूरे हुए, 45 रन 4 विकेट पर, अब 66 गेंदों पर 86 रन चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के इस एशिया कप में।
1: यस विनीत, द गोइंग लुक्स डिफिकल्ट फॉर श्रीलंका, एज वी आर सेइंग नथिंग कैन बी सेड इन द गेम ऑफ क्रिकेट, एस्पेशली इन द T20 मैचेस, वी सीन सो मेनी अपसेट, सो मेनी थिंग्स गोइंग क्वाइट गोइंग अगेंस्ट द प्रेडिक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड दिस गेम कैन मेक अस लुक ऑल लुक वेरी सिली, एज द ग्रेट राइटर CLR James once said, what do they know of cricket that only cricket knows? So that is what this game is all about. Pakistan 49 for 3. Yes, Vinit, beyond the boundary, and what a fine writer, some very good cricket is a game which has really been blessed with so much of literature. No other game I think would have had so many books written on it. Getting back to the Dubai International Stadium, here it's going to be Nashra Sandhu bowling her second over and the 10th of the innings, almost at the halfway stage. And once again, we can see the Pakistan fielders. They are all keyed up. And that is what what wickets can do to your confidence, can do to your energy levels. It's very hot and humid. But the Pakistani bowlers and the fielders really complimenting them well. The next ball is outside the off stump, and all that Harshita does is to give that ball direction. Plays it very well, plays it very

0: late over there, almost picking that ball up from nearer off stump. And that would mean Kavisha, in fact, was that. Harshita is now back on strike. And her best figures, Nashira Sandhu, 6 for 7 versus Hong Kong, China. And really, as far as these players are concerned, so Sri Lanka, just a quick bit of statistics passed on by our statistician Jatin Sood. Pakistan and Sri Lanka have played against each other 5 times in the Asia Cup as far as the T20s go. And Pakistan have won 3, Sri Lanka twice. And this one is uppish, but safely over the fielder's head. And it goes for a welcome boundary. Kavisha it was. That one was tossed up. And Nashra isn't very happy. She thought that should have been caught. But to be fair to the fielder there, what Kavisha did well is she placed it well. Placed it over the fielder's head. There was no way that the fielder had mid off. Had she been deeper, maybe it would have gone to hand. But one can realize the unhappiness of the bowler, as this time once again good variation, tossing this one up, and that's driven on the onside for a single. And we've been talking about how the initial editions of the Women's Asia Cup was played in the ODI format. I think that was until 2016, and after that, in fact from 2016 it's been in the T20 format. That's when Sri Lanka beat Pakistan beat Sri Lanka by 8 wickets in the 2016 edition, and this time swept well but finds a fielder there. A single all the same takes Kavisha to 9, Harshita is on 8, and Sri Lanka go past 52 for 4 now. They are almost nearing the halfway stage, 9.5 overs. Then again, as to go with the statistics given by Jatin Sood, 2018 edition, Pakistan again won by 23 runs, but and true also in the 2022 edition in Bangladesh, Pakistan won by 5 wickets. But the last two times that these two teams have met in the Asia Cup, in T20 games, it has been Sri Lanka who have won, as the last ball of that over, single accrues, and Sri Lanka at the halfway stage after 10 overs are 53 for 4, still requiring 78 runs of the remaining 60 deliveries. Your guess is as good as mine, Vineet.
1: Drinks maidan par hain, 10 over ka khel pura ho chuka hai, aur Pakistan ka over rate bahut zyada kharab hai. फील्ड प्लेसमेंट में काफ़ी समय ज़ाया कर रही हैं फातिमा सना उनकी कप्तान, लेकिन बहरहाल हाफ वे स्टेज और आस्किंग रेट यहां से 7.7 के आसपास का है, और 60 गेंदों पर ये जो रन बचे हुए 131 कुल मिलाकर बनाने हैं वो अभी भी बन सकते हैं. और कुछ अगर हर्षिता आउट नहीं हो एक छोर पर खड़ी रहें तो अभी नीलशिखा आना शेष हैं. कौशन ही अच्छी बैटिंग कर लेती हैं, और पिछले मैच में लगभग इसी स्थिति से श्रीलंका जीत की ओर अब बढ़ गई थी, और आज सेमीफाइनल में वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ. तो अभी ये संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा. पाकिस्तान को एक और विकेट तुरंत उसकी आवश्यकता है, तब फिर दबाव बनेगा. और अभी भी खेल बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, तो कुछ दिलचस्प क्रिकेट अभी भी देखने को मिल सकता है. लेकिन हर्षिता किशोर बिल्कुल लेट खेल रही हैं, बिल्कुल अंतिम समय पे बैट पर आती हुई देख रही हैं गेंदों को और फिर प्लेस कर रही हैं. और मैं जो वो कह रहा था, शशिकला श्रीवर्धने पूर्व कप्तान हैं, इनके जो स्ट्रोक्स खेलने का अंदाज है वो उनसे बहुत कुछ मिल खाता है. हालांकि लेफ्ट और राइट हैंडर का फ़र्क है, वो राइट हैंडर थी, ये लेफ्ट हैंडर है, लेकिन देखते ही बनता है, जो देखता है वो इनको याद करता है कि श्रीलंका का ऐसा एक और खिलाड़ी था. तो वो हर्षिता है, इनमें बहुत क्षमता है, और अभी उम्र कुछ भी नहीं है, और वाइस कैप्टन है, और अत्तापत्तू के बाद यही कप्तान होंगी, तो इनसे बहुत उम्मीदें.
0: यस, लॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर. शी एज यू वेरी राइटली सेड क्वाइट यंग, एंड शी वुड डेफिनेटली बी टेकिंग ओवर फ्रॉम चमरी अत्तापत्तू व्हेनेवर शी डिसाइड्स टू हैंग अ बूट्स. एंड वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, वेरी वेरी ईजी ऑन द आई एज दे से टू वॉच हर बैट. एंड शी वॉज रियली इंस्ट्रूमेंटल इन bringing Sri Lanka thus far in the 2026 edition. That game against Bangladesh, they were in a bit of trouble before Harshita pulled them out, pulled the chestnuts out of the fire, so to say. And the whole of Sri Lanka, the Sri Lankan fans would be hoping that she does an encore over here and take them to the final. Then it looks difficult. The odds are stacked against them. But you never know with someone like Harshita. And you said about Pakistan wanting a wicket. And if they can get the wicket of Harshita, that would be a real bonus, Vineet.
1: So, drinks maidan se bahar gayi hain. Wahab Riaz, mukhya coach hai, head coach hai Pakistan ke. Aur lagatar huddle mein, jabki khiladiyon mein paseena pahunch rahe hain aur pani ki botlon se apne aap ko wapas tarotaza karne ki koshish kar rahe hain. Udhar Jamie Siddons, jo ki Sri Lanka ke coach hain, रुमेश रत्नायके की जगह उन्होंने संभाली है. दोनों को बहुत कुछ कहने को है और खिलाड़ी चुपचाप दोनों अपने कोचेस को सुन रहे हैं. तो यहाँ पर ये शतरंज की चाल शुरू होने वाली है. क्या पाकिस्तान एक विकेट और लेके दबाव बनाएगा या श्रीलंका इस खतरे के भंवर में जो फंस गई है उसमें से वो बाहर आ सके फिर तैरना शुरू कर सकेगा. तुबा हसन शायद उस मंत्रणा जो हुई उसके बाद तुबा हसन 51 मैच 33 विकेट 6/27 6 विकेट लिए उन्होंने 27 रन देकर उनका बेहतरीन प्रदर्शन है. पहले खिलाड़ी से दायरे के अंदर रुके नहीं बाउंड्री लाइन के करीब उसको फील्ड किया गया लेकिन एक रन और मिल गया. तो 59 गेंदे 59 बॉल्स 77 रन दिलचस्प मुकाबला. उमे हानी बॉलिंग करेंगी ऑफ स्पिनर हैं और मैंने जैसा कि क्या पाकिस्तान बहुत समय ले रहा है फील्ड प्लेसमेंट के लिए और इससे ओवर रेट कम हो रहा है. वैसे भी पहली इनिंग्स भी लेट खत्म हुई थी इस बीच अगली गेंद को स्वीप कर दिया है. गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जा रही है तेजी से दूर से आते हुए फील्डर ने स्लाइड किया कुछ नहीं कर सकेंगे. 4 रन प्रयास अच्छा था दूर से दौड़कर आई और इस 4 रनों से इस चौके से हौसला बढ़ेगा श्रीलंकाई खिलाड़ियों का. लेफ्ट हैंडर ने उसको खेला था और उसको पूरी तरह से स्वीप करने का और अंतिम समय तक ये बैट को आगे बढ़ाती रही थी डाइव लगा के उसको रोकने का प्रयास अवश्य किया था. पसर गई थी अपनी लंबाई का फ़ायदा भी उठाने का कोशिश किया था लेकिन उससे पहले जो नन्हे नन्हे विज्ञापन उस बाउंड्री रोप के ऊपर हैं उससे जाके गेंद टकरा गई. 4 रन 7वां चौका पारी का. हर्षिता इसके साथ ही 12 लेफ्ट हैंडर हैं पसीने से तर बतर 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रही है. दोनों खिलाड़ियों ने कविशा ने भी 13 गेंदें खेल ली हैं. ये 11वां ओवर है 58 रन 4 विकेट पर ड्राइव किया सीधे बल्ले से खेलें आप इस पिच में सुरक्षित नजर आते हैं. लॉन्ग ऑफ पे गेंद को फील्ड किया नशरा संधु ने जो कि एक बहुत ऊंचे जाते हुए शॉट पर अपने फील्डर से खफा हो रही थी कि आपने कैच पकड़ने का प्रयास नहीं किया ऊपर उछलना चाहिए था. मैंने कहा जितना कद था फील्डर का उससे वो दुगना भी ऊपर उछल जाती तो भी उस गेंद को नहीं पकड़ सकती. कभी कभी बॉलर ज्यादा जोश में आ जाते हैं. इस बीच गेंद शॉर्ट गेंद उसको पुल करने का प्रयास किया पैरों को फैला लिया खेला उसको नशा संधू के पास एक बार फिर गेंद जा रही है उनके हाथों पर लगी है और ड्यू भी मैदान पर बहुत ज्यादा है. अब ज़्यादातर खिलाड़ियों के पास एक छोटा सा नैपकिन नज़र आ रहा है जो उन्होंने फंसा रखा है अपने कपड़ों में और जब गेंद उनके पास आती है अंपायर के पास एक कपड़ा मौजूद है तो अच्छी खासी ड्यू मैदान पर नज़र आ रही है और ऐसे में फिर गेंद को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे बांग्लादेश में ग्राहम स्वान स्पिनर इंग्लैंड के कहा था कि इट्स अ बार ऑफ सोप. इस बीच ये गेंद को खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन के गेंद जा रही है धीमे धीमे जा रही है. दो फील्डर उस ओर दौड़ रहे हैं लेकिन एक और रन के लिए पलट कर आ रहे हैं. बाउंड्री लाइन के बाहर तो नहीं जा पाएगी ये गेंद लेकिन उस पर प्रयास करके 3rd रन ले लिया है दोनों खिलाड़ियों ने. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स खफा नजर आ रही है पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना. आस्किंग रेट क्योंकि बढ़ गया है उसको और नहीं बढ़ना देना चाहते हैं लेकिन जब वो टाइम करती हैं ना बहुत अच्छा लगता है. गेंद उनके शरीर से बहुत दूर जा रही थी काफ़ी दूर रह गई थी फिर पंजों पर ऊपर उछल के बैट को आगे फैलाकर बिल्कुल पॉपिंग क्रीज की सीध में कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला था उस स्ट्रोक को. महंगा ओवर साबित हो रहा है पाकिस्तान की दृष्टि से. इस बार खेल दिया ऑफ साइड में इस बार कविशा ने खेला है गेंद स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है. इसको देखना चाहेंगे तीसरे अंपायर से सुनिश्चित करना चाहेंगे. वहां पर डाइव लगाते हुए रोकने की कोशिश जरूर की थी लेकिन ऐसा लगता है बॉल क्या डिफ्लेक्ट हो गई थी बाउंड्री लाइन के करीब. अंपायर बात कर रहे हैं पहले स्क्वायर अंपायर से पूछ रहे हैं. सना बार बार खफा नजर आ रही है ये दोबारा देखने का प्रयास किया बाउंड्री चेक हाथों से डाइव लगा के रोकने की कोशिश की क्या शरीर

0: से जब टच हो रही थी तो वो बाउंड्री पे वो खुद थी और बॉल से स्पर्श उनके शरीर का हुआ था, तो ये चार रन हो जाएगा।
1: Yes, really, once the heart goes out to the fielder there, she tried her level best, but unfortunately at the last moment when she crossed the boundary, the ball had touched her. So in all probability that would be given as a boundary. Yes, the confirmation comes in, and Kavisha also taking a leaf out of Harshita's book, playing it very late. And the point that you made, Vineet, of the dew now coming in quite heavily, that would quite work in Sri Lanka's favour. Look at the comparative stage as well. After 11 overs, Pakistan were 53 for 4 and Sri Lanka ahead on that count at 67 for 4.
0: और वो ईमान फातिमा थी जिन्होंने बेहतरीन प्रयास किया था, थोड़ा भाग्य साथ देता तो चार रन बचा सकती थी।
1: बट फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द फील्डर देयर। दिस इज द पार्टनरशिप विच पाकिस्तान वुड लाइक टू ब्रेक, हर्षिता एंड कविशा, द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन डूइंग द जॉब फॉर श्रीलंका आफ्टर दे वर रॉक्ड अर्ली। एंड इट्स गोइंग टू बी नश्रा संधु बॉलिंग अ थर्ड ओवर, द लेफ्ट आर्म स्पिनर। And what is good to see and what we've been describing is also how late these two batters are playing. They're waiting for it, playing it into the gaps. Even the ones that they've played into the third man region has been almost, once we saw Kavisha almost playing that stroke when the ball was around the off stump, very near to her off stump. Shows how good they are placing. They know that the ball is coming in slowly, so they're waiting for it, not hurrying with their strokes. And this time, and there have been a few deliveries which has had the extra bounce as well. So the pitch, not by any stretch of imagination, easy for batting. And as the tournament has gone on, we've seen the ball dominating the bat. And we've been discussing about this a while earlier as well. It's not all, this time she was beaten. But fortunately, maybe a bit of bat onto that one. Otherwise, had she missed it, it would have been easy chance for Munira behind the stumps. There you see, drawing her forward, and at the last moment, was that a chance in a way? Because, it happened, all happened so fast, Munira can't really be very harsh on her.
0: और दायरे के अंदर ही गेंद विकेट के पीछे गई थी, लेकिन इतनी दूर से बैकअप कर रही थी, क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एंड नॉन स्ट्राइकर की दाद देनी होगी।
1: Yes, these two batters are complementing each other very well. This time, once to the pitch of that one was Harshita, the left-hander, Harshita Samaravikra. She goes on to 18. Kavisha is on 17 and Sri Lanka are 70 for 4. This match is getting interesting now. Now, they require 61 of 50 balls. So, what this partnership has done is it's eased the pressure on Sri Lanka, and it's also made them come see the difference between the runs required and the balls remaining. That's now narrowed down, and therein holds the key. Pakistan, the only way now they can make a comeback is by picking up wickets, picking up especially the wicket of Harshita and Kavisha, two youngsters. Harshita Samaravikra, the vice captain of Sri Lanka, and someone who is no stranger to batting in difficult situation. This has gone up. Will it go to hand? No, it falls in that area where there were no fielders. Fatima Sana, the skipper of Pakistan, has to really make some distance. But a safe shot in the end, though she didn't time it well. Kavisha, that was Kavisha on 18. Both the batters on 18 apiece. 60 of 49 balls. Sri Lanka fighting with their backs to the wall. And all marks to this pair of Harshita and Kavisha, the way they've gone about their task. 60 of 49 balls. Nashra Sandhu, the left-arm spinner, once again tosses this one up and down the track, batting very confidently. Harshita, she's so stylish, so easy on the eye, so pleasing to watch. Ends the over, and Sri Lanka slowly but surely now, Vineet, really progressing towards that target of 131.
0: एक समय था जब इन दोनों ने 12 गेंदों पे 22 रन बना लिए थे, और इसी से आस्किंग रेट वो कम करती चली जा रही हैं, और इसका श्रेय सारा जाता है हर्षिता को। जब वो नॉन स्ट्राइकर होती हैं तो इतने आगे तक वो पहले से ही मन बना लेती हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत शानदार है कि उस पर सिंगल हो सकता है, और जहाँ कोई और टीम होती तो एक भी रन ना लेती, वहाँ वो सिंगल्स लेके अपनी स्ट्राइक को रोटेट कर रही हैं और ये जो एक बोझ हो गया है, जो रन रेट ज़्यादा हो गया है, आस्किंग रेट बढ़ गया है, उसको कम करने का प्रयास हर्षिता बखूबी कर रही हैं। इस समय वो वही स्ट्राइक लेंगी, अगली गेंद को पैरों को फैलाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर स्विंग कर दिया गेंद को दोनों पैरों के बीच में जगह, और उसके बाद उसको पीछे से बैट को लाकर घुमाते हुए खेल दिया, और इससे पहले कि स्क्वायर ऑफ द विकेट उसको फील किया जाए, हर्षिता अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चली गई हैं। 73 रन 4 विकेट पर, जीतने के लिए बनाने 131, 47 गेंदें 58 रन, कविशा 18 गेंदों पर 18 रन, और इस बार बैकफुट पर जाके स्क्वायर कट के अंदाज में खेला, लेकिन पॉइंट पर फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। दोनों की साझेदारी अच्छी हो रही है यशवंत भाई, बहुत बढ़िया साझेदारी है, और अब 46 गेंदों पर 58 रनों की ज़रूरत है। ऑफ साइड में थर्ड मैन अंदर है, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट अंदर है, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ सब अंदर है, इस बीच ये गेंद और इसको ड्राइव किया, एक फील्डर जो दायरे के एकदम करीब आके उसको फील्ड करता हुआ नजर आ रहा है, एक रन लेने से नहीं रोक सका। 37 गेंदों पर 41 रन की साझेदारी अब तक हो चुकी है हर्षिता और कविशा, सोने में तोल लीजिए ऐसी साझेदारी। लगातार 7 रन पर आते आते तो 2 विकेट गिर गए थे। हर्षिता ने जो रन बनाए हैं, बैटिंग नहीं आई, यूएई के खिलाफ, इंडोनेशिया के खिलाफ 5, बांग्लादेश के खिलाफ 58, और पिछले मैच में भी उन्होंने 8 शतक बनाया। इस बीच ये गेंद और घूम कर खेल दिया बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, और इससे पहले कि फील्ड ऑफ स्ट्रोक, ये सिंगल्स जो इस समय ले रहे हैं श्रीलंका के खिलाड़ी, ये महत्वपूर्ण साबित होंगे और ये जीत और हार का फैसला करेंगे कि क्या होगा इस मैच में, कौन खेलेगा फाइनल्स एशिया कप 2026 का। ये 10वां फाइनल होगा, 2012 के बाद से ये T20 फॉर्मेट आ गया है, भारत 7 बार जीता है, सबसे अधिक बार, और लगातार मिडल और लेग स्टंप की गेंद को स्वीप के अंदाज में अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे करते हुए, नीचे झुककर, लगभग नीचे बैठकर ये स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, ये समझ लीजिए आप, और जिससे कि ये नीची रहती हुई गेंद और जो ग्रिप हो रही हैं, और इसको को आड़े बैट से, जिस तरह से आप वर्टिकल बैट से बाउंस कवर करते हैं, जो टर्न होती है और जो धीमी टर्न होती है उसको आड़े बैट से आप कवर करते हैं, बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं दो खिलाड़ी श्रीलंका के। इस बीच इसको खेला ओवर द टॉप, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया, और गेंद जा रही है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, 4 रन, बहुत सख्त जरूरत थी श्रीलंका को, अच्छा ओवर, 4 सिंगल और 1 चौका, 1 डॉट बॉल, और इसके साथ ही ओवर समाप्त हो गया।
1: वेल रियली श्रीलंका, हर्षिता एंड कविशा having their task cut out when they began, they are up to the challenge, and what a fine partnership this is turning out to be. When Sri Lanka lost their 4th wicket, it did seem that the writing was on the wall, Pakistan bowlers were on top, but these two youngsters, Harshita Samarawickra, the vice captain, and really giving her ample support is Kavisha, and look at the difference now as far as the scoring rate goes. 51 of 42 balls, and with 6 wickets in hand, should not be difficult for Sri Lanka, barring the glorious uncertainties of this great game meet. So really, they require a wicket. Ayesha Zafar now being pressed into operation. 11 wickets in 47 games. She's best of 3 for 13. The primarily a batter, and Ayesha, can she provide the breakthrough here? Many a time captains resort to this tactic, bring on a non-regular bowler, but starts off with one short and wide. She is really fortunate that the fielder at gully was really saw to it that the ball didn't pass her. And really, as far as the two batters are concerned, Harshita and Kavisha, they have really batted superbly, coming in at a difficult time. These two partnership of 48 of 41 balls, and that is what has turned this game around. Sri Lanka, the reigning champions, looking down the barrel at one stage, but this 48 run partnership between Harshita and Kavisha has seen to it that they are making a fist of it, and they need to carry on. Harshita and Kavisha, Harshita is no stranger, as I said, to a situation like this. She did it in that game against Bangladesh, a game which went the distance. This too seems to be going that way. Ayesha Zafar, this time once again doing well, is Harshita. She's just waiting for that ball, last moment And once again, look at that.

0: The ball also slowly going towards the boundary, and what good running. Excellent running between the wickets by Harshita and Kavisha. Three runs, the second time in a couple of overs they have done it, Vineet.
1: और कितना शरीर पे जोर पड़ रहा है, आप देखिए कि बैठ गई हैं अब. लेकिन जैसा कि आपने बताया, सूझबूझ भरी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रही हैं. इसमें एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक जना बुलाए तो दूसरे को दौड़ना ज़रूरी है, और ये अच्छा तालमेल नज़र आ रहा है.
0: Yes, what good understanding. That is what it's all about, communication when it comes to running between the wickets. And these two youngsters seems to have it in ample measure. So 51, the partnership going past 50 now. 51 and 47 of 40 balls is what they require at this stage. So hydration being provided to the Sri Lankan batters. The conditions are very taxing. We saw that during the Pakistan innings as well, Vineet, we spoke about it. And the over rate, it's a matter of concern, especially when Sri Lanka were bowling also, they were behind the clock. More so Pakistan, they have taken a lot of time bowling their overs. We will go into overtime. They may be penalized as well, but of course the match referee will take into account stoppages for various reasons. Even the umpires are having a bit of a drinks break there. It's an unscheduled drinks break, but of course the umpires also know that the conditions are quite taxing, and they time and again make some leeway. There's also a fielder who seems to be attended to by the physio, the Pakistan physio out there, and that is what helped, gave an opportunity for the other players also to have a drink over there, an unscheduled drinks break. 47 of 40 balls. Ayesha, who's bowled her two deliveries in this over, has conceded four runs. Ayesha Zafar, and she will be bowling to the right-handed Kavisha. Right arm over the wicket, and once again bowling it so very slowly. And Kavisha, there she is, saying, trying to just shadow stroke that one. How she would have liked to play that ball. But look at that ring of fielder, starting with the fielder at backward point. There's one forward of point, one at extra cover on the 25-yard circle. And this time a single on the onside pulls it down towards the wide mid-wicket. And one can see Kavisha and Harshita, they've been also running the singles so frequently. So it's putting some sort of pressure on the body. We saw it when Pakistan were batting also. Fatima Sana was cramping so much towards the end of her innings. This time, once again, Harshita showing a class there, goes deep into her crease as she turns it around the corner. Look at the running between the wickets. There's a collision there between the batter and the wicket keeper. I hope both of them are all right. It is Harshita who gets up. Which says that last ball with the spin that was turned around the corner. And look at that, it's Harshita who called Kavisha for that second run and bumped into the wicketkeeper. Muniba, she was also looking the other way. She was waiting for her to collect that ball. But fortunately, doesn't seem any damage to neither the wicketkeeper nor the batter. Though we're seeing now the Sri Lankan physio. In fact, she's attending to Kavisha, not to Harshita. And really, the conditions extremely taxing for the players at the Dubai International.
1: I think concussion test. They are asking questions. The physio is asking questions, checking. Ginti boliye, ungli ko dekhiye, aankhein chal rahi hai, nahi chal rahi hai. It's a set of questions. It's very interesting, Kishore. Ki jab concussion test hota hai, jab aap gir jate hain, to helmet ragad kha jata hai sar se. तो कॉन्कशन टेस्ट हुआ उसमें, आपका नाम क्या है, गिनती बोलिए, 9 से 10 से उल्टी गिनती बोलिए, इस तरीके के सवाल किए जाते हैं जो कि हमको नज़र आ रहा है. और एक्चुअली में तो हर्षिता हैं, हर्षिता से ही पूछा जा रहा है ये. और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आपको ठीक दिख रहा है, नहीं तो आप और गंभीर चोट खा सकते हैं.
0: Yeah, it's a very valid point you make, Vineet. Those set of questions, and actually it's always the physio who goes on to the field, and those set of questions which determines if your thinking all right, there's no effect of the concussion. It's known as the concussion test. And for now, Harshita is past that one. She's on 30. Her presence is so much required for Sri Lanka. 44 of 37 balls. Last ball of this over as Harshita fluently driving it on towards the deep mid off field. A single across to end over number 14. And Sri Lanka now on course to that target of 131. 88 for 4, Vineet.
1: कविशा जब बॉलिंग कर रही थी तो वो भी ऑफ स्पिन और लेग स्पिन कर रही थी और यहाँ पर ये इस तरीके की बॉलिंग हो रही है जो ऑफ और लेग स्पिन दोनों करने का प्रयास कर रही हैं बॉलर्स और ऊपर से ड्यू फैक्टर है गेंद गिरी है तो बहुत लूपी डिलीवरीज फुल टॉस डिलीवरीज आ रही हैं आयशा जफर जिस तरह से बॉलिंग कर रही है वो भी ऑफ और लेग स्पिन करने की कोशिश कर रही हैं तो वो नियंत्रण की कमी नज़र आ रही है और इससे श्रीलंका को थोड़ा फ़ायदा तो हो ही रहा है लेकिन समर्पण कमाल का है जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने बैटिंग की है अप्लाई किया है अपने आप को वो देखते ही बनता है उमेहानी बॉलिंग करेंगी ऑफ ब्रेक बॉलर हैं हर्षिता 31 24 गेंदों पर कविशा 22 24 गेंदों पर 88 चार विकेट पर 14 ओवर 6 अंतिम ओवर्स अब किए जाएंगे राउंड विकेट ये गेंद एज ऑफ द क्रीज से खेला एक रन पहला रन पहले बहुत तेज दौड़ती हैं लेकिन इस समय दूसरे की गुंजाइश नहीं है रनिंग बिटवीन विकेट्स ने पासा पलट दिया पाकिस्तान के ऊपर श्रीलंका ने इतनी लाजवाब हर्षिता उसमें अग्रणी रही है कविशा ने भरपूर साथ दिया है और अब ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को मैदान से बाहर लिया जा रहा है उनको दो बार क्रैम्प्स के लिए उपचार दिया जा चुका है मैदान पर और फिर अंपायर्स ने कहा आप इनको बाहर ले जाइए कुछ टाइम के लिए और वहाँ आप इनको मदद आप इनकी करिए नहीं तो खेल बहुत धीमा चला है जब से पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आया है फ्लाइटेड गेंद को सीधे बल्ले से खेला सामने की ओर एक ऐसी फील्ड जमाई गई है कवर पीछे एक्स्ट्रा कवर थोड़ा आगे की तरफ आमतौर पर मैं तो इन एंड आउट फील्ड जिस दायरे के अंदर ही इन और आउट फील्ड जमाई गई है पैक्ड ऑफ साइड फील्ड और इसीलिए लेग साइड में पलट कर प्लेस करने का प्रयास ये खिलाड़ी करते रहे हैं 32 पे हर्षिता कविशा 22 जीतने के लिए 131 रन बनाने हैं यानी कि अब 34 गेंदों पर 42 रन बनाने हैं 34 बॉल्स 42 रन 89 फॉर 4 और इस बार खेल दिया बेहतरीन स्ट्रोक और उस ओर अगर फील्डर भी होगा तो नहीं रोक पाएगा शॉट ऑफ द डे 4 रन और खुशी की लहर दौड़ गई है श्रीलंकाई खेमे में और उनके समर्थकों के क्या कहने मचल रहे हैं श्रीलंका का फ्लैग लेकर एक कदम बाहर निकाला घुटने को पीछे वाले को मोड़कर थोड़ा सा अपने आप को नीचे किया बैट को गेंद के नीचे लाने में सफल रही बहुत ही आकर्षक सूझबूझ भरा स्ट्रोक खेल दिया उसको 4 रनों के लिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 रन है ये कविशा ही थी जो इस समय बैटिंग कर रही हैं और इस बार उन्होंने फिर स्वीप में उसको खेला था लेकिन ऐसी स्वीप की कि कलाइयों को घुमाकर गेंद को जमीन पर रखा जिन्होंने विनिंग हिट लगाई थी 2024 में जब भारत को हराया था एशिया कप फाइनल में श्रीलंका ने तब कविशा ही ने वो स्ट्रोक खेला था विनिंग रन बनाया था और श्रीलंका 8 विकेट से जीता था हर्षिता ने 69 और कविशा ने 30 रन नाबाद बनाए थे और इन दोनों ने 73 रन जोड़े थे तीसरे विकेट के लिए और वो ही जोड़ी मैदान पर है जो पाठ भारत को पढ़ाया तो वो आज पाकिस्तान को पढ़ाएंगे क्या ये दोनों खिलाड़ी देखिए क्या सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं पूरा गणित निकाल कर मैंने मांगा जतिन से और जतिन ने बखूबी निकाला
2: नमस्कार दिया। आकाशवाणी समाचार के साथ में विनय सक्सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक आर्थिक रक्षा ऊर्जा अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रति की समीक्षा की दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान

0: राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The pendulum has swung from one side to another. And finally, which of these two teams crosses the line, meets India on the final day after tomorrow on Sunday? It's really very difficult to predict at this stage.
1: दो ओवर में 13 रन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पिच में थोड़ी दुश्वारियां ज़्यादा हैं जो कि पूरे टूर्नामेंट में हम देखते रहे हैं। बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ है, अब स्ट्रोक्स को टाइम करना मुश्किल हो जाता है, और फिर आप बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं तो गेंद हवा में उड़ जाती है, टॉप एज लग जाती है, तो इतना आसान भी नहीं है। साना का बेस्ट विश्लेषण T20 कैरियर का, और 22 रन देकर चार खिलाड़ी उन्होंने आज आउट किए हैं। पहले चार खिलाड़ी 26 रन देकर आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में 6 अगस्त 2025 को किए थे। जतिन कोई बात चूकते नहीं है, निकाल के दे दिया बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस फॉर पाकिस्तान कैप्टन फातिमा साना। मिसफील्ड दायरे के अंदर आसानी के साथ दूसरे रन के लिए पलट कर आएंगे। श्रीलंकाई खिलाड़ी दौड़ने में बहुत तेज हैं, क्या दूसरे रन पूरा हो जाएगा आसानी के साथ कि नहीं होगा? 11 गेंदें, जबकि इस गेंद को बिल्कुल पॉपिंग क्रीज की सीध में ऑन साइड में खेला था, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई खिलाड़ी से उमे हानी से, और उमे हानी जब तक वो करें जब तक दूसरे रन के बारे में सोच रही थी, लेकिन अभी भी 11 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत है। ये 19वें ओवर की पहली गेंद थी, 119 6 विकेट पर, जीतने के लिए 131 रन बनाने थे। घूमकर देख रही हैं कौशनी, जो पिछले मैच में एक बड़ी साझेदारी उन्होंने भी निभाई थी हर्षिता के साथ, जब बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच जिताया था। थर्ड मैन स्क्वेरिश दायरे के अंदर, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ दायरे के अंदर, इस बीच ये गेंद फुल टॉस, उसको ऊपर हवा के रास्ते पहुंचा दिया है, और इसके साथ ही 6 रन। क्या इस शॉट के साथ ही श्रीलंका एक कदम और आगे बढ़ गई है जीत के लिए। अब उनको चाहिए बहुत कम रन रह गए, 11 गेंदे 12 रन अब जीतने के लिए चाहिए। ये गेंद लूप बनाती हुई फ्लाइट कर दी थी इस गेंद को, फुल टॉस पर ऑन साइड में गेंद को खेला, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से बिल्कुल हवा के रास्ते, हवाई स्ट्रोक जिसको कहते हैं, और गेंद चली गई बाउंड के बाद। फातिमा सना इस समय सदमे में खड़ी हुई हैं, एक एक रन कीमती है, एक एक गेंद पे होने वाली प्रतिक्रिया कीमती है, और क्या यहां से, जबकि ये नो बॉल का इशारा अंपायर का अब लेट आया है। 11 गेंदे और अब 5 रन चाहिए, वो छठा, वो जो छक्का गया था उसका माइनस नहीं किया गया था, फ्री हिट भी मिलेगा, क्या इस गेंद पर ये मैच खत्म हो सकता है? 126 6 विकेट पर, कौशनी सामने है, विकेट कीपर बैटर, और ये क्या विडंबना है कि कप्तान जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं उनकी गेंद पर ये छक्का लगा। धीमी गेंद, शॉर्ट गेंद, घुमा दिया उसको, उस ओर फील्डर मौजूद है, वहां पर खड़ी हुई है नशरा संधु, उठाएंगे लेकिन तब तक एक रन ही और मिलेगा। 10 गेंदे 4 रन, अब तो यह श्रीलंका का मैच होना चाहिए, और कुछ सोती हुई चिंतित सी, मायूस सी, निराश सी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना उस जगह जा रही हैं जहां से वो दौड़कर ये तेज बॉलिंग कर रही हैं। 4 रन चाहिए जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए। मुकाबला बहुत जोरदार होगा, श्रीलंकाई टीम में संघर्ष करने का जबरदस्त मादा है। 4 गेंदे शेष हैं इस ओवर में भी, और 4 रन ही चाहिए। इत्मीनान से खेला, दायरे के अंदर गेंद रुकी नहीं, दूसरे फील्डर भी उस गेंद के ऊपर पसर गए इससे पहले कि वो उस गेंद को उठाएं, तब तक दूसरे रन करीब ही पलट कर आ रहे हैं तेजी के साथ। आयशा जफर जब प्रयास कर रही थी उस गेंद को लेने के लिए, तो वो उनके नीचे की तरफ गेंद अंदर चली गई, और तब तक वो रन करने में आसानी हुई, तो 2 रन रह गए हैं बनाने के लिए। 3 गेंदे इस ओवर की, और फिर 6 गेंदे, 9 गेंदों पर ये 2 रन बनाने हैं। 1 रन चाहिए स्कोर को बराबर करने के लिए, और 1 रन और चाहिए जीतने के लिए। 1 रन मोर एंड स्कोर इज इक्वल, 129 for 6। बहुत खफा नजर आ रही हैं इस समय नशरा संधु, तैयार, कूल एस कोकोम्बर, ठंडे दिमाग से खेल रही हैं। ओ, और जैसे ही मैंने कहा कमेंटेटर्स कर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, 2 रन चाहिए, 2 सिंगल काफी हैं, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, और इस तरह से वो परेशानी में पड़ सकती थी। थोड़ी सी फास्टर वन थी, बहुत बाहर नहीं थी, स्टंपिंग करने की कोशिश थी, लेकिन वो क्रीज में सुरक्षित थी, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। 8 गेंदे 2 रन अब चाहिए, 129 6 विकेट पर, जीत के लिए चाहिए 131, बराबरी के लिए चाहिए 130। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना बॉलिंग कर रही हैं, दाएं हाथ से तेज बॉलिंग, ओवर द विकेट वो कर रही हैं, दाएं हाथ के बैटर उनके सामने हैं। मुनीबा खड़ी हुई हैं, थोड़ी ऑफ साइड में हट कर खड़ी हुई हैं ऑफ स्टंप के पास, और

0: उससे थोड़ा सा और वाइड खड़ी हुई हैं, बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई हैं, पास खड़ी हुई हैं स्टंप्स के, और फतेमा साना की अगली गेंद और उसको उल्टा रैम स्ट्रोक खेल दिया है, इसमें 4 रन और श्रीलंका ने प्रवेश कर लिया है 2026 के एशिया कप के फाइनल में।
1: Yes, what a stroke that was, really taking the defending champions into the final on Sunday where they will meet India. Sri Lanka win by 4 wickets. It's a match which has gone topsy-turvy. Pendulum swinging from one side to another. And finally, it was that partnership between Harshita and Kavisha which really tilted the match in favor of Sri Lanka. And then they had Nilakshi at the end coming good and pulling off a fine victory for Sri Lanka. And so the reigning champions would try to repeat their heroics from the last edition, Vineet, and challenge India in the final on Sunday, the day after tomorrow.
0: Oh, stroke kya khela? Bat ko ulta kar liya, chehra aasman ki or, aur usko scoop kar diya wicketkeeper ke sar ke upar se, piche wali side skin ki or se. Lajawab stroke, presence of mind.
1: Yes, absolutely. Sri Lanka booked their place in the final with a fine 4-wicket victory. One's heart goes out to the Pakistan captain, Fatima Sana, for an all-round heroics, 47, 4 wickets, but going in vain. And it is the Sri Lankans, the defending champions, who will play the final on Sunday. Much to look forward to in the program which is coming up, the post-match show. And it is over to our host Gitanjali Soni and Munish Jolly, along with our experts.
2: Player of the match.
3: Yes, it is done and deal is sealed. Welcome to the player of the match, and very soon we'll get to know. But right now the news is that Sri Lanka will be joining India in the finals, and that's going to be a cracker of a beginning. And right now we are very happy and excited to welcome you all in the studio. I'm Gitanjali Soni, with me is Munish Jolly, and our experts are very much around and they are going to share their expert opinions soon. Soumitra Bose, senior sports journalist, Vaishali Mathur, former Indian cricketer. Welcome one and all.
4: बड़ा इमोशनल मोमेंट हो रहा है यहाँ पे.
3: अच्छा.
4: जब क्रिकेट का मैच इतना क्लोज हो जाता है ना तो बड़ा इमोशनल हो जाता है.
3: अच्छा.
4: You know, setting a target of 130 and you know it's a cliffhanger.
3: I know.
4: If not the last over, but then you know 6 wickets down. Soumitra Bose, आप भी ऐसा फील कर रहे हैं सर?
5: जी हाँ. I mean, pure 100% entertainment. What a finish. I mean, it went top and down, up. Wonderful finish. I think the Sri Lankans played like defending champions and from a very precarious situation, winning with ease. Fantastic.
3: Actually, Fatima, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, हमने जब शुरुआत की थी शो की तो सबका जो फेवरेट था वो बेसिकली हर कोई कह रहा था कि श्रीलंका ही जीतेगी. मेरे मुँह से फातिमा निकल गया क्योंकि फातिमा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. वैशाली, आपको क्या 1% भी लगा था कि जिस तरीके से इनिशियल विकेट्स श्रीलंकन टीम के गए थे और कॉन्फिडेंस काफ़ी शेकी लग रहा था, दिस इज़ नथिंग लेस देन मिरेकल आई थिंक.
6: यू आर राइट, क्योंकि कैप्टन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस साइड से दिखी नहीं थी बैटिंग हैंड से. लेकिन उसके बाद जैसे विकेट 2 फॉल हुए, 3 हुए, 4 हो गए, एंड उसके बाद भी किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. आई थिंक जितने भी फैंस देख रहे, किसी को भी इतना भरोसा नहीं था कि आज श्रीलंका जीतेगा, क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एंड बॉलिंग जो कर रहे थे आज पाकिस्तान टीम, लग रहा था कि आज फाइनल यही उठा के लेके जाएंगे.
3: Absolutely.
6: लेकिन उसके साथ जिस तरह से ढिलारी ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है एंड लास्ट में 15 बॉल्स एंड 14 रन्स रह गए थे, एंड जो जिस तरीके से एक फ्लोलेस बैटिंग हुई है एंड उसके साथ साथ जो पीछे उन्होंने स्कूप करके खेला है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी. एंड पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रही है, 60+ रही है दोनों की पार्टनरशिप, तो मैं कहूँगी कि आउटस्टैंडिंग है रहा है ये मैच. एंड इस तरीके का ये चकाचौंध करने वाला जो आज का मैच था वो किसी ने भी अज्यूम नहीं किया था पाकिस्तान टीम के साथ कि 130 वो स्कोर करेंगे एंड उसके बाद इतनी अच्छी फाइट देंगे.
3: एब्सोल्युटली. एंड सुमित्रा, आई एम स्टिल लाइक इन डिसबिलीफ. आई वाज डबल चेकिंग माय सेल्फ वेदर आई एम अनाउंसिंग करेक्टली. श्रीलंका फाइनली हैज वन एंड दे आर इन फाइनल्स. दिस इज एक्चुअली क्वाइट मिरेक्युलस आई बिलीव.
5: दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम. लाइक इन फैक्ट इन द मिडिल शो पावर प्ले की बात कर रहे थे, आप देखिए पावर प्ले डिड नॉट कम इन टू प्ले एट ऑल. कि जब आप पाकिस्तान बैटिंग कर रहे थे, दे वर यू नो फोर डाउन फॉर 54 राइट इन द 10th ओवर, एंड श्रीलंका वैसे ही दे वर 33 फॉर 4. तो मोर लेस तो द पावर प्ले वॉज वर्किंग वेयर ऑन बिहाफ ऑफ द बॉलिंग साइड.
3: यस.
5: एंड आई थिंक इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पाकिस्तान इतना अच्छा बॉलिंग किया, इतना अच्छा फील्डिंग किया, एंड द वे द मिडल ऑर्डर एंड द लोअर मिडल ऑर्डर वन द मैच फॉर श्रीलंका टॉक्स अब अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड जो बैकरूम जो आपको जो होता है दैट दे डिड नॉट पैनिक दैट नॉट टू पैनिक इन सच सिचुएशंस and yet win a match against a decent bowling attack when the ball was turning. And the best thing was how they constructed the innings, how they paced the innings. One ko twos karna, twos ko threes karna, then not to lose. There were times when they did not even score boundaries. Dekhi char chawa, but finally how they paced the innings. And they won very, very comfortably, considering the fact that they were under so much pressure.
3: Gee, but I think there are few people who are never under pressure, Munish. And that's our callers. And they are already raring to go. एक बार फिर से अपने श्रोताओं को हम नंबर बता देते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1083, 2342-1085 और 011 हमारा कोड है. और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं लाइन पर. हेलो, मिस्टर रेड्डी, हाउ आर वी? बहुत बहुत अच्छे हैं. कहिए क्या कहना चाहेंगे आज? जी, हमारे एक्सपर्ट जरूर बताएंगे कि आने वाले फाइनल के लिए क्या तैयारी होने वाली है हमारी. सो हु वुड लाइक टू फर्स्ट टेक दिस क्वेश्चंस? क्वेश्चन वैशाली, आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कैसी स्ट्रॉन्ग तैयारी है हमारी?
6: देखिए, श्रीलंका एंड इंडिया दोनों ही टीम एक दूसरे के बराबर बिल्कुल एक ही लेवल पे है. जो अच्छा खेलेगा वही ट्रॉफी लेके जाएगा. और बैटिंग एंड बॉलिंग एक ऐसा पार्ट है जो हर कोई निभाता है अच्छे से, लेकिन जहाँ पे फील्डिंग अच्छी होती है वहीं एक आपका ट्रॉफी की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम जहाँ पे लैक कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि हम बैटिंग में कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, वहाँ श्रीलंका भी कर रही है. सो दोनों साइड से पलड़ा सेम ही है.
3: जी, पलड़ा सेम है. मुनीश, आप वाकई मुझे लग रहा है किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इस वक्त.
4: मुझे बहुत दुख हो रहा है.
3: किस लिए?
4: और सुखी भी फील कर रहा हूं मैं. बहुत सुख मिल रहा है मुझे.
3: अच्छा,
4: कितना कॉम्पिटिटिव गेम खेला. बट दादा, जस्ट कमिंग बैक टू द गेम, यू नो देयर इज नो DRS एंड दैट्स अ बिग एरिया ऑफ डिस्कशन. Especially when you saw Kavisha Dilhari, she was a set batter, getting LBW to Fatima Sana, couple of replays. Yeah. We also get to see on the television. But don't you think that you know the AFC should now take you know a definite step so that you know such errors are not committed again?
5: Unfortunate not to have DRS in such a situation, especially when you're doing a continental championship. It's something I'm quite surprised to see, because she was definitely not out. आपने तो देखा ही होगा, हमने जो replay में clearly देखा है कि there was an inside edge और उसको out दिया गया. If Sri Lanka would have, imagine if they would have lost this match, this would have become a very controversial point of view. I'm more surprised because देखिए, Asian Cricket Council का president कौन है? ICC का जो सबसे बड़े आदमी वही है. The richest cricket boards are in Asia. India is there, India is playing. Pakistan, then you have Sri Lanka, you have Bangladesh. Some of the most competitive cricket boards. And it is in Asia and it is being Dubai. Dubai mein ho raha hai. Aur ICC ka headquarters kahan hai? Dubai mein hai. Aur phir bhi DRS nahi hai. Such elementary things jo actually makes a difference between the right decision and the wrong decision. I am very, very surprised.
3: It is.
5: And fortunately, Sri Lanka won this match. Agar ye match haar jaate, this would have become a pain point and probably a heading. And because media would not have been very kind to the cricket authorities. Definitely Asian Cricket Council and I would say ICC is equally responsible. Because the cricket's headquarters are in Dubai, आपका जो जो द टॉप मेंबर्स

0: वो जो जो एक सैड स्टोरी चल रही है उनकी क्रिकेट को लेकर, उसमें उम्मे हनी कुछ एक एक उम्मीद की किरण जगा रही
1: है। देखिए पाकिस्तान टीम के पास है ना बॉलर्स की कमी नहीं है, उनके पास जैसे हमने अभी देखा और अभी कैप्टन की बात भी सुनी हमने, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि हम बॉलिंग एंड हम फील्डिंग पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वी नीड टू इम्प्रूव इन बैटिंग। और वो बैटिंग पे अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके पास एक दो बैटर आ जाएंगे तो एक विनिंग टीम भी बन सकती है वो इन आगे आने आने वाले फ्यूचर के लिए। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उनके जो बॉलर्स है ऑफ स्टैंडिंग बॉलर्स है, चाहे वो फातिमा की बात करें या किसी भी ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर किसी की भी बात करते हैं, तो वो ऑफ स्टैंडिंग बॉल डाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक जो हो रहा है वो बैटिंग में हो रहा है, क्योंकि उनके पास दो से तीन ही बैटर है, उसके अलावा वो बैटिंग नहीं कर रहे। अगर वो उनकी विकेट्स गिर जाती है तो उसके बाद वहाँ उस पिच पे खड़े होने के लिए कहीं भी कोई भी रन बना नहीं रहा है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जैसे अभी बॉस जी ने बोला कि अभी हमारी जो इंडियन टीम है, हमारी जो स्मृति मंदना है वो वहाँ पर जब वो बैटिंग करने आती है शेफाली के साथ में, तो दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि स्मृति सिर्फ पेस अपना वक्त लेके अपना टाइम लेके वहाँ पे वो प्लेस करके खेलती हैं, जब उनको लगता है कि ये बॉल हिट करने के वो उसके अकॉर्डिंग ही करती है, एंड उनको अपनी विकेट की वैल्यू पता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही दूसरी साइड पे जब शेफाली नॉन स्ट्राइक पे खड़ी है तो उनको ये पता है वो यहाँ पे सिर्फ हिट करने के लिए आई हैं, क्योंकि उनको पावर प्ले का पूरा उपयोग करना है
2: जी।
1: तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है हमारा, जो हम श्रीलंका के जो कैप्टन हैं उनकी अगर जल्दी विकेट गिर जाते तो हमारे पास एक स्टेप हम आगे हो सकते हैं उसमें।
2: ऑलराइट, और इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि दोनों जो टीमें हैं बिल्कुल अपनी जान लगा के खेलेंगी फाइनल्स के लिए। आज हमने देखा था सुमित्रो, मिथाली अयोध्या को इंक्लूड किया था टीम में, क्या ये एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं आज, चार ओवर में 33 रन दिए हैं मिथाली ने, बट आपको लगता है कि भारत के अगेंस्ट इनको यूज़ करने की तैयारी हो सकती है?
3: Be very careful with team selection. जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, काफ़ी स्पिन देखने को मिला है, फर्स्ट इनिंग्स में मिला, सेकंड इनिंग्स में मिला है, बट द पॉइंट इज दिस काइंड ऑफ बॉलिंग विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू इंडियंस, स्पेशली बैड लाइन एंड लेंथ अगर आप बॉलिंग करिएगा तो समबडी लाइक शेफाली एंड स्मृति विल किल यू, यू नो यू कांट अफोर्ड टू डू ऑल दैट अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान की बैटिंग जैसे वैशाली ने कहा चल नहीं रहा था, आज मान लीजिए कि फतेमा का रन आ गया, अगर नहीं रहता है तो 40 आउट, देन यू वुड हैव सीन दैट दे वुड हैव बीन बिलो 100। सो द पॉइंट इज दिस, यू नो यू मेक एक्सपेरिमेंट्स अगेंस्ट टीम्स दैट आर वीकर, बट यू कांट मेक एक्सपेरिमेंट्स समबडी लाइक इंडिया।
2: राइट,
3: इंडिया के टॉप सिक्स बैट्समैन दे विल किल यू इफ यू मेक यू नो रन लाइन एंड लेंथ अगर गड़बड़ हुआ है। ही मेंशन द बॉलर्स नेम उमे हनी, she was really good. Unfortunately did not wicket, the way she was flighting using the width of the pitch and the kind of bowling, Muniz was perfectly all right. Unfortunately she did not get wickets,
2: right.
3: But this is the format jo aapka t20 format had, good bowling always never gets you wicket, the bad ball sometimes gets you wicket, and Fatima got that. For example when Chamani got out,
2: right,
3: this tarah she strokes there, some were loose strokes, theek hai, when she was on hat trick both the wickets were loose strokes. But that's the beauty of the game. That's the way the game is played. So I don't think Sri Lanka will make too many experiments. We'll go on a very trusted team. Very, very trusted team. Jisse effective ho sakta hai, impactful ho sakta hai.
2: Right.
3: I think Ayodhya was more of a gamble.
2: Okay.
3: Did not work. But ultimately, it did not matter. Sri Lanka won.
2: यस, बट अभी जो चीज़ बहुत मैटर करने वाली है वो ये देखना है कि फिटनेस भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाली है। आज हमने देखा वैशाली बहुत ही क्रैम्प आ रहे थे टीम को, ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। आई होप कि हमारी जो इंडियन टीम है वो बिल्कुल तैयार है इसके लिए, एंड दे विल बी फिट एंड फाइन।
1: या श्योर, क्योंकि मैच से पहले है ना इंडियन टीम्स के पास जो फिजियोज होते हैं एंड बाकी ट्रेनर होते हैं, वो एक दिन पहले ही प्रिपेयर करते हैं कि आपको इतना लीटर पानी पीना ही पीना है, बिकॉज क्योंकि आप नेक्स्ट मैच में जब आप जाओगे नेक्स्ट डे, तो वहाँ पे आपको सन दिखेगा, आपको साथ में मॉइस्चर दिखेगा, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप ड्रेन होती है आपकी बॉडी, तो उससे पहले ही हम इनटेक करते हैं वाटर। तो ये एक थोड़ा क्रैम्प से बचने का वे निकाला है हमारे ट्रेनर्स, इंडियन ट्रेनर्स ने, तो ये इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि वो ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, एंड उनको इंडियन टीम को सिर्फ एक ही बॉलर से बचना है, क्योंकि उनकी बोले उन्होंने ज्यादा नहीं खेली हैं, सिर्फ देखा होगा, वो है चामुदी जो 17 इयर्स की है. एंड जब यंगस्टर्स बड़े होते हैं तो उनका वे ऑफ स्टाइल बॉलिंग का हर चीज़ डिफरेंट होती जाती है, तो ये थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है वहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा जज करके फिर खेलना पड़ेगा. ये ऑलरेडी हमारे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इतने अच्छे बैटर्स वहाँ पे बैठे हैं, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे और उनके कोचेज भी उनको बता रहे होंगे. तो आई होप कि इंडियन टीम काफ़ी बेटर करेगी फाइनल के लिए.
2: जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुनीश ने जैसे इनिशियली कहा कि मुनीश को एक इमोशनल ट्रॉमा हो गया, बट मुनीश आई एम जस्ट होपिंग इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर लॉन्गर. आई एम जस्ट नॉट happy seeing you like this.
0: Pakistan ki team har rahi hai, the cricket is under you know, there are a lot of questions, men and women team both, and you know, especially jab Asia Cup ki baat kar rahe ho to you want the Asian teams to do well,
2: right?
0: But Dawa, just coming back to this game where you know, she just mentioned about Chamudi Prabhoda, but India, I think you know, as a cricketer I feel that, you know, it's good to tackle her, you know, bring in a left hander. A lot of strategies are going to come in. But how important will this game be for the Indian team? You know, they are the world champions in the 50-over format, but that 20-over format is still a struggle. You know, they've, jise Hindi mein kehte na, vanchit ho gaye ki badi trophy lene ke. So how important it's going to be for the Indian team?
3: See, this final will be important ki dono team ke liye kafi important hoga. Because don't forget that immediately after this, they are going to Nagoya to play the Asian Games, and you know, to win and go to an Asian Games, which is no less important. And right, you see, if you look at the composition of the teams, both men's and women's, they are more or less all the teams are playing there, A teams, the first teams. So in Kelly, women will always be good, and the fact that you will be playing more or less the same kind of teams there also in Japan mein jo Asian Games khelenge. Or yeah, these are you can say a dress rehearsal to the Asian Games. Anybody will like to, because India have always done well in Asian Games. Isliye zaruri hai ki ye match jeetna chahiye. And experience wise, India a wealth of experience. Inke paas itna experience hai, itna depth hai. Shri Chamudi is good, but don't forget that we also play somebody called Sri Charan in the nets. A similar bowling attack. But yes, I mean, the point is this, it is that, again, as I say, overconfidence nahi hona chahiye. Play true to the your capability, your caliber, and show your maturity on the day of the final.
2: और वैशाली, जैसे आज कप्तान ने भी कहा श्रीलंकन टीम की, कि वो उनकी जो थोड़ी बहुत कंसर्न है, शायद उनकी फील्डिंग रहने वाली है, एंड आई थिंक दे हैव इनफ टाइम. मुझे नहीं पता, आप ही ज़्यादा बताएंगी कि दो दिन क्या बहुत होते हैं जिस पे वाकई उस पे वर्क कर सकते हैं. लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जो भी कमज़ोरियाँ, जो भी ड्रॉबैक श्रीलंकन टीम के हैं, इंडिया उनको बिल्कुल कैपिटलाइज करे और बिल्कुल बेहतरी से गेम खेले. और जितने भी हमारे श्रोता सुनने वाले हैं, जितने लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, सबकी उम्मीदों पर खरे उतरें. और फिलहाल के लिए इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारे स्टूडियो में जब हमारे इतने पोटेंट एक्सपर्ट्स आते हैं, वो सबकी उम्मीद पर खरे तो उतरते ही हैं, बट वे एंड बियॉन्ड रहते हैं. वी आर सो ग्रेटफुल सुमित्र बोस जी फॉर ज्वाइनिंग अस. योर इनसाइट इज सो मीनिंगफुल एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. एंड थैंक यू वैशाली माथुर, योर क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज ऑलवेज हैव बीन वेरी हेल्पफुल, एंड वी आर very sure that you'll keep on guiding loads of people who are willing to learn more about game. And Munish Jolly, thank you so very much. Smile.
0: Isse pehle ki hum show khatam kare, I think bahut hi zaruri hai ki we mentioned about somebody who had a great rivalry against the neighbors Pakistan. Bahut arse tak wo rivalry chalti rahi, the late Lala Amarnath, jinki aaj birth anniversary. And also, before we sign off, I'd like to wish a very happy birthday to a very dear friend who's been to Akashwani, India's former left-arm spinner, Murli Karthik. Aur in dono ko janmdin ki aur birth anniversary ki bahut bahut shubhkamnaen hum sab ki taraf se, Akashwani ki taraf se.
2: Thank you so very much. Aur हमारा बहुत बहुत दिल्ली जो धन्यवाद है हमारी टेक्निकल टीम को जाना चाहता है, इस सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से, मनोज सिंह, संजय कुमार एंड त्रिलोक गुप्ता, प्रोडक्शन टीम वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर, माधवी तिवारी, एंड ऑफ कोर्स आवर प्रोड्यूसर शाहनवाज खान. थैंक यू सो वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस आउट विद ऑल द इंटीग्रिटी ऑफ द शो, एंड वी आर सो ग्रेटफुल दैट वी कुड बी हियर. तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, बिकॉज 13 तारीख को आपको बहुत ही बेहतरीन मुकाबला सुनने को मिलेगा श्रीलंका और इंडिया के बीच. तब तक एक बार फिर से हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, गीतांजलि सोनिया, मुनीश जौली की तरफ से.
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
3: गुड नाइट. गुड नाइट
0: एंड शुभ रात्रि.

0: Player of the Match.
1: अभी आप विमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
2: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द
3: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही DTH के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:52 हो चुके हैं। अब आज की सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।